ちゃんだ。

बन के साया मेरे संग रहता है कौन, मैंने ये न जाना कभी, ऐसा न था हाल मेरा पहले, हाल ये मेरा हुआ है अभी। वो ख्वाब है या हकीकत है, वो जो भी है मेरी जरूरत है।

बचपन से हमने ये सुना है कि संगत का असर इंसान पर जरूर आता है। वेलकम बैक, वेरी गुड आफ्टरनून, नमस्ते, सत श्री अकाल, वडकम, आप सुन रहे हो सिंपली आफ्टरनून को राइट हियर ऑन 89.6 मिर्ची 1। और अक्सर बड़े बुजुर्ग मम्मी डैडी से ये कहा सुना था कि यार अच्छे संगत में रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, आपकी जिंदगी पर, आपकी सोच पर असर होता है, इसलिए स्कूल कॉलेज में ना अच्छे दोस्त रहना ना बहुत जरूरी माना जाता था। और इनफैक्ट अब ये स्टडी कहलाती है दैट एक 12 मिनट का कॉन्वर्सेशन आपके दोस्त के साथ आपके पूरा नजरिया चेंज कर सकता है। इट कैन चेंज द होल वे ऑफ थिंकिंग। इनफैक्ट ये एक आपके पूरे पर्सपेक्टिव में एक शिफ्ट ला सकता है। आपका एक सिंपल सा कन्वर्सेशन आपको हील कर सकता है, अपलिफ्ट कर सकता है, आपके दिमाग को, आपके माइंड को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। तो यार ये जो कहना था बड़े बुजुर्ग का कि हाँ सही में संगत अच्छी होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और एक अच्छा दोस्त होना जो आपको वक्त बे वक्त, टाइम बाय टाइम हमेशा आपका साथ देते रहे और आपको सही गाइडेंस देते रहे, ये बात एक्चुअली स्टडी के मुताबिक बिल्कुल सही है। तो बस यार सोचा कि वीकेंड है और वीकेंड में आई थिंक सो यू शुड कैच अप विथ योर गुड ओल्ड फ्रेंड। शायद आपको जरूरत है वो चीज सुनने की जो शायद आपके दोस्त के मुंह से आप सुन ले। मिर्ची पर आप सुन रहे हो आफरीन को, और हमारी संगत का असर भी आप पर हो ही रहा है। सुनते रहेगा मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Milchi. Iskabana, puskabana, sakabana. Rambala. Burka, burka. La fiesta la burka. Milchi, burka.
1: Hello. Hello.
2: Hello, Mr. Anil.
1: हाँ जी.
2: Mr. Anil, तीनों आ गए हैं.
1: तीनों आ गए?
2: सर, मैं ये चाइल्ड अडॉप्शन सेंटर से बोल रहा हूँ. आपने रिक्वेस्ट भेजी थी ना बच्चा गोद लेने की, अडॉप्ट करने की. तो सर, तीन है हमारे पास, आप आके देख लें, इसमें से चूज कर लें, फिर आपकी सारी वो फॉर्मेलिटी पूरी करके कर देते हैं.
1: कौन बोल रहे हैं भाई साहब?
2: मैं चाइल्ड अडॉप्शन सेंटर से राकेश बोल रहा हूँ सर.
1: जी, फिर?
2: एक सेकंड, इन बच्चों ने तो दिमाग, एक सेकंड रुको बच्चा, एक सेकंड, इसने पॉटी कर दी है शायद, एक सेकंड रुकिए.
1: हेलो.
2: हाँ सर, एक सेकंड होल्ड करिए, इसने पॉटी कर दी शायद. हाँ सर, ये मैं चाइल्ड अडॉप्शन सेंटर से बोल रहा हूँ. आपने रिक्वेस्ट दी थी ना बच्चा अडॉप्ट करने की, तो आप आके देख लीजिए इनमें से कौन सा बच्चा पसंद है.
1: नहीं भैया, आपको गलत फहमी हो रही है, कोई आप गलत मिला है.
2: वो गलत फहमी की बात नहीं है, गलत फैमिली आपकी है. बच्चा है नहीं तो गोद ले लो, फैमिली सही हो जाएगी.
1: अरे मैं क्यों लूंगा यार बच्चा गोद, मेरे पास पहले से मेरा अपना बच्चा है, मैं क्यों गोद लूंगा भाई.
2: तो अनिल जी, आपको ये पहले सोचना चाहिए था यार, जब आपने ये एप्लीकेशन भरी है यहाँ पे आके.
1: कौन बोल रहे भाई?
2: आप कमाल कर रहे हैं, भड़क रहे हैं. तीन बच्चे मैं लेके आया हूँ यहाँ पे, रो रहे हैं.
1: भड़क आप रहो भाई, क्या तरीका है?
2: क्या तरीका
1: कौन कर रहा है आपने? यार मैंने कोई एप्लीकेशन ही नहीं दी, आप क्या बोल रहे हो? लिया
2: अनिल बंसल आप ही हैं.
1: अनिल बंसल मैं ही बोल रहा हूँ, लेकिन मैंने किसी को कोई एप्लीकेशन नहीं दी हुई है.
2: सर कमाल कर रहे हैं आप, बार बार मुझ पे थोप रहे हैं. अब ये तीन बच्चे कौन लेगा यार?
1: आप पहले कंफर्म तो करो, कम से कम
2: कंफर्म करके ही बोल रहे हैं यार. आप एक बच्चा, तीन नहीं तो एक बच्चा तो गोद ले लो यार.
1: बात करो, एक तरीका है बात करने का
2: यार, तरीका. आप बच्चा चुप हो जाओ, वो गुस्सा आ गया उनको. यार अनिल जी, कमाल कर दिया आपने.
1: मैं काम कर रहा हूँ बैठा हुआ, आपके आपकी बकवास सुन रहा हूँ बैठकर.
2: सर मैं आपको बता रहा हूँ, जो आपने सारी बातें कही थी, एक बच्चा इसमें एक साल का, एक बच्चा सात महीने साढ़े सात महीने का, एक बच्चा एक साल तीन महीने का है. आपको जो पसंद आता है
1: आप कितने भी महीने का हो तुम ले लो फिर अपने पास, तुम अडॉप्ट कर लो, फिर मुझे नहीं चाहिए.
2: अरे मुझे तो खुद किसी ने गोद ले रखा है यार, मैं कैसे ले लूँ? आप मुझे क्यों सिखा रहे हैं यार? आप अपनी बात करो यार.
1: तुमने अगर अगली बार फोन कर दिया ना, तेरे को ही गोद दिलवाऊंगा ये बच्चा, समझ गया?
3: नहीं सर, मुझे तो वैसे ही रेडियो मिर्ची ने गोद ले रखा है. अनिल जी, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, और आपका प्यारा सा जो बच्चा है रोहन, ये उसी का बवाल है सारा, आपका मुर्गा बना दिया.
1: यार कमाल कर दिया भाई, कुकड़ू को भाई, कुकड़ू को.
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: में चीज स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तुझे पता है राजस्थान के एक गांव में रेलवे स्टेशन पर कोई एम्प्लॉय है ही नहीं, वहां के गांव के लोग ही टिकट बांटते हैं।
3: फिर तो यहाँ वो चाय चाय ये आवाज नहीं बल्कि ये आती होगी टिकट टिकट। और यार COD तो यहाँ भी होता होगा ना, कैश ऑन डेस्टिनेशन।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।

0: एनर्जी। वलनीति मोहन की आवाज में ये गाना राइट हियर ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। एब्सोल्युटली वी आर रेडी टू जियोफाई आर हफ्ता आर डे या फिर आर वीकेंड। इससे मुझे ये याद आया कि भाई जब हम ना मिलेनियल्स अर्ली 2000 में थे तब कूल साउंड करने के लिए हम हर वर्ड के आगे फाई नहीं लगाते थे। हाउ जैसे अब मैंने जियो फाई जैसे कह दिया, बहुत सारे वर्ड्स होते थे कूल फाई समथिंग लाइक दैट यार, मतलब कुछ भी वर्ड को कूल साउंड करने के लिए हम उसके आगे फाई लगाते थे। बट नाउ टॉकिंग अबाउट द जेंजीज, it's bizarre, it's weird, there is no connection with any word and it has some meaning. जैसे clock it नहीं पता आपको, अगर आपको agree करना है किसी चीज से तो आप clock it सिर्फ कहते नहीं हो, इशारे भी करते हो, या फिर 6-7 जिसका कोई मतलब नहीं है। बस इसी तरह से ये जो कम्युनिकेशन है जनरेशन से जनरेशन बदलती रहेगी, तरीके बदलते रहेंगे, लेकिन एक ही चीज़ है भाई, इमोशंस जो है वो तो सेम रहेगा। और फिलहाल के लिए वही इमोशन के साथ में रोज की तरह वेदर सुना दूं आपको।
1: नाम तो जानते हो मेरा, तापमान सलमान।
2: वेदर अपडेट।
0: वेल वेदर देखो आज का ये कह रहा है मैक्सिमम टेम्परेचर 41 डिग्री सेल्सियस, मिनिमम 29 डिग्री सेल्सियस। और अगर ह्यूमिडिटी की बात करें, हाँ जी ह्यूमिडिटी थोड़ी सी अभी आ गई है, बढ़ गई है 49% पे है, स्टिल नॉट दैट एक्सट्रीम वन जो हम जुलाई अगस्त में एक्सपीरियंस करते हैं, लेकिन यस बेरेबल स्टिल ओके है ना। फिलहाल तो यार आगे बढ़ते हैं, और जैसे मैंने कहा कि भाई हम मिलेनियल्स हैं, हम हमारे जो इमोशंस है, जो हमारे अंदर की सारे ओपिनियंस हैं वो बिल्कुल सही पेश कर सकते हैं। क्या आप मुझसे एग्री करते हो या नहीं विद दिस? सलीम मर्चेंट सुनिधि चौहान की आवाज में ब्रिंगिंग द राइट काइंड ऑफ एनर्जी दिस वीकेंड Only on 89.6 Mirchi 1 Mike se dil tak aafreen ke saath it's hot.

0: इस वेकेशन प्यार से हमारा इंतजार करने वाले अपनों को एक गोल्डन सरप्राइज क्यों ना दे। मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स के गोल्डन समर ऑफर के साथ डायमंड एंड प्रेशियस जेम ज्वेलरी खरीदने पर पाइए फ्री कैश वाउचर्स। अपने पुरानी गोल्ड ज्वेलरी को एक्सचेंज कीजिए विदाउट एनी लॉस। और अब विद द इंपोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन जीसीसी। विजिट मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स टुडे।
1: बॉलीवुड पोर्टल Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bordar.
2: Only on Mirchi. It's hot.
3: Gulshan Grover, ऐसे कौन से एक्टर के साथ आपने काम किया है जिनकी गाली ना गाली नहीं लगती?
4: मेरा दोस्त है संजय दत्त, मेरा भाई है। एक टाइम था बगैर गाली के सेंटेंस ही नहीं होता था, तो सीनियर एक्टर्स ने कहा कि यार ये बगैर गाली के बोलता नहीं है, पर संजय दत्त की गाली इतनी क्यूट लगती थी, इनोसेंट था, लंबे से बाल वाला।
3: This is an audio impersonation, but I have to say, Gulshan Grover, it is 100-on-100 impersonation of Sanjay Dutt. Aap sun rahe hain Mirchi, it's hot.
1: Bollywood Bordar.
2: Bollywood, Bollywood, Bollywood Bordar. Only on Mirchi, it's hot.

0: Mirchi Mornings, brought to you by Kim's Health Medical Center.
1: What a beautiful song, a beautiful awaaz ke saath Sonu Nigam aur Shreya Ghoshal ki awaaz, which blends beautifully together. Very good morning, Qatar, and welcome back. Simply Afreen ka saath hai, right here on Mirchi Mornings. Aur dekhiye bhai, football ka nasha to bas chada hua hi hai. Bata do, jo matches pichle 24 ghante mein hui hai ya phir US ke hisab se unke aaj mein hui hai. Wahan par abhi tak 17th of June hi chal raha hai, if I'm right. To yes, Ghana aur Panama ke beech match hui hai, jahan par Ghana ne ek goal ke saath mein apni hi jeet hasil ki hai. Uzbekistan versus Colombia, where Colombia has won with 2 goals, Uzbekistan 1 goal. Coming up matches is Czech Republic, South Africa ke beech hai, Switzerland versus Bosnia. Ab ye do matches jo hai, ye wahi group hai jisme hamara Qatar belong karta hai. Group B mein Switzerland hai, Bosnia and Herzegovina hai, and Canada and our own Qatar. Aur मैच जिसका इंतज़ार हमें है, दैट हैज़ टू बी कतर की मैच, क्योंकि कतर की अगली मैच जो है वो कनाडा के साथ है और ये कल रात को हमारे कतर में स्ट्रीम होने वाली है. सो वेल, दैट इज़ वन मैच वी आर एब्सोल्युटली लुकिंग फॉरवर्ड. और मज़े की बात ये है कि बहुत अच्छे से इन्होंने टाइम किया है कि ये मैच को वीकेंड पर प्लेस किया है. सो बिल्कुल भी ये स्ट्रेस नहीं होगा, क्योंकि अक्सर ना ये जो मैचेस है ये रात के वक्त हो रही है. सो जो फुटबॉल फैंस है, आई डोंट नो हाउ यू आर कोपिंग अप विद इट, क्योंकि रात को मैचेस ख़त्म होती है, सुबह में आपका दिन शुरू होना है जल्दी. जस्ट वन डे कतर की मैच थी एंड द एंटायर नेक्स्ट डे आई वाज लाइक रनिंग स्लीपलेस अराउंड. सो ग्लैड दैट दिस नेक्स्ट मैच ऑफ कतर वर्सेस कनाडा इज ऑन फ्राइडे नाइट, तो अगले दिन का स्ट्रेस ही नहीं है जिसको सैटरडे को छुट्टी है ना. मीनवाइल मैं हूं आफरीन आपके साथ राइट हियर ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स. अगला गाना आपके लिए इंतजार कर रहा है ऑन मिर्ची, वन ऑफ माय फेवरेट ट्रैक, टैक्सी नंबर 9211 का शेखर राव जी ने की आवाज में. आई लव दिस सॉन्ग फॉर वन रीजन बीइंग, इसके लिरिक्स बहुत अच्छे हैं. ध्यान से सुनो और एंजॉय करो यार. आज माले ऑन मिर्ची, इट्स हॉट.

0: मिर्ची हेल्पलाइन।
1: जी बिल्कुल, मिर्ची हेल्पलाइन, बता बेटा सवाल क्या है।
0: सर मेरे घर का एसी खराब हो गया है, कब से लैंडलॉर्ड के पीछे पड़ा हूँ, वो ठीक ही नहीं करवा रहा, क्या करूँ?
1: क्यों थक रहा है? अरे तो दूसरा लैंडलॉर्ड ढूंढ लेना।
2: ऐसे ही लाइफ के टेढ़े सवालों का लॉजिकलेस जवाब चाहिए, तो भेजो आपके क्वेश्चंस मिर्ची हेल्पलाइन पर व्हाट्सएप ऑन 8422983983। इट्स हॉट।

0: देखो बॉस, वीकेंड है, आप कतर में हो, बोर होने का कोई चांस नहीं है। ये मैं अक्सर कहती हूँ जो लोग मेरे यहाँ पर विजिट करने आते हैं, कतर घूमने के लिए आते हैं, और जब मैं उन्हें कतर घुमाती हूँ ना, तो मैं उन्हें हमेशा कहती हूँ कि देखो, मैं जहाँ जहाँ आपको घुमा रही हूँ ना, वहाँ जाने के लिए पैसे नहीं लगते, वो चीज़ें देखने के लिए पैसे नहीं लगते। जैसे आप कोई दूसरी टूरिस्ट कंट्रीज चली जाइए, बी इट एनीथिंग, या आई डोंट वांट टू नेम इट, लेकिन कोई चीज़, कोई अट्रैक्शन देखना है, कोई खूबसूरत चीज़ अगर कोई बनी हुई है, या कहीं से नज़ारा अच्छा दिख रहा है, तो वो जगह पहुँचने के लिए भी आपको पैसे देने होते हैं, एंट्री टिकट होती है। ये हमारे कतर में नहीं है, और क्योंकि वीकेंड आ गया है, आप कतर के खूबसूरत जगहों पर तो जा ही सकते हैं, मीना पोर्ट है, कतारा है, लुसैल का वाटरफ्रंट है, लेकिन अगर इवेंट्स की बात करें तो मैंगो एग्जीबिशन है, ईस्टर्न स्क्वायर सूक वाकिफ ये शुरू होने वाला है, डोंट मिस आउट ऑन दिस, और क्योंकि फीफा का एक वर्ल्ड कप चल रहा है, फुटबॉल वर्ल्ड कप चल रहा है, तो बस कतर फैन जोन, ये विजिट कतर का अलमाहा आइलैंड पर है, यहां पर जाकर आप फ्राइडे की मैच जो है ये देख सकते हो। सो वेल, कतर में तो काफी सारी चीजें हो रही है। मैचेस के बारे में बात करें तो मॉल ऑफ कतर ओएसिस स्टेज पर भी हो रही है, एक तरफ हमारे डीएफसी में भी मैचेस चल रही है, सो हर जगह इट्स जस्ट बजिंग, एंड वीकेंड का तो एक अलग ही नशा रहता है हमारे कतर में। मीनवाइल, आफरीन के साथ जुड़े हुए हो माइक से दिल तक ऑन मिर्ची, इट्स हॉट
1: मिर्ची मॉर्निंग्स, ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

0: Nel Chile. Iscabana, buscabana, sacabana.
1: Rambala.
0: Murga, murga. La vieja la murga.
2: हेलो
3: बेटा, घर आ जा, मामा परेशान है, खाना खा ले, ऐसे छोटी छोटी बातों पे नाराज होके नहीं जाते घर से, आ जा।
2: हेलो, कौन बोल रहे हैं
3: बेटा? आ जा रे, आ जा, आ जा, एक आवाज भी नहीं आ रही। हेलो
2: हेलो बेटा। अरे अंकल, आप ये तो बताइए, बोल कौन रहे हो?
3: देख, अपने बड़े बूढ़ों से ऐसे नाराज ही होते बेटा। एक तो बुढ़ापे में तो ही सारा, दूसरे ये कान से सुनाई नहीं देते, और तू चला गया।
2: अंकल, मैं आपका बेटा नहीं हूँ।
3: तेरी आवाज भी नहीं आ रही है, घर आ जा बेटे।
2: अरे अंकल, ये तो बताइए, आप बोल कहाँ से रहे हो
3: बेटे? ऐसे नाराज होते हैं तो जानते।
2: अंकल, मैं आपका लड़का नहीं हूँ, आपने गलत नंबर मिलाया है
3: बेटे। नहीं, ऐसे ये नाराजगी होती है तो ऐसे घर छोड़ कर जाते हैं।
2: माता जी से बात करा दीजिए।
3: बेटे आजा, आजा बेटे।
2: अंकल, माता कहाँ है?
3: छाता बेटे, छाता भी देंगे।
2: छाता नहीं अंकल, माता। आप अपने कान के बात
3: बेटे, कोई गलती हो या देख तो बेटे माफ कर दे, ऐसे नहीं जाते।
2: अंकल, मैं वो नहीं हूँ आपका लड़का, आप मुझे मत फोन करिए।
3: अरे बात, मेरे बात,
4: इतनी जल्दी नाराज हो गए भाई, मेरे तो कान चलने लगे। दोबारा मिला।
3: हेलो, हेलो
2: अंकल, आप परेशान हो रहे हैं, आप क्या नंबर मिला रहे हो?
3: वैसे घर कब आ रहा है? घर कब? मैं खाना करवा दूं?
2: अरे अंकल, मेरे बात कर,
3: अगर आप मुझे आ जाएगा तो आज
2: आपने नंबर क्या मिला है?
3: तो कान में सुनाई दे बेटा, तेज बोल, आवाज नहीं आ रही, जो चाहिए दे देंगे।
2: अरे अंकल, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप प्लीज फोन ना करिए।
3: हेलो, मैं फोन तो करना पड़ता बेटे।
2: क्यों?
4: क्योंकि किसी को मुर्गा बनाना पड़ता है। विक्रम, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, तुम्हारा मुर्गा बन रहा है, तुम क्यों चिल्ला रहे हो भाई?
2: क्या भाई, मेरा गला पूरा आपने दुखा दिया चीख चीख के।
4: अब क्यों तेज बोल रहे हो भाई, अब धीरे बोलो और आराम से मेरे साथ कह दो।
2: बोलना जरूरी है?
4: हाँ बिल्कुल जरूरी है।
3: आवाज नहीं आई, तेज बोल।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।

शिल्पा राव कैरलीसा की आवाज में ये गाना राइटर ऑन मिर्ची फ्रॉम द मूवी वन एंड ओनली पठान. देखिए थोड़ी देर पहले मैं बता रही थी कि वीकेंड पर क्या कर सकते हैं, क्या क्या हमारे कतर में चल रहा है. वैसे तो मैंगो फेस्टिवल इज वन सच इवेंट जो साल में एक बार आता है एंड पीपल रियली लुक फॉरवर्ड टू इट, क्योंकि ये फेस्टिवल जो है एग्जीबिशन फेस्टिवल ही कहती हूँ वैसे, एक तरह से इट्स अ मैंगो एग्जीबिशन जो सुखाकिफ में होता है एंड ये एक बार में जाकर आपका जी नहीं भरता है. यस और हमेशा जा चुकी हूँ और हमेशा दो से तीन बार ही अपने आप को वहाँ पर मैं पाती हूँ. वेल अपार्ट फ्रॉम दैट, मिर्ची का अगर कोई चीज़ के लिए एक्साइटेड है तो वो है हमारा मिर्ची मॉमी अवार्ड्स. या वी आर सुपर एक्साइटेड बिकॉज वही दिस इज सीजन 5. हर सीजन के साथ बेंचमार्क तो हायर होते जाता है, एक अलग ही उत्साह रहता है एंड इट इंक्रीजेस विद एवरी पासिंग सीजन. सीजन 5 है, एक माइलस्टोन सीजन है, स्पेशल होगा, ऑफ कोर्स होगा, क्योंकि यार मॉम्स है तो स्पेशल है ही. एंड अगर आपको मॉम्स की झलक लेनी है सो यस, मिर्ची वन कतर पेज पर जाइए इंस्टाग्राम पर, टॉप 16 के वीडियोज वहां पर है, आप जाकर देख सकते हैं. इफ योर फ्रेंड और योर वाइफ और योर नोन इज देयर, को चेयर देम, भले ही हो व्हाट्सएप पर क्यों ना हो, व्हाट्सएप पर नहीं मिर्ची पर क्यों ना हो, इंस्टाग्राम के पेज पर या फिर शेयरिंग देम इन रियल लाइफ. 20th, दैट इज दिस सैटरडे 20th ऑफ जून को होने वाला है ग्रैंड फिनाले और इस बार का खिताब किस पर जाएगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन ये पता चलने के लिए आपको तो इंस्टाग्राम पर जाकर फॉलो करना पड़ेगा ना. मिर्ची वन कतर इज आवर पेज एंड यस, जैसे मैंने कहा कि भाई सीजन 5 पर जब हम आ चुके हैं ना, सो थैंक यू सो मच एवरीवन हु सपोर्टेड अस ऑल अलोंग दिस एंटायर सीजन्स 1, 2, 3, 4 जितने भी सीजन्स थे और पांचवें सीजन तक हमें पहुंचाया है. और बिग थैंक यू टू ऑल आवर स्पॉन्सर्स आउट देयर, आई पे प्रेजेंट्स मिर्ची मॉमी अवार्ड्स, वी ऑल्सो हैव अ पिज्जा पार्टनर पापा जॉन्स, हमारे रिफ्रेशमेंट पार्टनर बल्लाडना, शुगर फ्री पार्टनर ट्रॉपिकाना स्लिम, रेस्टोरेंट पार्टनर चस्का रेस्टोरेंट जो एजान ओएसिस में है, बड़े मजे का खाना है भाई वहाँ का. उसके अलावा आईवेयर पार्टनर अल्फाहद ऑप्टिशियंस, उसके ऑप्टिक्स, उसके अलावा हाइजीन पार्टनर इस हाइजीन प्रोडक्ट्स, वेनी पार्टनर अबुसुद्रमॉल, फ्रेग्रेंस पार्टनर फरीदी परफ्यूम्स, ज्वेलरी पार्टनर स्काई ज्वेलरी, और उसके अलावा लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट एक खूबसूरत सा इवेंट अपने कैमरा में कैद करने के लिए द विजुअल मीडिया पार्टनर रिहाब मीडिया. चलिए फिर मैं लेती हूँ अलविदा नहीं, मैं सुनाती हूँ आगे का गाना अरमान मलिक की आवाज में, माइक से दिल तक. On my cheat side.

0: रहे चीज स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तुझे पता है राजस्थान के एक गांव में रेलवे स्टेशन पर कोई एम्प्लॉय है ही नहीं, वहां के गांव के लोग ही टिकट बांटते हैं।
3: फिर तो यहाँ वो चाय चाय ये आवाज नहीं बल्कि ये आती होगी टिकट टिकट। और यार सीओडी तो यहाँ भी होता होगा ना, कैश ऑन डेस्टिनेशन।
4: मिर्ची इट्स हॉट।
5: अर्ज किया है
6: इरशाद इरशाद।

0: IPay payments ka wah tarika. With IPay, send money starting from just QAR 5, and yes, with the best FX rates. Simple, seedha, no tension. Check the IPay app today for our 5, 10, 15, 20 offer. Valid till July 31st. IPay, smaller fees, bigger smiles. TNC apply. एक सीरियल किलर, एक डिस्ग्रेस्ड कॉप और एक ऐसी डार्क मिस्ट्री जो आपको हिला देगी.
1: लव इज माय बिगेस्ट फियर बिकॉज़ फॉर मी लव इज डेथ.
0: विटनेस करिश्मा कपूर इन हर मोस्ट रूथलेस अवतार येट.
2: गलती भी हमारा और जिम्मेदारी भी हमारी थी.
0: कैच ऑफिसर ब्राउन,
3: ऑफिसर ब्राउन
0: टियरिंग थ्रू द सिटी ऑफ जॉयस डार्केस्ट सीक्रेट्स. ब्राउन स्ट्रीमिंग ऑन हिंदी Zee5 फ्रॉम 12th जून.
4: A ring for the newly married, cute little bangle for the newborn.
5: अरे यार, holiday season is here और फिर वही gifting का tension. फिर मालबार gold and diamonds, golden summer के साथ buy a free cash vouchers on diamond and precious gem jewellery purchases. Plus exchange your gold jewellery and upgrade to the latest designs without any loss. और सुनो, there's more. With the import duty revision in India, you can now save up to 15% on gold prices here in the GCC. Visit Malabar Gold and Diamonds today.
6: और मुझे जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं.
0: और एड ब्रेक भी मिर्ची पर बॉलीवुड के गाने लगातार बार बार
7: बार बार.
0: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
8: 89.6
9: FM मिर्ची वन. इट्स हॉट.

0: हार्ट एंड संडू स्वासी मेहुल की आवाज में ये गाना राइट हियर ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स. वीकेंड की तरफ बढ़ते हुए यहाँ पर पूरी एनर्जी के साथ नहीं, जनरली जब वीकेंड की तरफ हम बढ़ते हैं ना तो एनर्जी हमारी कम ही रहती है, लेकिन एक्साइटमेंट ज्यादा रहती है कि बस पूरा दिन पूरा हफ्ता इतना काम कर दिया कि बस पहले तो हम सोएंगे, सबके इसमें यही रहता है. लेकिन साथ ही साथ बहुत सी चीजें करनी होती है यार, लोगों से मिलना होता है, एंटरटेन भी तो करना होता है खुद को, फिर अधूरे काम भी तो करने होते हैं, और फिर ये दो दिन बहुत छोटे लगने लगते हैं, है ना. चलिए इन दिनों के बारे में यानी वीकेंड के बारे में हम और भी बातें करेंगे थोड़ी देर में, लेकिन आप तो जानते हो ना आफरीन यहाँ पर आई है तो कोई वजह से आई है. इस वक्त पर क्या लेकर आती है आफरीन, इस वक्त पर वो गेम लेकर आती है जिसका आप सभी को इंतजार होता है. सो हियर इट इज, लाइट्स कैमरा सीन टेस्ट. आज का सवाल बहुत डिफिकल्ट है, आई एम टेलिंग यू. आप यहाँ पर एक्टर को तो पहचान सकते हो, लेकिन ये मूवी कौन सी है जो पहचान आना, सीरियसली सल्यूट है आपको. सो 5000 1896 व्हाट्सएप नंबर है मेरा, फटाफट से ये नोट कर लो और कीप योर फोन्स रेडी. हियर इट गोज.
1: लाइट्स कैमरा सीन टेस्ट.
2: गुस्सा तेरा प्यार बन जाए तो, दुश्मन मेरा यार बन जाए तो, मैं ये जहां भी तुझे दे दूं.
3: क्या है दिल,
0: ऑल राइट. हल्का सा गाना मैंने इसलिए सुनाया ताकि आपको पता चले ये कौन सी मूवी है, क्योंकि मैं अगर आपकी जगह रहती ना मैं नहीं गेस कर पाती. 5000 1896 व्हाट्सएप नंबर है मेरा, यहाँ पर आइए बताइए ये कौन सी मूवी है. और गजब है भाई, अब्दुल रज्जाक जी का मैसेज आ गया है विद द राइट आंसर. यू आर एब्सोल्युटली राइट. अच्छा, अपनी आवाज़ रिकॉर्ड कर रहे हो तो पहले मुझे बंद कर दो, यानी रेडियो बंद करके अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करो, नहीं तो होता है क्या आप मुझे ही मेरी आवाज़ सुना देते हो. ठीक है ना, इंतजार कर रही हूँ आपके जवाबों का. तब तक के लिए अगला गाना, वन ऑफ माई फेवरेट सॉन्ग्स यार, आशीष कौर की आवाज़, यासिर देसाई का साथ, ड्राइव मूवी का ये गाना ऑन मिर्ची. माइक से दिल तक आफरीन के साथ बने रहिएगा. इट्स हॉट.

0: Hollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: Aamir Khan, PK was an iconic film. कई सारे iconic scenes थे. Which one was the most difficult? Radio पकड़ के खड़े रहना या फिर?
3: उसने मुझे तकलीफ नहीं, तकलीफ मुझे पान में हुई. क्योंकि पूरे फिल्म के अंदर मैं पान खाता हूँ. मेरा किरदार जो पान का बड़ा शौकीन है. तो दिन में करीब 100 पान हो जाते थे मेरे. और 100 पान से तो बड़ी तकलीफ होती है. ज़बान चल जाती है. उसमें हम सुपारी नहीं डालते थे. थोड़ा इजीयर हो जाता था विदाउट सुपारी. चूना और कत्ता होता था.
2: आमिर खान अपने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाते रहते हैं. दिन के 100 पान कौन खाता है यार. आप सुन रहे हैं मिर्ची. इट्स हॉट.
0: बॉलीवुड बोल्डा. बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा.
1: ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
4: अ रिंग फॉर द न्यूली मैरिड. क्यूट लिटिल बैंगल फॉर द न्यूबॉर्न.
5: अरे यार, हॉलीडे सीजन इज हियर. और फिर वही गिफ्टिंग का टेंशन. फिर मालबार गोल्ड एंड डायमंड्स गोल्डन समर के साथ पाइए फ्री कैश वाउचर्स और डायमंड एंड प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेजेस. प्लस एक्सचेंज योर गोल्ड ज्वेलरी एंड अपग्रेड टू द लेटेस्ट डिजाइंस विदाउट एनी लॉस. और सुनो, देयर इज मोर. विद द इंपोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन द GCC. विजिट मालबार गोल्ड एंड डायमंड्स टुडे.

0: मिर्ची मॉर्निंग्स ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।
1: वेल मिर्ची मॉर्निंग्स पर जुड़ गई है आपके साथ After a very wonderful track, one of my favorites, and अगर आप मुझे काफ़ी अरसे से सुन रहे हैं ना so you should know, आफरीन की शो में एक अमित त्रिवेदी का कंपोज किया हुआ गाना बजना ही बजना है because गाने हैं भी तो इतना कमाल के भाई नैना दा कि उस क्या कसूर अमित त्रिवेदी का गाया हुआ अमित त्रिवेदी की म्यूजिक अंधाधुन का ये गाना right here on मिर्ची आफरीन के साथ आप सुन रहे हो। लेकिन अभी फिलहाल आपको जो मैंने डायलॉग सुनाया था ना थोड़ा डगमग डोला तो हो गए थे आप, लेकिन हैं अपने पास तो है ना बॉलीवुड के ऐसे धुरंधर जो बराबर जवाब दे देते हैं। डायलॉग कौन सा है पहले वो देखते हैं और उसके बाद में आपके जवाब भी यहाँ पर सुनाती हूँ मैं, सही गलत सारे जवाब सुनाऊंगी मैं। जबर पकड़ो सबर पकड़ो। सो हियर इट गोज।
0: लाइट कैमरा सीन टेस्ट सीन टेस्ट।
2: गुस्सा तेरा प्यार बन जाए तो दुश्मन मेरा यार बन जाए तो मैं ये जा भी तुझे दे दूं।
3: क्या है दिल?
1: मैंने थोड़ा सा गाना जान मुझ का प्ले किया था ताकि आप समझे कौन सी मूवी है। देखो आफरीन अगर डिफिकल्ट देती है ना सवाल तो हल्का फुल्का सा हिंट देकर जाती है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे मैसेजेस आए हैं। नीरज का कहना है ये दिल जले हैं, तो किसी का कहना है ये प्यार तो होना ही था, तो किसी का कहना है यहाँ पर ये रास्ता है प्यार के, त्रिशा ये गलत है। उसके अलावा यहाँ पर मैसेजेस, लेट्स हियर योर मैसेजेस एज वेल।
4: हाँ जी गुड मॉर्निंग।
1: गुड मॉर्निंग।
4: वॉइस ऑफ द एक्टर इज अजय देवगन।
1: हाँ वो तो ठीक है।
4: प्यार तो होना ही था।
1: सच्ची प्यार तो होना ही था नहीं है माय फ्रेंड चेतन। इसका जवाब क्या है ये हमारे सही जवाब से सुनते हैं।
5: गुड मॉर्निंग। द नेम ऑफ द मूवी इज राजू चाचा, प्रोड्यूस्ड बाय अजय देवगन हिमसेल्फ एंड प्रोटोगनिस्ट अजय देवगन and काजोल and a little cameo by ऋषि कपूर। थैंक यू।
1: बात है, थैंक यू सो मच। यस इट इज राजू चाचा। और इनकी कमाल की बात ये है ये हमारे लिसनर हर रोज हमें मैसेज करते हैं। इनका नाम है मोहम्मद अख्तर और ये डिटेल में डायरेक्टर के साथ में प्रोटोगनिस्ट एंटागनिस्ट सब कुछ बताएंगे हमेशा। सो योर नॉलेज अबाउट बॉलीवुड भाई आकर रिप्लेस कर लो, मुझे सब पता है आपको तो। सो वेल बहुत सारे लोगों का मैसेज आया है यहाँ पर। उपेंद्र शर्मा का सही जवाब आया है। नाउ दैट त्रिशा हर्ड द एंटायर मैसेज इट इज राजू चाचा। देन आई हैव कौन है ये फहमीदा फातिमा का मैसेज है, मोहम्मद यूसुफ खान का मैसेज है। देन आई हैव समवन हियर, अपने अपना नाम लिखा करो भाई ऐसे मुझे नहीं समझ में आएगा, ठीक है ना। सो यूसुफ का भी मैसेज आया है एंड मैनी मोर। अब्दुल रज़ाक का भी मैसेज आया है विद राइट आंसर राजू चाचा और शान की आवाज में ये अगला गाना। ब्यूटिफुल सॉन्ग दिस इज। और शान एक अलग ही अपने आवाज में इमोशंस इस गाने के थ्रू हमें पहुंचाते हैं।

0: साहब जी, ये मिर्ची हेल्पलाइन है
1: जी? बिल्कुल, बताइए सवाल क्या है?
0: ओ साहब जी, नूडल्स का एक पैकेट बनाओ तो कम पड़ता है और दो बनाओ तो बहुत ज्यादा होता है, तो क्या करूँ?
1: सिंपल है, तू कस्टमर को ऑर्डर पूछ के बनाना, वो बोले उतना ही बनाना।
2: ऐसे ही लाइफ के टेढ़े सवालों का लॉजिकलेस जवाब चाहिए तो भेजो आपके क्वेश्चंस मिर्ची हेल्पलाइन पर व्हाट्सएप ऑन 8422983983।

0: गाने को गाया है महमूद, अमिताभ भट्टाचार्य, राघव चैतन्य और रुआ के ने। म्यूजिक दिया है प्रीतम ने और लिरिक्स लिखे हैं अमिताभ भट्टाचार्य ने। फिल्म कॉकटेल 2 से सुनते रहिए माशुका, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना, 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: अच्छा जानते हो इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? प्यार ना, गुस्सा ना, इजी मनी। ऐसी कोई स्कीम आपके सामने आई है कि सिर्फ 10 लोगों को जोड़िए, घर बैठे पैसे कमाइए और फिर पता चला कि पैसा तो गया, साथ में दोस्त और रिश्तेदार भी नाराज हो गए। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को राइट ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। और ऐसे ही कुछ स्कीम पर ये नया OTT सीरीज आया है।
2: भाभी जी, एकदम लेटेस्ट डिजाइन है।
3: फ्रेश है भैया, फ्रेश है, एकदम नया आया है।
4: अरे मार्केट में नया क्या है?
1: नया तो बहुत कुछ है, लेकिन अगर आप भी किसी पिरामिड स्कीम के झांसे में फंस गए थे या किसी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के डबल योर मनी वाले गुरु से बच के निकले हैं, तो इस वीकेंड की पहली रिकमेंडेशन आपके लिए है द पिरामिड स्कीम ऑन Amazon प्राइम। हरिद्वार के बैकड्रॉप में बनी ये डार्क कॉमेडी दिखाती है कि क्विक मनी का सपना कैसे ग्रीड और केओस में बदल सकता है। रेलिवेंट भी है, रिलेटेबल भी है और थोड़ा अनकंफर्टेबल भी हो सकता है। वेल, अगर आप क्राइम थ्रिलर के लवर हो तो ब्राउन ऑन Z5, करिश्मा कपूर एक ग्रिटी कॉप के रोल में दिखाई दे रही है आपको, समथिंग विच शी इज नेवर डन आई थिंक सो। सीरियल किलर इन्वेस्टिगेशन के बीच अपने पर्सनल डीमंस से भी लड़ती नजर आएगी। अपार्ट फ्रॉम दैट, वी ऑल्सो हैव नेटफ्लिक्स पर माँ बहन, एक डार्क कॉमेडी है जहाँ माधुरी दीक्षित और तृप्ति डिमरी की एक ऐसी सिचुएशन में आ जाती है उनके पास कि जहाँ किचन में डेड बॉडी मिल जाए तो फैमिली बॉन्डिंग भी अलग लेवल की हो जाती है। वेल, रियल लाइफ इंस्पिरेशन अगर आपको पसंद है तो मेड इन इंडिया अ टाइटन स्टोरी जरूर देखिए। ये सिर्फ एक वॉच ब्रांड की कहानी नहीं है बल्कि इंडियन एंटरप्रेन्योरशिप, विजन और परसिवरेंस की स्टोरी है। और ये भी आ रहा है Amazon प्राइम पर। और देखिए, फैमिली के साथ कुछ वार्म और होलसम देखना हो तो काफ़ी हफ्तों से मैं रिकमेंड कर रही हूँ गुल्लक, जो Season 5 के साथ आया है। और ये मत कहिए कि मैंने गुल्लक कभी देखा ही नहीं है, नहीं देखा है तो Season 1 से शुरू करो एंड आई एम सो श्योर यू Not going to regret for this। मिश्रा परिवार फिर से आपको याद दिलाने वाला है कि लाइफ की सबसे बड़ी स्टोरीज अक्सर हमारे लिविंग रूम, डाइनिंग रूम पर ही लिखी जाती है। सो यस, काफी सारी चीजें मैंने बता दी आपको। वीकेंड पर आप क्या देख सकते हो? पैसा डबल करने वाले स्कीम से दूर रहिए, लेकिन एंटरटेनमेंट डबल करने वाले शोज को जरूर चांस दीजिए। माइक से दिल तक आफरीन है आपके साथ ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Pepe Mirci. Escabana,
1: buscabana, sacabana. Rambala. Burga, burga. La viedva la burga. Mirci, burga.
2: Alo? Alo?
3: Ama bhai. Bhai, kon bol raha
2: hai?
3: अब मुझे अब पता चला
2: भाई कौन बोल रहा है। हेलो कौन बोल रहा है भाई।
3: अब मुझे आप बताया उसने तू भी यार तू एक नंबर का आइटम मेरी
2: भाई भाई
3: मुझे आप बताया असल मैं वहां गया हुआ था। अबे मुझसे कह रहा
2: बता तो दे भाई। अबे भाई ये तो बता दे कौन बोल रहा है क्या बात है।
3: तूने नताशा को प्रपोज कर दिया भाई सबके सामने।
2: अबे भाई कौन लताशा।
3: नताशा यार नताशा को प्रपोज नहीं किया।
2: अबे भाई कौन लताशा मैं तो लताशा को जानता भी नहीं।
3: तो तू पहले मुंह नहीं फाड़ सकता था।
2: भाई तूने बोलने का मौका ही कहाँ दिया भाई तू तो हंसता ही रहा।
3: अबे तो तुझसे पहले नहीं बोला जा सकता था। मैं तो हंस रहा था तू तो चुप था। बता देता मुझे मैंने नताशा को नहीं छेड़ा मैंने नताशा को प्रपोज नहीं किया। मैं हंसे जा रहा हूँ की तरह। नहीं मैं हंसे जा रहा हूँ की तरह और तू मजाक उड़ा रहा है मेरी।
2: मैं कैसे बोल देता जब तू हंसे जा रहा।
3: अबे तो
2: सुनने का मौका नहीं दिया। मैं हेलो हेलो करे जा रहा हूँ।
3: तू शुरू में कह देता कि मैं नहीं बोल रहा मैंने नताशा को नहीं छेड़ा रॉन्ग नंबर लग गया ये बोलने में तेरा मुंह फट रहा था क्या। पांच साल में हंसी आती है वो भी बर्बाद कर दी। तू पहले नहीं बता सकता था मुझे कि मैं नहीं बोल रहा।
2: फोन तूने करा तूने
3: मैंने क्या फोन मैंने क्या तो तेरे हाथ में तो था तेरे मुंह में जुबान नहीं थी। तू ये दिमाग खराब कर रहा है ऊपर से।
2: मैं तो पूछा वो तू बोल कैसे रहा भाई।
3: भाई मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मैंने ऐसी किसी का नंबर मिला दिया आपका लग गया। मैं आपका मुर्गा बना रहा था थोड़ी सी मजाक करी और वो अच्छी खासी।
2: तो भाई ये बात पहले बता देते यार इतना तुमने अटवा दिया टेंशन अलग दे दिया।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

ऐसा होता है आपके साथ कि एक गाना कोई पसंद आ जाए तो इतना आप सुनते हो ना उसे, मतलब एक बार सुनने से जी भरता ही नहीं है, यू आर लिसनिंग टू दैट ट्रैक ऑन लूप, फिर वो आप इतना सुन लेते हो कि आप फिर उसी से बोर हो जाते हो। लेकिन फिर ऐसा आता है पल के बहुत टाइम बाद, बहुत महीने या सालों बाद आप वो गाना फिर से सुनते हो एंड देन यू लाइक दैट सॉन्ग अगेन। ऐसी कुछ फील हुआ मुझे अभी गाने से, सोनू निगम और कृष्ण कली साहा की आवाज में ये गाना परम सुंदरी का परदेसिया बहुत सुनती थी मैं और फिर मैंने सुनना बंद कर दिया और अभी सुनकर मुझे अच्छा लगा। लेकिन अभी जो मैं आपको सुनाने वाली हूँ वो आपको सुन के बहुत अच्छे लगने वाला है भाई, खनक जो है ना एक पैसों की। आई पे का एक्सचेंज रेट आज ये कह रहा है दैट एक अच्छी रियाल के बदले मिल रहे हैं इंडियन रुपीस 25.92, वहीं जनाब पाकिस्तानी रुपीस इज एट 76.69, बांग्लादेशी टाका की बात करें तो 33.78 पर है, श्रीलंकन रुपीज ऑल टाइम हाई 91.63 पर, श्रीलंकन एंड उसके बाद नेपाली रुपीज इज एट 41.37। ये थे आज के एक्सचेंज रेट, घर भेजे पैसे, ढेरों सारी खुशियां, माइक से दिल तक आफ्रीन के साथ बने रहिएगा ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: मिर्ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तुझे पता है राजस्थान के एक गांव में रेलवे स्टेशन पर कोई एम्प्लॉय है ही नहीं, वहां के गांव के लोग ही टिकट बांटते हैं।
3: फिर तो यहाँ वो चाय चाय ये आवाज नहीं बल्कि ये आती होगी टिकट टिकट। और यार COD तो यहाँ भी होता होगा ना, कैश ऑन डेस्टिनेशन।
4: मिर्ची इट्स हॉट।
5: इस वेकेशन प्यार से हमारा इंतजार करने वाले अपनों को एक गोल्डन सरप्राइज क्यों ना दे। मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स के गोल्डन समर ऑफर के साथ डायमंड एंड प्रेशियस जेम ज्वेलरी खरीदने पर पाइए फ्री कैश वाउचर्स। अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी को एक्सचेंज कीजिए विदाउट एनी लॉस। और अब विद द इंपोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन GCC। विजिट मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स टुडे।
6: दोस्ती कहीं कुछ सुन ले मैडम, नो सॉरी नो थैंक यू।
7: भाई साहब सॉरी एंड थैंक यू, हमें दोस्ती नहीं एंटरटेनमेंट चाहिए।
2: तुम मिर्ची सुनो ना, जहाँ एंटरटेनमेंट खूब मिलेगा।
8: खूब मिलेगा, खूब मिलेगा।
9: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
10: 89.6 FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।
1: वेल मिर्ची मॉर्निंग्स पर आप सुन रहे हो आफरीन को वेद शर्मा की आवाज में ये गाना, और मिर्ची घड़ी का इशारा हो रहा है वैसे गेम खेलने की तरफ, लेकिन घड़ी बता रही है कि वक्त हो रहा है 8:40।
0: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीम मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर।
1: वेरी गुड मॉर्निंग कतर एंड वेलकम बैक। हाँ जी, जैसे मैंने बताया कि भाई गेम शेम खेलना है, वीकेंड मोड में ऑलरेडी आ गए हैं। थर्सडे को सच सच बताओ दिल लगता है क्या काम में? सच बताओ भाई, मतलब मेरा तो वीकेंड प्लानिंग में चलता है कि मैं उसी इसमें जीती हूँ। मतलब थर्सडे को थोड़ा सा मैं फ्यूचर में जीती हूँ कि ये करना है, वो करना है, ये है। पता है मुझे नहीं लगता, आप कितना भी बोलो कि नहीं नहीं आफरीन थर्सडे को बहुत काम रहता है, लेकिन वीकेंड पर मतलब पूरा पूरा ध्यान रहता होगा आपका, बिल्कुल काम में मन नहीं लगता होगा। और बस ऐसे ही आपका यहाँ पर मन लगाने आ गई हूँ मैं बॉलीवुड के गेम में। यस, कहानी सुनाने वाली हूँ एक मूवी की, आपने गेस करना है कि आखिरकार ये कहानी कौन सी मूवी से है। सो हियर इट गोज। एक लड़की है जो इतनी सीधी और स्टूडियस है कि लोग उसे देखकर रिश्ता रिजेक्ट कर देते हैं बिफोर इवन नोइंग हर। घर में सबको उसकी शादी की टेंशन है और बेचारी हर रिजेक्शन की रिपोर्ट कार्ड की तरह वो कलेक्ट करती रहती है। उसके सामने रहता है एक एंग्री यंग मैन, मुझसे दूर रहो टाइप बंदा, जिसके बारे में पूरी सोसाइटी र्यूमर सर्कुलेट करती रहती है। नेचुरली वही बंदा उसकी लाइफ का सबसे बिगेस्ट सपोर्ट सिस्टम बन जाता है। एक मेकओवर होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती है, फैमिली ड्रामा होता है, और जो लड़की कभी कॉन्फिडेंटली बात नहीं कर पाती थी वो धीरे धीरे अपनी जिंदगी जीना सीख जाती है। और फिर जब फाइनली लगता है कि यूनिवर्स ने दोनों को हैप्पी एंडिंग अप्रूव कर दी है, लाइफ एक ऐसा ट्विस्ट देती है जो पूरी फिल्म को हार्ट ब्रेक कैटेगरी में डाल देता है। 5000-1896 पर व्हाट्सएप कीजिए और बताइए आखिर आफ्टरीन कौन सी मूवी की बात कर रही है। जल्दी जल्दी बताओ। चलो, एक ऐसी कहानी जहाँ पर वही स्टूडियस लड़की और हार्ट ब्रेक वगैरह सब कुछ है, बट बहुत ही ज़्यादा ये कल्ट क्लासिक मूवी में गिनी जाती है। ठीक है, 5000-1896। ताहिर का मैसेज आ गया है और ये भी कहना है कि ये उनकी वन ऑफ द फेवरेट मूवी है। अच्छा जी, ठीक है, नाम क्या है वो बताऊंगी नहीं, नहीं तो फ्लो फ्लो में मेरा यहाँ पर उल्टा ही हो जाता है, नाम निकल जाता है। आगे बढ़ते हुए अगले गाने की तरफ, माइक से दिल तक आफरीन के साथ बने रहिएगा। इट्स हॉट

0: लड़के।
1: इस वेकेशन प्यार से हमारा इंतजार करने वाले अपनों को एक गोल्डन सरप्राइज क्यों ना दे। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स के गोल्डन समर ऑफर के साथ डायमंड एंड प्रेशियस जेम ज्वेलरी खरीदने पर पाइए फ्री कैश वाउचर्स। अपने पुरानी गोल्ड ज्वेलरी को एक्सचेंज कीजिए विदाउट एनी लॉस। और अब विद द इंपोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन जीसीसी। विजिट मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स टुडे।
2: अर्ज किया है
3: इरशाद

करण औजला की आवाज में ये गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, अ वायरल ट्रैक ऑन इंस्टाग्राम. वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक. जी सवाल जवाब का सिलसिला यहाँ चल रहा था और मैंने ये रियलाइज किया कि बॉलीवुड में ये सर्टन काइंड ऑफ स्टोरी, एक तो है लव ट्राइंगल हर एक मूवी में, बहुत सारी मूवी में होती ही है, उसके अलावा दिस काइंड ऑफ स्टोरी भी बहुत ज़्यादा कॉमन है जहाँ लड़की सीधी सादी सी होती है, फिर उसका मेकओवर होता है, फिर लड़का उसे पसंद करने लगता है. बहुत सारी मूवीज में है ना ऐसी ही कुछ कहानी. पर मैंने स्टोरी सुनाई थी आपको, आपने गेस करना था कि आखिर ये मूवी है कौन सी. एंड बहुत सारे आंसर्स आए हैं, थोड़े मिक्स जवाब भी आए हैं. सो वेल लेट्स सी के कहानी क्या है, लेट्स हियर इट आउट और उसके बाद में आपके जवाब भी यहाँ पर मैं बताती हूँ. चलिए ठीक है, हियर इट गोज. एक लड़की है जो इतनी सीधी और स्टूडियस है कि लोग उसे देखकर ही रिश्ता रिजेक्ट कर देते हैं बिफोर इवन नोइंग हर. घर में सबको उसकी शादी की टेंशन होती है और बेचारी हर रिजेक्शन को रिपोर्ट कार्ड की तरह कलेक्ट कर रही होती है. उसके सामने रहता है एक एंग्री यंग मुझसे दूर रहो टाइप बंदा जिसके बारे में पूरी सोसाइटी ना र्यूमर सर्कुलेट कर रही होती है. नेचुरली वही बंदा उसकी लाइफ का सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम बन जाता है. एक मेकओवर होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती है, फैमिली ड्रामा होता है और जो लड़की कभी कॉन्फिडेंटली बात भी नहीं कर पाती थी वो धीरे धीरे अपनी जिंदगी जीना सीख जाती है. और फिर जब फाइनली लगता है कि यूनिवर्स दोनों को हैप्पी एंडिंग अप्रूव कर दी है, लाइफ एक ऐसा ट्विस्ट देती है जो पूरी फिल्म को हार्ट ब्रेक कैटेगरी में परमानेंटली रजिस्टर कर देता है. बताइए एंड में प्यार जीत भी जाता है और हार भी. कौन सी मूवी है ये, कौन सी मूवी है वो तो बहुत सारे लोगों ने बताया यहाँ पर. एंड आफ्टर ये नरेशन के बाद मुझे ये भी लगा कि यार हाँ जी मिलती जुलती है कहानी. यहाँ पर मोहम्मद यूसुफ खान का मैसेज आता है, जीत जीत नहीं है. किसी ने यहाँ पर मैसेज किया कि ये मूवी है मलाल, नहीं ये वो भी नहीं है. फिर यहाँ पे मैसेज आता है कि ये मूवी दिल तो पागल है, नहीं ये वो भी नहीं है. सो ये है कौन सी मूवी. ऑल्सो कल हो ना हो भी किसी ने कहा, कहीं ना कहीं मुझे लगा कि हाँ ठीक है कल हो ना हो से थोड़ी सी मिलती जुलती है. खूबसूरत जहाँ पर संजय दत्त ने उर्मिला का मेकओवर किया था, लेकिन हार्ट ब्रेक थोड़ी ना हुआ था वहाँ पर. सो वेल कौन सी मूवी है जिन्होंने यहाँ पर मैसेजेस किए है. ताहिर का मैसेज आया है, अंजलि का मैसेज आया है, जाहिद का मैसेज आया है, देन आई हैव समवन, ये कौन है, अपना नाम लिखा करो भाई साहब, निशांत, हाँ जी निशांत का मैसेज आया है. एंड जिसने सही जवाब दिया है इन सभी ने, द आंसर इज सनम तेरी कसम. कल्ट क्लासिक मूवी यार, जितना उन्होंने भी ये मैसेज किया है ना, ये कहते हुए किया है कि आफरीन ये हमारी फेवरेट वाली मूवी है. सो आपकी फेवरेट वाली मूवी से आपका फेवरेट गाना प्लेइंग नेक्स्ट अंकित तिवारी और पलक मुचल की आवाज में माइक से दिल तक आफरीन के साथ इट्स हॉट.

0: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन।
1: अरे अरे मामू मिर्ची हेल्पलाइन बता सवाल क्या है।
0: मुझे स्टेडियम में मैच देखने तो जाना है पर भीड़ नहीं पसंद, क्या करूं?
1: अरे तो सिंपल है ना गोचू, तू दूसरे स्टेडियम में जाके फोन में मैच देख लेना, वहाँ भीड़ होगी नहीं।
2: उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा।
3: ऐसे ही लाइफ के टेढ़े सवालों का लॉजिकलेस जवाब चाहिए तो भेजो आपके क्वेश्चंस मिर्ची हेल्पलाइन पर व्हाट्सएप ऑन 8422983983। इट्स हॉट।

0: मधुमंती वाक्ची की आवाज में धुरंधर का ये गाना गिविंग द राइट काइंड ऑफ एनर्जी दिस वीकेंड। मिर्ची घड़ी का इशारा हो रहा है 9:05 की तरफ और आफरीन है आपके साथ। अगला गाना लैम्बर हुसैनपुरी की आवाज में, उसके तुरंत बाद आके ढेर सारी बातें करेंगे ना ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीम मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर।

वेल, ये गाना इतनी ज्यादा एनर्जी देता है और मुझे वो सारी यादें याद दिलाता है कि यार मूवी कितनी ज्यादा जबरदस्त थी. तनु एज मनु एंड व्हाई नॉट, इस तरह की मूवीज फिर से क्यों नहीं आ रही है. आइदर हम बहुत ज्यादा एक्शन वाली मूवी देखते हैं, धूम धड़ाका वाली मूवी देख रहे हैं कि बॉलीवुड में वह आ रही है, या फिर एकदम नॉनसेंस मूवी आई वुड सी, जिसे ये जवानी है तो इश्क होना है, सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी, मतलब जो मूवी का टाइटल ही आपको अगर याद नहीं है तो कहानी कहाँ से याद रहने वाली है भाई. विद साफरीन है आपके साथ बॉलीवुड से बहुत ज़्यादा उम्मीद लगाते हुए विद दिस मूवी मैं वापस आऊँगा, जो मेरा आज देखने का पूरा इरादा है. हाँ जी, लेकिन आज बहुत लोगों का कुछ और भी चीजें देखने का इरादा है. जैसे फुटबॉल वर्ल्ड कप चल रहा है और हमारे एक लिसनर ने हमें कहा है कि आफरीन फुटबॉल वर्ल्ड कप के जो स्कोर्स है तुम्हारे शो पर कोशिश कीजिए कि यार दो बार तो बता दे भाई, बहुत सारे फैंस हैं यहाँ पर. एंड आई टोटली एग्री टू यू, इसीलिए फिर से मैं लेकर आई हूँ कि क्या चल रहा है हालचाल फीफा वर्ल्ड कप 2026 के बारे में. कल की मैचेस अगर देखा जाए, हमारे लिए तो कल है ना और यूएस के लिए आज है. गाना पनामा के बीच में मैच हुई है जहाँ गाना ने जीत हासिल की है एक गोल करके. अपार्ट फ्रॉम दैट उज्बेकिस्तान वर्सेस कोलंबिया, जहाँ कोलंबिया के 3 गोल करके वो उन्होंने जीत हासिल की है. और चेक रिपब्लिक साउथ अफ्रीका की जो आज शाम 7 बजे की मैच है, अगर आपकी ये फेवरेट टीम है चेक रिपब्लिक देन यू शुड वॉच दिस मैच. स्विट्जरलैंड वर्सेस बॉस्निया एंड हर्जेगोविना, इनकी भी मैच है आज रात 10 बजे. एंड लेट मी टेल यू, ये ग्रुप बी से बिलोंग करते हैं जहां हमारा कतर है, तो हमारे लिए ये मैच काफी इंपॉर्टेंट है. एक पॉइंट कतर को ऑलरेडी मिल चुका है. स्विट्जरलैंड वर्सेज बॉस्निया, अब इसमें किसको पॉइंट मिलता है, ये सारी चीजें आगे कतर के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. और कतर के लिए कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है माय फ्रेंड्स, क्योंकि कनाडा वर्सेस कतर ये कल मैच होने वाली है रात 1 बजे. वैसे मैं बता रही हूं हमारे कतर का टाइमिंग, ठीक है. मेक्सिको वर्सेस साउथ कोरिया, ये है मैच रात 4 बजे. यूएसए वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, ये मैच हो रही है रात 10 बजे. सो ऑल इन ऑल बहुत अच्छे से यहाँ पर सारे मैचेस का मैंने बता दिया है आपको, सिलसिला क्या चल रहा है, आगे क्या चलते आएगा चलेगा, ये सब कुछ आपको यहाँ पर पता चलेगा आपकी सुबह वाली आदत यानी मिर्ची मॉर्निंग्स पर मेरे साथ यानी माइक से दिल तक आफरीन के साथ बने रहिएगा ऑन मिर्ची इट्स हॉट.

0: Mirci.
1: Mirci.
2: Iskabana, puskabana, sakabana. Rambana. Murga, murga. Na vietvala murga. Mirci, murga.
3: हेलो,
4: कुड आई स्पीक टू तानिया प्लीज?
3: स्पीकिंग।
4: ओके तानिया, मैं पीयूष बोल रहा हूँ मुंबई से। मुझे किसी ने आपका नंबर दिया था। तानिया, मैं पहले ये जानना चाहता हूँ, पहले मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता दूँ। हम एक शो शुरू करने वाले हैं, नखरों के खिलाड़ी।
3: अच्छा।
4: ऐसा होता है कुछ लोगों में कि नखरे होते हैं। मुझे आपका किसी ने नंबर दिया और उन्होंने बताया कि ये कुछ बहादुरी के काम कर चुकी हैं, कुछ डेयरिंग काम आपने किए हैं, मुझे थोड़ा सा बताएंगे?
3: जैसे कि मेरे मोहल्ले में ही एक लड़का है, बहुत बदतमीजी करता था लड़कियों के साथ। तो उसको कोई सबक ही नहीं सिखा रहा था, तो तानिया ही थी पूरे लोकेलिटी में जिसने उसको एक चाटा लगाया।
4: ओह गॉड।
3: और अब वो उस मोहल्ले में नजर ही नहीं आता है बंदा।
4: अरे ग्रेट। तो अब मतलब कुल मिला के आपको डर तो नहीं लगता ऐसे कामों से?
3: नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं लगता।
4: ओके, आई होप कि आप सिलेक्ट हो जाए। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आपके लिए बहुत अच्छी बात है, ये एक मौका है कि आप हमारे शो नखरों के खिलाड़ी में आ सकती हैं।
3: आ सकती हूँ मैं उसमें?
4: बिल्कुल आ सकती हैं। दो एपिसोड जो हैं वो शूट हो चुके हैं, अगला दिल्ली का है, तो दिल्ली की कुछ लड़कियाँ आएंगी, तो आप मुंबई आ सकती हैं नेक्स्ट वीक।
3: बॉम्बे आने के लिए पहले घर में बात करनी पड़ेगी मुझे।
4: जैसे आप और शोज देखती हैं खतरों वाले, उसमें ये होता है कि सांप वांप खाते हैं या मुंह से निकालते हैं या जंप करते हैं, या हमारा थोड़ा सा डिफरेंट है।
3: आपका क्या है?
4: उसमें ये होगा कि आप जैसे खड़ी हुई हैं, कैमरा आपके सामने है, एक्शन बोलने के बाद एक बहुत बड़ा चाकू आपकी गर्दन पे रखा जाएगा।
3: ठीक है।
4: और एक मशीन आपकी गर्दन के पीछे से आपकी गर्दन को पुश करेगी। तो हम मशीन में जितनी पावर है उसको बढ़ा के आपकी गर्दन के आर पार चाकू कर देंगे, और जो ब्लीडिंग ब्लीडिंग होगी वो बाल्टी इधर उधर लगा के हम खून सारा जमा कर लेंगे। मतलब अगर आपकी गर्दन कट गई है और ब्लड ग्रुप एक है, तो आप नेक्स्ट राउंड में जाने लायक आप जाएंगी।
3: नेक्स्ट राउंड के लिए बचूंगी तब जाऊंगी ना, जब सारा ब्लड ही निकल जाएगा, तो मैं करूंगी क्या सेकंड राउंड में?
4: सिर तो आपका है, वही तो मैं काटने की बात कर रहा हूँ, और आप ही कह रही है मैं बहादुरी के काम कर लेती हूँ, फिर आप ये नखरे दिखा रही है।
3: नहीं, मना क्या कर रही है, तो पागलों वाला गेम लग रहा है।
4: हेलो,
3: समझ नहीं आ रही, जब मैंने बोल दिया है मैं नहीं करना चाहती हूँ ये शो।
4: तानिया, मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ, और आपका जो दोस्त है अमित, उसने मुझे नंबर दिया था, उसने कहा था इसका मुर्गा बना, तो मैंने बना दिया यार, अब इसमें मेरी क्या गलती है?
1: मिर्ची मुर्गा नवीद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
5: A ring for the newly married, cute little bangle for the newborn. अरे यार, holiday season is here, और फिर वही gifting का tension. तो फिर मालबार gold and diamonds, gold and summer के साथ buy a free cash vouchers on diamond and precious gem jewelry purchases. Plus, exchange your gold jewelry and upgrade to the latest designs without any loss. और सुनो, there's more. With the import duty revision in India, you can now save up to 15% on gold prices here in the GCC. Visit Malabar Gold and Diamonds today.

पावर्ड बाय iPay, बेस्ट रेट नो स्ट्रेस iPay वॉलेट का भरोसा डाउनलोड कीजिए आज ही iPay, द बेस्ट रेमिटेंस रेट इन कतर।

0: हॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: निमृत कौर, आई लव्ड यू इन लंच बॉक्स। अगर आपका लंच बॉक्स आपके घर से आ रहा होता तो उसमें क्या क्या होता?
2: ओह, अगर घर से डब्बा आ जाता हर रोज तो क्या बात थी। सच में अगर होता तो मैं अपनी माँ के बने हुए भरे हुए करेले और आलू के पराठे और साग और गाजर का हलवा और खीर और डब्बा 6-7 कंपार्टमेंट्स हो सकते हैं डब्बे में।
1: निमृत कौर, आप सिर्फ आवाज करो, हम 250 कंपार्टमेंट्स डाल देंगे आपके लंच बॉक्स में। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल, ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: जानते हो, जिंदगी के सबसे मुश्किल रिश्ते वो नहीं होते जो टूट जाते हैं, मुश्किल तो वो होते हैं जो ना पूरे मिलते हैं ना पूरे बिछड़ते हैं। और इसी बात पर जॉन एलियट साहब का एक कमाल का शेर याद आ रहा है।
1: आफरीन की डायरी से शायरी।
0: सिलसिला ही ना होता ना ही गिला होता, सिलसिला ही ना होता ना ही गिला होता, या तो मिल गया होता या मिला ही ना होता। क्या बात है, जब कहानी खत्म भी नहीं होती और आगे भी नहीं बढ़ती, ना वो पूरी तरह अपने होते हैं ना पूरी तरह गैर, और इसी बीच की जगह का नाम है याद। माइक से दिल तक आफरीन के साथ बने रहिएगा, इट्स हॉट।

0: Mirchi Mornings, brought to you by Kim's Health Medical Center.
1: Well, one of my favorite tracks, my recent favorite, फिलहाल मैं इसे लूप पर सुन रही हूँ बिकॉज इतनी प्यारी सी मीठी सी आवाज है निलंजना की. और मुझे जब भी मैं गाना सुनती हूँ ना, मुझे सीधा शर्वरी वाघ की शक्ल नजर आती है. द वे शी इज एक्सप्रेस्ड हर इमोशंस एंड वेदांग रायना, हाय यार तुम तो सरप्राइज पैकेज निकले हो. गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक. आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को राइट हियर ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स. और देखिए भाई, ये मैं वापस आऊंगा का गाना था मस्कारा. और जो मूवी ना, ऐसा होता है कि अक्सर प्रोडक्शन हाउसेस जो होते हैं, फिल्म मेकर्स होते हैं, बहुत प्रमोशन करते हैं कोई मूवी का. और फिर एक ऐसा होता है जहां मूवी वर्ड ऑफ माउथ से चलती है सिर्फ, कि फिल्म मेकर्स को मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती है, बस उनका काम यहाँ पर इट सेज इट ऑल. एंड दिस इज व्हाट इज हैपनिंग विद मैं वापस आऊँगा, जहाँ इम्तियाज अली की ये मूवी, लोग वो नहीं कह रहे कि देखने जाओ, लोग जो देख कर आ रहे हैं थिएटर में उनका कहना है कि भाई ये जो मूवी है ना, बाद में फिर कल्ट क्लासिक बनने वाली है. और फिर बाद में ये बड़े पर्दे पर आएगी नहीं, हो सकता है 10-15 साल बाद आएगी, लेकिन अभी अगर आपको मौका मिल रहा है जाकर देखो. देखो मैंने देखा नहीं है ये मूवी, लेकिन यही सारे लोग जो देख कर आए हैं. इनफैक्ट वन ऑफ आर लिसनर जिनका नाम यहाँ पर मैक्स है, उन्होंने बड़ा खूबसूरत सा एक ये पूरा मूवी का रिव्यू लिखा है कि इट्स अ फैंटास्टिक एंड ब्यूटिफुली क्राफ्टेड मूवी. और वो जो फील है और जो 1940s और 50s का एरा दिखाया गया है इस मूवी में, बहुत ही रियलिस्टिक दिखाया गया है, क्लासिक फील देता है. और सभी की तारीफ की है, दिलजीत दोसांझ की, नसीरुद्दीन शाह की. सो दिस मूवी इज ऑन माई लिस्ट एंड देख रही हूँ मैं, कोशिश कर रही हूँ कि आज देखने चली जाऊँ, क्योंकि यार ऐसी मूवीज ना कतर में ज्यादा टाइम तक थिएटर पर रहती नहीं है, फटाफट से निकल जाती है. ठीक है, सो जहाँ हमने शर्वरी की बात की, शर्वरी वाघ का ये गाना सुनाया, कैन यू बिलीव द नेक्स्ट ट्रैक आई एम गोइंग टू प्ले, इसमें शर्वरी वाघ ने ही एक्टिंग की है. यस, जसमिन संला सचिन जिगर की आवाज में ये गाना. मैं लेती हूँ अलविदा, मिलूंगी अगले हफ्ते. अपना ख्याल रखिएगा यार, और सुनते रहेगा मिर्ची. माइक से दिल तक आफरीन लेती है अलविदा. टाटा बाय बाय, सायोनारा, इट्स हॉट.

0: यस, इट्स मिर्ची हेल्पलाइन। टेल मी।
1: यार रोज सुबह लैपटॉप लेके कुछ लिखने के लिए बैठता हूँ, नोटपैड भी खोलता हूँ, पर लिख ही नहीं पाता, क्या करूँ?
0: लिख नहीं पाता हूँ क्या करूँ? सिंपल मैन, नया कीबोर्ड ले ले।
2: मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे हलकट हंस।
3: ऐसे ही लाइफ के टेढ़े सवालों का लॉजिकलेस जवाब चाहिए, तो भेजो आपके क्वेश्चंस मिर्ची हेल्पलाइन पर व्हाट्सएप ऑन 8422983983।

0: वल फहीम अब्दुल्ला की खूबसूरत सी आवाज़ एंड व्हाट अ लवली ट्रैक इट इज़। ये खूबसूरत सा गाना तो मैंने आपको सुना दिया, लेकिन इतना बता दूं मिर्ची घड़ी में इस वक्त बज रहे हैं 10:05।
1: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीम मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर।
0: भाई साहब देखो, बात इतनी है ना कि कई दफा जिन बातों को हम नजरअंदाज करते हैं वो हमारी जिंदगी में काफी अहमियत रखती है। आपकी जिंदगी में मिठास के साथ स्पाइस का तड़का लगाते हुए एक बार फिर से आ चुकी हूँ। एंड सबसे पहले इस वक्त आपको कुछ तो याद दिलाना चाहूंगी। घर वालों से बात की, उन दोस्त यारों से बात की जो कहीं ना कहीं आपके लिए काफ़ी अहमियत रखा करते थे या आज भी हैं, लेकिन काम में इतने व्यस्त हो गए हैं कि उस बात को कहीं दबा दिया है। या तो फिर उस कज़न से, अपने भाई बहन से बात की जिनके साथ बचपन की इतनी खूबसूरत यादें जो है ना हमने मिलकर जी थी। यार पता है क्या, ह्यूमन ब्रेन जो है ना काफ़ी कमाल है, बड़ा मस्त है यार। हम जो है ज़िंदगी में अपनी प्रायोरिटीज़ को वक्त के साथ बदलना जो है वो सीख जाते हैं, लेकिन ये जो दिल है ना ये भी बड़ा कमाल है। यह हमें यही याद दिलाता है कि जिन लोगों ने, जिन बातों ने, जिन यादों ने आपकी ज़िंदगी के कई पहलुओं को बहुत खूबसूरत किया, भाई उसे बस कभी ना भूलो। इतना ही कहना चाहूँगी यार, अगर लाइफ में ऐसा कोई शख्स है या ऐसे कुछ लोग हैं जिनके कारण कहीं ना कहीं आपका बचपन काफ़ी अच्छा हुआ है, या आपके स्कूल कॉलेज टाइम्स की बड़ी ही प्यारी सी मेमोरी है, वो स्ट्रगल के दौर में कुछ लोग हैं जो आगे आए, आपकी मदद किए, भाई ज़िंदगी में कहीं भी क्यों ना पहुँच जाओ, किसी भी मुकाम को क्यों ना हासिल कर लो, लेकिन उन तक अपने दिल की बात पहुँचाना ही कभी ना भूलना कि माना ज़िंदगी जो है वो मसरूफ़ हो चुकी है, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं आप जो है मेरे दिल के कोने में बसते हैं। तो बस आज वो एक कॉल किसी एक ऐसे शख्स को ज़रूर करना और उन तक ये बात जो है वो ज़रूर पहुंचाना। फिलहाल करते हैं मिर्ची मॉर्निंग्स की शुरुआत, मीठी मिर्ची की शुरुआत बंजारी की आवाज़ में इस अगले प्यारे से गाने के साथ। एंड अगर इस वक्त आप मेरे साथ कनेक्टेड हैं तो मुझे फटाफट से एक गुड मॉर्निंग वाला मैसेज तो भेज दें। हाई हेलो 5000 1896 5000 1896। आई एम ईगरली वेटिंग फॉर योर मैसेजेस। इंस्टाग्राम मिर्ची 1 कतरिया मिर्ची अंशु। एन्जॉय। बंदी का नाम अंशु।

दे आज हमको, तू आंखें सुजाने दे, बाहों में ले ले और खुद को भीग जाने दे। है जो सीने में कैद दरिया, वो छूट जाएगा।

0: अधूरी सांस थी, धड़कन अधूरी थी, अधूरे हम, मगर अब चांद पूरा है फलक पे और अब पूरे हैं हम।
1: मिर्ची
2: इसका बना, उसका बना, सबका बना, क्या बना? मुर्गा मुर्गा नबीत वाला मुर्गा, मिर्ची मुर्गा।
3: हेलो
4: बेटा, अब घर आ जा, मामा परेशान है, खाना खा ले। ऐसे छोटी छोटी बातों पे नाराज होके नहीं जाते घर से, आजा।
3: हेलो, कौन बोल रहे हैं?
4: बेटा आजा, नहीं आजा आजा, एक आवाज भी नहीं आ रही। हेलो
3: हेलो
4: बेटा।
3: अंकल आप ये तो बताइए, बोल कौन रहे हो?
4: देख अपने बड़े बूढ़ों से ऐसे नाराज ही होते बेटा। एक तो बुढ़ापे में तू ही सारा, दूसरे ये कान से सुनाई नहीं देते और तू चला जाएगा।
3: अंकल मैं आपका बेटा नहीं हूँ।
4: तेरी आवाज भी नहीं आ रही है, घर आ जा बेटे।
3: अंकल ये तो बताइए, आप बोल कहाँ से रहे हो?
4: बेटे ऐसे नाराज होते हैं तो जानते
3: हैं। अंकल मैं आपका लड़का नहीं हूँ, आपने गलत नंबर मिलाया है।
4: बेटे नहीं आते, ये नाराजगी होती है तो ऐसे घर छोड़ कर जाते हैं।
3: जी माता जी से बात करा दीजिए।
4: बेटे आजा आजा बेटे।
3: अंकल माता कहाँ है?
4: छाता बेटे, छाता भी देंगे।
3: छाता नहीं अंकल, माता आप अपने कान के बात।
4: बेटा कोई गलती हो या देख तो बेटा माफ कर दे, ऐसे नहीं जाते।
3: अंकल मैं वो नहीं हूँ आपका लड़का, आप मुझे मत फोन करिए।
4: मेरे बात
5: इतनी जल्दी नाराज हो गए भाई, मेरे तो कान चलने लगे। दोबारा मिला।
3: हेलो
4: बेटे। हेलो
3: अंकल, आप परेशान हो रहे हैं, आप क्या नंबर मिला रहे हो?
4: हेलो बेटे, घर कब आ रहा है? घर कब? मैं खाना करवा दूं?
3: अरे अंकल मेरे बात कर,
4: अगर आप तू आ जाएगा तो आज
3: आपने नंबर क्या मिलाया?
4: तो कान में सुनाई दे बेटा, तेज बोल भाई जी, जो चाहिए दे देंगे। आजा बेटे।
3: अंकल मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप प्लीज फोन ना करिए।
4: हेलो, मैं फोन तो करना पड़ता बेटे।
5: क्योंकि किसी को मुर्गा बनाना पड़ता है। विक्रम, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, तुम्हारा मुर्गा बन रहा है, तुम क्यों चिल्ला रहे हो भाई?
3: क्या भाई, मेरा गला पूरा आपने दुखा दिया चीख चीख के।
5: अब क्यों तेज बोल रहे हो भाई, अब धीरे बोलो और आराम से मेरे साथ कह दो।
3: बोलना जरूरी है?
5: हाँ बिल्कुल जरूरी है।
4: आवाज नहीं आई, तेज बोल।
6: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।

मलकुमार सानू एंड अलका याग्निक की खूबसूरत सी आवाज़ और व्हाट अ लवली ट्रैक इट इज़। ये प्यारा सा गाना तो उस वक्त मैंने आपको सुना दिया, लेकिन महबूबा क्या ये बात आपको पता है? Hey, welcome back. You're listening to Meethi Mirchi and this is Aaj Anshu with you. Well, आपकी जिंदगी में मिठास के साथ स्पाइस का तड़का लगाते हुए एक बार फिर से आ चुकी हूँ। एंड एक बात जिसका हम सभी को बेसब्री से इंतज़ार है, वो हमारी ज़िंदगी में बहुत जल्द होने वाली है। इसकी कहानी भी मैं आप तक पहुंचाना चाहती हूँ। अगर मैं बात करूँ मिर्ची मॉमी अवार्ड सीज़न 5 की, तो फाइनली स्टेज जो है वो सेट हो चुका है। पूरी की पूरी एक्साइटमेंट जो है वो बिल्डअप हो चुकी है। हमारे जितने भी फाइनलिस्ट हैं, कंटेस्टेंट्स हैं, टॉप 16 हैं, उनकी प्रिपरेशन जोर शोर से पूरी तरह से कंटिन्यूड है। एंड इट इज़ गोइंग टू बी सैटरडे, दैट इज 20th ऑफ दिस मंथ, व्हेन वी आर गोना बी विटनेसिंग लाइव द ग्रैंड फिनाले ऑफ मिर्ची मॉमी अवार्ड सीज़न 5। And we couldn't be more excited, क्योंकि जिस तरह का participation इस बार हमें देखने को मिल रहा है, जिस तरह की entries आई थी, and उनमें से top 50 का सफ़र है ना, उसके बाद top 16 का सफ़र, ये बिल्कुल आसान नहीं था। So बहुत कुछ होगा, कमाल होगा, धमाल होगा। देखिए, अगर आपको लगता है कि मिर्ची मॉमी अवार्ड सीजन 5 में क्या कुछ हो रहा है, ये सारे के सारे अपडेट को अपने तक पहुंचाना है, तो बस एक ही काम करना होगा, मिर्ची 1 कतर ऑन इंस्टाग्राम, हमारी स्टोरीज को, सारे मैसेजेस को बस फॉलो करते रहिए। ग्लिम्स जो है, झलक जो है, आप जरूर देख पाएंगे। क्या पता इसके चलते आपको इंस्पिरेशन मिल जाए कि अगले एडिशन में खुद को पार्टिसिपेट करवाना है, अपनी वाइफ जो कि बहुत ही प्यारी आपके बच्चों की माँ है, उनको पार्टिसिपेट करवाना है, या आपकी मम्मी को खुद पार्टिसिपेट करवाना है। सो बस हम वेट करेंगे अगले एडिशन में, अगले सीजन में, लेकिन हाँ, इस बार की झलकियां जरूर आप तक पहुंचाएंगे। अरिजीत सिंह की आवाज, सुनिधि चौहान का साथ, अगला गाना एंजॉय, बंदी का नाम अंशु।

0: में चीज स्टोरीज स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तुझे पता है राजस्थान के एक गांव में रेलवे स्टेशन पर कोई एम्प्लॉय है ही नहीं, वहां के गांव के लोग ही टिकट बांटते हैं।
3: फिर तो यहाँ वो चाय चाय ये आवाज नहीं बल्कि ये आती होगी टिकट टिकट। और यार COD तो यहाँ भी होता होगा ना, कैश ऑन डेस्टिनेशन।
4: मिर्ची इट्स हॉट।

0: बॉलीवुड का स्पाइसी तड़का पूरे कतर को लगाया।
1: हाय दिस इज अक्षय कुमार।
2: नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन।
3: हाय एवरीबॉडी, मैं हूं शाहरुख खान।
4: हाय दिस इज सलमान खान। खान खान
0: मुर्गा तो बनाया पर खिलाया नहीं, हंसाया।
5: इसने मुझसे ये पूछा है कि कैसे होते हैं बच्चे।
6: अरे तो शैतान होते हैं बच्चे।
7: टीचर को गुस्सा।
0: डाउन डाउन की धुन पर ट्रेंड का सीक्वेंस बताया। ट्रैफिक का शोर कहां कहां थमा है सबको बताया। स्टूडियो में बैठ के आपको डेस्टिनेशन तक टाइम पे पहुंचाया।
8: यहां की रईसी देखनी है तो हम आपको लुसेल कटारा घुमाएंगे। यहां का स्वाद चखाना होगा तो आपको मजबूस संबोसा और शर्मा खिलाएंगे।
0: एजुकेशन हो या एंटरटेनमेंट, इतनी सारी एक्टिविटीज हुई कि कतर रहा एक्साइटेड। ऐसे ही मिर्ची ने रखा कतर को यूनाइटेड।
9: हर घड़ी हर सेकंड अब मिर्ची वन के साथ अपने बिजनेस को करें एक्सेलरेट, क्योंकि पूरे कतर में मिर्ची वन है सबका।

0: मतलब परंपरा टंडन की खूबसूरत सी आवाज़ एंड व्हाट अ लवली ट्रैक इट इज़, क्या खूबसूरत सा गाना यार। मतलब कुछ गाने जो होते हैं ना पूरी तरह से आपके दिल को छूते हैं, तो दो पत्ती फिल्म से ये गाना एक जरूर है फीचरिंग कृति सनन एंड साथ ही शाहिर शेख। Hey, welcome back. You're listening to Mithi Mirchi and this is RJ Anshu with you. Well, जिंदगी में मिठास के साथ स्पाइस का तड़का लगाते हुए एक बार फिर से आ चुकी हूँ। वैसे इतना बता दूँ, स्पाइसी की बात करें, मीठे की बात करें या लाइफ में ढेर सारे फ्लेवर्स को लाने की बात करें, तो ये सारा का सारा काम है ना आज से आपकी ज़िंदगी में ज़रूर होने वाला है। कब कहाँ कैसे भाई साहब, शाम को ठीक 6:30 बजे आप एक ही काम करना, बस पहुँच जाना सुख वाकिफ़ के ईस्टर्न स्क्वायर में, जहाँ पर अगर आपकी किसी से मुलाकात होगी तो भाई भारत से आए कोई तो आम चीज़ों की जो आपकी लाइफ में बड़े ही खास एक्सपीरियंसेस देते हैं। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट हम्बा एग्जीबिशन व्हिच इज ऑर्गेनाइज्ड इन एसोसिएशन विद द एम्बेसी ऑफ इंडिया कतर। एब्सोल्युटली आज से इंडियन मैंगो फेस्टिवल जो है हमारी लाइफ में दस्तक दे रहा है एंड ढेर सारी इंडियन मैंगोज की वैरायटीज तो आपको मिलेंगी ही, पके हुए आम से मस्त वाली डेलिकेसीज आप घर पे बनाएंगे, लेकिन कच्चे आम के आचार जो वहां पे मिलेंगे ना उसे देखना, टेस्ट करना, लेना बिल्कुल ना भूलना। एंड वाइस एग्जीबिशन की सबसे खास बात क्या है पता है, ना ही सिर्फ आपको मैंगोज मिलते हैं लेकिन इसके अलावा मैंगो से बनी हुई इतनी सारी वैरायटीज है ना कि अल्टीमेटली आपकी चाट पार्टी खासकर जो है ना इस इवेंट में हो ही जाती है। 27 जून तक इंडियन मैंगोज का बहार पूरी तरह से हमारी लाइफ में बना रहेगा। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, जाइए जी अच्छे खासे आम जो है खरीद के लाइए, दिल करे कि एक आध अच्छी खासी आम की पेटी जो है किसी को गिफ्ट करें, तो मैं अपना पता ठिकाना आपको जल्द बताऊंगा। कनेक्ट करेंगे इंस्टाग्राम में मिर्ची वन कतर या तो फिर मिर्ची अंशु, व्हाट्सएप 5000 1896। मीनवाइल मिर्ची में आ गए तो जंगल में आपका स्वागत कराए ले, एंजॉय। बंदी का नाम अंशु
1: मिर्ची, फ्रेश माल,
2: फुल ऑन मस्ती, मैडनेस और जंगल के एडवेंचर के वाइब्स के साथ सुनो वेलकम टू द जंगल टाइटल ट्रैक।

0: इस गाने को गाया है शान, प्रिया पाटीदार और विक्रम मॉन्ट्रोज ने। म्यूजिक दिया है विक्रम मॉन्ट्रोज और साजिद वाजिद ने, और लिरिक्स लिखे हैं मेघा बाली और शब्बीर अहमद ने। वेलकम टू द जंगल मूवी से सुनिए वेलकम टू द जंगल टाइटल ट्रैक ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ। 89.6, 89.6,
1: it's hot.

0: Hollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: अरमान मलिक, आप गाना अच्छा गाते हैं, आप गाना अच्छा बनाते भी हैं, उसके अलावा क्या क्या अच्छा बनाते हैं?
3: मैं ब्रेकफास्ट बहुत अच्छा बनाता हूँ, स्क्रैम्बल्ड एग्स, स्टर फ्राई मशरूम और स्पिनच, मेरा ब्रेकफास्ट कभी खाना।
2: ये कहना बहुत आसान है अरमान मलिक कि कभी मेरा ब्रेकफास्ट खाना, अरे तो फिर हमें भी बुलाना। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डर, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डर,
1: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

Well, Josh Bar and Parampara Tannan ki ye khubsurat si awaaz, and what a lovely track it is. I am in absolute love with a song from the film Baghi 4. Matlab kuch aur pasand ho ya na ho, lekin haan, is film se ye gaana jo hai, ye mujhe behad pasand hai. Mirchi Anshu. Hey you, welcome back. You are listening to Meethi Mirchi and this is RJ Anshu with you. वह जिंदगी में मिठास के साथ स्पाइस का तड़का लगाते हुए एक बार फिर से आ चुकी हूँ, एंड आज एक बार फिर से कोई तो ऐसी कहानी आपके बीच पेश करने वाली हूँ जो शायद सक्सेस के मायने को हमारी ज़िंदगी में बदल कर ही रखते। साल 2008, एक आदमी अपनी ऑफिस चेयर पर बैठा था, बैंक ऑलमोस्ट खाली है, उसकी कंपनी के 3 रॉकेट्स लगातार क्रैश हो चुके हैं, दूसरी कंपनी बैंकरप्सी के एज पर खड़ी है, मीडिया उसे इरेस्पॉन्सिबल कह रही है, एक्सपर्ट्स कह रहे हैं इट्स ओवर, और उस आदमी के पास शायद एक ही चॉइस बची कि या तो वो सपना छोड़ दे या फिर एक बार और कोशिश करे, और उस आदमी का नाम था एलन मस्क। यार आज ना हम उन्हें टेस्ला स्पेसएक्स के फाउंडर के रूप में जानते हैं, लेकिन उनकी स्टोरी प्राइवेट जेट्स और बिलियन डॉलर वैल्यूएशन से शुरू नहीं होती। एक छोटा सा लड़का साउथ अफ्रीका में जो बुक्स में खो जाया करता था, इतना पढ़ता था कि कभी कभी पूरी दुनिया से डिस्कनेक्टेड लगता था, लोगों को लगता था कि भाई ये अलग है, लेकिन शायद वो दुनिया को अलग नज़रिए से देख रहा था। जब लोग जॉब्स के बारे में सोच रहे थे ना, एलन फ्यूचर के बारे में सोच रहे थे, उन्होंने खुद से एक सवाल पूछा that what are the problems that can change humanity, aur phir unhone unhi problems ko life ka mission bana liya. Electric cars, impossible. Reusable rockets, impossible. Human on Mars, impossible. Lekin Elon Musk ki dictionary mein impossible ek challenge tha, confusion nahi. Aur phir aaya wo saal 2008, 3 rocket failures, Tesla almost bankrupt, पर्सनल स्ट्रगल्स अलग। सोचिए अगर उस वक्त उन्होंने हार मान ली होती तो शायद आज टेस्ला ना होती, शायद स्पेसएक्स नहीं होता। लेकिन जब दुनिया उनकी फेलियर्स देख रही थी ना, वो अपना 4th लॉन्च प्रिपेयर कर रहे थे, और फिर द 4th रॉकेट फ्ल्यू, नासा का कॉन्ट्रैक्ट आया, टेस्ला बच गई, और एक इंसान जिसे लगा कि भाई ड्रीम्स जो हैं ये रेकलेस हैं, धीरे धीरे फ्यूचर का आर्किटेक्ट बन गया। तो एलन मस्क की स्टोरी सिर्फ रॉकेट्स और कार्स की स्टोरी नहीं है, बस ये एक रिमाइंडर है कि कभी कभी लाइफ आपको उस पॉइंट पर ले जाती है जहां सब कुछ खत्म होता हुआ लगता है, और वहीं पर डिस्कवर होता है कि आपके अंदर कितनी हिम्मत बाकी है। वो कहते हैं ना, अगर तुम्हें खुद पे यकीन है, तुम्हें अपनी काबिलियत पर भरोसा है, तो दुनिया की ऐसी कोई मंजिल नहीं जो तुम्हें रास्ता ना दे, और वो कोई मुकाम नहीं जो तुम हासिल ना कर पाओ। बात अच्छी लगी, कहानी अच्छी लगी तो एक थैंक यू मैसेज भेजना, इंतजार रहेगा। 5000018965000018965 I'm eagerly waiting for your messages on Instagram. Mirchi One Kataria Mirchi Anshu. Meanwhile, yo Hani Singh ki awaz mein zara ye gana suna jaye. Enjoy. Bandi ka naam Anshu.

0: मिर्ची हेल्पलाइन।
1: जी बिल्कुल, मिर्ची हेल्पलाइन, बता बेटा सवाल क्या है?
0: हम लोग ऑफ रोडिंग पे हिमाचल आए हैं और कार का टायर फ्लैट हो गया है, क्या करें?
1: अबे लल्लू, ये तो अच्छी बात है ना, टायर फ्लैट हो गया है, फ्लैट तो रेंट पे चढ़ा ना, टूरिस्ट प्लेस पे रेंट भी तो कितना अच्छा मिलेगा।
2: ऐसे ही लाइफ के टेढ़े सवालों का लॉजिकलेस जवाब चाहिए तो भेजो आपके क्वेश्चंस मिर्ची हेल्पलाइन पर व्हाट्सएप ऑन 8422983983। इट्स हॉट।

Well, Benny Dahl ki khubsurat si awaaz, and what a lovely power pack track it is from the film Two States. Ye to maine aapko suna diya, lekin kisi state ki khas khabar aap tak pahunchane wali hu, zara gaur se suniyega. Mirchi Anshu. Hey, welcome back. You're listening to Meethi Mirchi, and this is Ajay Anshu with you. यार क्या आपने कभी सोचा है कि जब भी कोई टूरिस्ट कतर आता है तो वो सिर्फ प्लेसेस या बिल्डिंग्स याद नहीं रखता, वो याद रखता है एक्सपीरियंसेस. एक होटल का वार्म वेलकम, एक रेस्टोरेंट का अनफॉरगेटेबल मील, एक इवेंट का वाव फैक्टर, या तो फिर एक ऐसा ब्लॉग जिसने उसे कतर एक्सप्लोर करने में काफी इंस्पायर किया. और इसी एक्सलेंस को सेलिब्रेट करता है कतर टूरिज्म अवार्ड्स. एंड सबसे खास बात, इसके एप्लीकेशन जो है फॉर द ईयर 2026 ये अब ऑफिशियली ओपन हो चुके हैं. तो बस स्टेट ऑफ कतर से जुड़ी हुई खास बात मैं आप तक पहुंचा दूं. तो अगर आपको लगता है कि आप टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी, इवेंट्स, अट्रैक्शंस, रेस्टोरेंट्स, सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव्स या डिजिटल कंटेंट क्रिएशन से जुड़े हैं तो ये आपका मोमेंट है कि अब आप शाइन कर सके. एनएसएल अवार्ड प्रोग्राम जो है ये और भी ज्यादा बड़ा हो चुका है विद एक्साइटिंग एडिशंस लाइक द आउटस्टैंडिंग कतर व्लॉग ऑफ द ईयर अवार्ड. एंड इसके साथ ही द डिजिटल फुटप्रिंट कैटेगरी. एंड दिस इज गोइंग टू बी रिकॉग्नाइजिंग द क्रिएटर्स एंड ब्रांड्स हु आर शोकेसिंग कतर टू द वर्ल्ड थ्रू द पावर ऑफ कॉन्टेंट एंड storytelling. So what are you waiting for? Bhai sahab, is baar bahut kuch khas aur special attractive hone wala hai. To chahe aap events industry se hain, aap influencer hain, sustainable tourism initiatives ko support kar rahe hain ya to fir community leader hain, fatafat se aapko jana hai katartourism.com par. Sari ki sari categories wahan par listed hain. Jo bhi aapko relevant lage, application jo hai submit kar dijiye. Submission ki last date hai 16th of September. And jab aapke acche kaam ko wo deserved recognition milengi, to bhai sabse zoron ki taali jo hai na hum bajayenge. बदले में वो अच्छी वाली मिठाई जो ना आप मेरे घर में पहुंचा देना. वैसे चलिए आपसे एक बात पूछती हूँ. जब आप कतर पहली बार आए तो आपने सबसे पहले कतर की कौन सी जगह एक्सप्लोर की थी? अपना घर मत कहना, उसके अलावा मैं टूरिस्ट स्पॉट की बात कर रही हूँ. अगर मैं अपनी बात करूँ तो सबसे पहली जगह जो मैंने कतर में एक्सप्लोर की, दैट वॉज बेलाजियो मॉल. How about you? 5000 1896. 5000 1896. I'm eagerly waiting for your messages. Instagram Mirchi One, Qatar ya Mirchi Anshu. Meanwhile, Basha ki awaaz Arijit Singh ka saath, and to my soulmate, the next track is for you. Enjoy. Bandiga naam Anshu. Din ko-

0: क्या वो मोहब्बत जिसका हिसाब लग जाए, बोले वो तो लगे के रबाब बच जाए, लड़ मरेंगे लोग आग लग जाए, चेहरे से तेरे जो नकाब हट जाए।
1: हो सुबह

फराज की किताब पढ़ती है, वो तितलियां साथ रखती है, मेरी दुनिया आबाद लगती है जब कंधे पे मेरे वो हाथ रखती है। इस प्यार को खोने नहीं दूंगा, तुझे खुद से जुदा मैं कभी होने नहीं दूंगा। खुशी के आंसू और बात है, लेकिन तुझको मैं वैसे कभी रोने नहीं दूंगा।

0: Perfect Milchi.
1: Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Burka, burka. La virtua la burka. Milchi burka.
2: Hello. Hello.
3: Hello, Mr. Anil.
2: हाँ जी
3: मिस्टर अनिल, तीनों आ गए हैं।
2: तीनों आ गए
3: सर, मैं ये चाइल्ड अडॉप्शन सेंटर से बोल रहा हूँ। आपने रिक्वेस्ट भेजी थी ना बच्चा गोद लेने की, अडॉप्ट करने की, तो सर तीन है हमारे पास, आप आके देख लें, इसमें से चूज कर लें, फिर आपकी सारी वो फॉर्मेलिटी पूरी करके कर देते हैं।
2: कौन बोल रहे हैं भाई साहब?
3: मैं चाइल्ड अडॉप्शन सेंटर से राकेश बोल रहा हूँ सर।
2: हाँ जी फिर?
3: एक सेकंड, इन बच्चों ने तो दिमाग, एक सेकंड रुको बच्चा, एक सेकंड, इसने पॉटी कर दी है शायद, एक सेकंड रुकिए। हाँ सर एक सेकंड होल्ड करिए, इसने पॉटी कर दी शायद। हाँ सर, ये मैं चाइल्ड अडॉप्शन सेंटर से बोल रहा हूँ, आपने रिक्वेस्ट दी थी ना बच्चा अडॉप्ट करने की, तो आप आके देख लीजिए इनमें से कौन सा बच्चा पसंद है।
2: नहीं भैया, आपको गलत फहमी हो रही है, कोई आप गलत मिला है।
3: गलत फहमी की बात नहीं है, गलत फैमिली आपकी है, बच्चा है नहीं तो गोद ले लो, फैमिली सही हो जाएगी।
2: अरे मैं क्यों लूंगा यार बच्चा गोद, मेरे पास पहले से मेरा अपना बच्चा है, मैं क्यों गोद लूंगा भाई।
3: तो अनिल जी आपको ये पहले सोचना चाहिए था यार, जब आपने ये एप्लीकेशन भर गया यहाँ पे आके।
2: कौन बोल रहा है भाई?
3: आप कमाल कर रहे हैं, भड़क रहे हैं, तीन बच्चे मैं लेके आया हूँ यहाँ पे, रो रहे हैं।
2: क्या तरीका है,
3: क्या तरीका
2: कर रहे हैं आपने? यार मैंने कोई एप्लीकेशन नहीं दी, आप क्या बोल रहे हो?
3: अनिल बंसल आप ही हैं?
2: अनिल बंसल नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैंने किसी को कोई एप्लीकेशन नहीं दी हुई है।
3: सर कमाल कर रहे हैं आप, बार बार मुझ पे थोप रहे हैं, अब ये तीन बच्चे कौन लेगा यार?
2: आप पहले कंफर्म तो करो, कम से कम
3: कंफर्म करके ही बोल रहे हैं यार। आप एक बच्चा, तीन नहीं तो एक बच्चा तो गोद ले लो यार,
2: बात करो, एक तरीका है बात करने का
3: यार, तरीका आप। ओ बच्चा चुप हो जाओ, वो गुस्सा आ गया उनको। यार अनिल जी कमाल कर दिया आपने,
2: मैं काम कर रहा हूँ बैठा हुआ, आपके आपकी बकवास सुन रहा हूँ बैठा।
3: सर मैं आपको बता रहा हूँ, जो आपने सारी बातें कही थी, एक बच्चा इसमें एक साल का, एक बच्चा सात महीने, साढ़े सात महीने का, एक बच्चा एक साल तीन महीने का है, आपको जो पसंद आता है
2: कितने भी महीने का हो तुम ले लो फिर अपने पास, तुम अडॉप्ट कर लो, मुझे नहीं चाहिए।
3: अरे मुझे तो खुद किसी ने गोद ले रखा है यार, मैं कैसे ले लूँ? आप मुझे क्यों सिखा रहे हैं यार, आप अपनी बात करो यार।
2: तुमने सर अगली बार फोन कर दिया ना, तेरे को ही गोद दिलवाऊंगा बच्चा, समझ गया?
4: नहीं सर, मुझे तो वैसे ही रेडियो मिर्ची ने गोद ले रखा है। अनिल जी मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, और आपका प्यारा सा जो बच्चा है रोहन, ये उसी का बवाल है सारा, आपका मुर्गा बना दिया।
2: यार कमाल कर दिया भाई, कुकड़ों को भाई।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
6: एक सीरियल किलर, एक डिस्ग्रेस्ड कॉप, और एक ऐसी डार्क मिस्ट्री जो आपको हिला देगी।
7: लव इज माय बिगेस्ट फियर, बिकॉज़ मी लव इज डेड।
6: Witness Karishma Kapoor in her most ruthless avatar yet.
8: गलती भी हमारा और जिम्मेदारी भी हमारी है।
6: Catch Officer Brown.
9: Officer Brown
6: tearing through the city of joy's darkest secrets. Brown streaming on Hindi Zee5 from 12th June.

0: Well, Sachin Jigar ki composition, Raghav Chaitanya ki awaz, Varun Jain ka hi tadka, and what a lovely track it is from the film Teri Baaton Mein Aisa Uljha Jiya. Lekin, aap kis baat mein ulajh ke rehte hain, mujhe ek baat batao. Hey, welcome back. You're listening to Meethi Mirchi and this is Aaj Anshu with you. चलिए आपकी जिंदगी में आज कोई तो टिप है, हम पेश कर ही दें. अरे मुफ्त में दे रही हूँ, सच कह रही हूँ. इतना सस्ता टिप है ना कि आपने इससे सस्ता कुछ देखा ही नहीं होगा, लेकिन हाँ बड़ा काम का है. एंड आपकी लाइफ में असर जो छोड़ता है ना, वो काफ़ी महंगा है. कुछ इस तरह से कि ढेर सारे खर्चों को बस बचा ही देता है. एंड आई एम टॉकिंग अबाउट चूइंग आवर फूड प्रॉपरली. बिल्कुल सच में. एक बात बताओ, हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो ब्रेकफास्ट फ़ोन देखते हुए करते हैं, लंच जो है मोबाइल स्क्रीन के सामने, एक बार फिर से या तो फिर लैपटॉप के सामने करते हैं, टीवी जो है भैया वो तो डिनर की कंपेनियन बन चुकी है, उसके बिना खाना जो है हमारा निवाला जो है हलक से नीचे उतरे तो कैसे उतरे, है ना. मतलब खाना जो है पेट में जाता ज़रूर है, लेकिन ध्यान जो है दुनियादारी की 10 चीज़ों में रहता है. एंड उसके बाद हम कंप्लेन करते हैं कि भाई साहब थकान हो रही है, डाइजेशन नहीं हो रहा है ना, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है दिमाग में भी और पेट में भी, ब्लोटिंग हो रही है एंड वॉट नॉट. देखिए सबसे खास बात यह है कि अगर डाइजेशन की हम सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस की बात करें तो वो फर्स्ट स्टेप शुरू होता है हमारे माउथ से ही. जितनी अच्छी तरह से आप अपने खाने को चबाएंगे ना, वो कहते हैं ना 20-30 टाइम्स एवरी बाइट विच इज मैंडेट, उतना कम काम जो है आपके स्टमक को करना पड़ेगा. ये नन्ही सी जान है, नाजुक सी जान है, क्यों उसको इतनी तकलीफ देते हो. अच्छे खासे दांत दिए ना भगवान ने, सब गन्ने छिलने के लिए नहीं दिए, बातें करने के लिए नहीं दिए, कुछ अच्छा काम करने के लिए भी किया है. अच्छा आज ही ना एक्सपेरिमेंट करते हैं, प्लीज एटलीस्ट ट्राई करना. अभी जितने भी मील्स आपके दिन भर के आज बचे हैं ना, आप हर किसी को कंज्यूम करते हुए बिल्कुल भी फ़ोन नहीं देखेंगे, टेलीविजन नहीं देखेंगे, लैपटॉप स्क्रीन नहीं, किसी भी स्क्रीन के सामने नहीं, ध्यान जो है सिर्फ एक जगह होगा, खाने में होगा. यार फील करो, मतलब इंसान जो है कमाता है किस लिए, अच्छा खाना खा सके, अपने लोगों को खुश रख सके. तो खाना जब लाइफ में इतना मैंडेट है तो उसे इन्जॉय तो करो यार, महसूस तो करो क्या खा रहे हो. एंड ऐसा करने के बाद मुझे बताना कि एक्सपीरियंस रहा तो रहा कैसा, जिंदगी जो है ना काफ़ी हद तक आराम हो जाएगी. भाई डाइजेशन सही होता है तो सब कुछ सही होता है, पक्की बात है जी. चलिए इस स्टेप को फॉलो करके देखिए, अच्छी लगी तो मुझे थैंक यू मैसेज भेजिए 5000-1896. लेट्स गेट कनेक्टेड देयर. मीनवाइल अगला ब्रांड न्यू ट्रैक आपके लिए एंजॉय. कुछ देर में एक खूबसूरत सी शायरी सुनाने वाली हूँ, कनेक्ट करेंगे आप. बंदी का नाम अंशु.
1: मिर्ची फ्रेश माल,
2: हाई वोल्टेज बीट्स और अनस्टॉपेबल ग्रूव के साथ सुनो माशुका.

0: इस गाने को गाया है महमूद, अमिताभ भट्टाचार्य, राघव चैतन्य और रुआ के ने। म्यूजिक दिया है प्रीतम ने और लिरिक्स लिखे हैं अमिताभ भट्टाचार्य ने। फिल्म कॉकटेल 2 से सुनते रहिए माशुका, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना, 1 rupee ट्रायल पैक नाउ।
1: मिर्ची स्टोरीज, स्टोरीज
2: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
3: यार तुझे पता है, राजस्थान के एक गांव में रेलवे स्टेशन पर कोई एम्प्लॉय है ही नहीं, वहाँ के गांव के लोग ही टिकट बांटते हैं।
4: फिर तो यहाँ वो चाय चाय ये आवाज नहीं बल्कि ये आती होगी, टिकट टिकट। और यार COD तो यहाँ भी होता होगा ना, कैश ऑन डेस्टिनेशन।
5: मिर्ची इट्स हॉट।
6: कुछ कुछ होता है अंजलि, तुम नहीं समझोगे।
7: जब चलेंगे गाने तो बहुत कुछ होगा,
8: बहुत कुछ होगा।
9: कतर का नंबर 1 रेडियो स्टेशन
10: 89.6
11: FM मिर्ची 1 इट्स हॉट।

0: शायद इसी का नाम तो जिंदगी है।
1: मिर्ची अंशु
0: हे वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू मीठी मिर्ची एंड दिस इज आरजे अंशु विद यू। यार कभी कभी ना जिंदगी में ऐसा वक्त आता है जब सब कुछ ठीक होते हुए भी ठीक नहीं लगता। रास्ते नजर आते हैं लेकिन मंजिल दिखाई नहीं देती। दिल दुआ करता है लेकिन जवाब मिलने में वक्त लगता है। लेकिन शायद इसी का नाम तो जिंदगी है ना। आज अगर वक्त मुश्किल है तो याद रखिए, वक्त की सबसे खूबसूरत बात बस यही है कि वो कभी एक जैसा नहीं रहता। ना खुशियां हमेशा रहती हैं ना परेशानियां। जब अंधेरा गहरा हो तो हिम्मत मत हारना, जब रास्ते बंद लगने लगे तो भरोसा मत छोड़ना, और जब सब कुछ आपके हिसाब से ना हो रहा हो ना, तब उस रब पर यकीन रखना जो हमेशा आपके लिए आपसे बेहतर सोचता है। हो सकता है कि आज आपका इम्तिहान चल रहा, लेकिन कहते हैं ना हर इम्तिहान के बाद एक नया सफा खुलता है, और जब वक्त बदलता है ना तो सिर्फ हालात नहीं बदलते, इंसान पहले से ज्यादा मजबूत होता है। और इसी बात पे कुछ तो पंक्तियां हैं जो मेरे पापा ने लिखी जो मैं आपको सुनाना चाहूंगी। हौसलों को टूटने मत देना, रास्तों को छूटने मत देना, रब पर इतना भरोसा रखना कि अंधेरों को रोटने मत देना। वक्त जरूर बदलेगा एक दिन मुस्कुराकर, बस अपनी हिम्मत को कभी खुद से दूर होने मत देना। तो चलिए अगर बात अच्छी लगी तो मुझे एक थैंक यू मैसेज हो जाए, क्या कहती पब्लिक? 5000 1896 लेट्स गेट कनेक्टेड देयर। मीनवाइल स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, बंदी का नाम अंशु।

0: Hollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: गुलशन ग्रोवर, ऐसे कौन से एक्टर के साथ आपने काम किया है जिनकी गाली ना गाली नहीं लगती?
3: मेरा दोस्त है संजय दत्त, मेरा भाई है। एक टाइम था बगैर गाली के सेंटेंस ही नहीं होता था, तो सीनियर एक्टर्स ने कहा कि यार ये बगैर गाली के बोलता नहीं है, पर संजय दत्त की गाली इतनी क्यूट लगती थी, इनोसेंट सा, लंबे से बाल वाला।
2: This is an audio impersonation, but I have to say, Gulshan Grover, it is 100-on-100 impersonation of Sanjay Dutt. Aap sun rahe hain Mirchi, it's hot.
0: Bollywood Boldal. Bollywood, Bollywood, Bollywood Boldal.
1: Only on Mirchi, it's hot.

0: यार सच कह रही हूँ, गर्मी के दिनों में ना ये दोनों ही चीजें काफी मुश्किल है।
1: मिर्ची अंशु
0: पहली बाहर निकलना और दूसरी पार्किंग ढूंढना। वेलकम बैक, यू लिसनिंग टू मीठी मिर्ची एंड दिस इज आरजे अंशु विद यू। वेल, इस वक्त लगता है कि ओल्ड दोहा पोर्ट ने दोनों प्रॉब्लम्स का सलूशन हमारे लिए निकाल ही दिया है। वेल, इस समर ओल्ड दोहा पोर्ट लेकर आए हैं एंटरटेनिंग एक्टिविटीज की पूरी सीरीज, जो काफी सारे न्यू एक्सपीरियंसेस देने के लिए हमें पूरी तरह से तैयार है। एंड ये चलेंगे 15th ऑफ अक्टूबर तक। तो अगर आपको लगता है इवनिंग में आउटिंग या फैमिली टाइम या दोस्तों के साथ चिल करने का आपको प्लान बनाना है, तो बिल्कुल ओल्ड दोहा पोर्ट आप 101% पहुंच ही सकते हैं। अगर अच्छी कंपनी चाहिए तो मिर्ची की पलटन जो है पूरी तरह से आप तक पहुंचने के लिए तैयार। खाने पीने का इंतजाम जो है वो बस आप कर लें। लेकिन अगर पार्किंग की बात करें तो मीना डिस्ट्रिक्ट रोड एक्सेस अब डेली दोपहर 3 बजे से लेकर रात 10 बजे तक व्हीकल्स के लिए ओपन रहेगा। मतलब अब पार्किंग का ये जो टेंशन है ये जिंदगी में जरा कम हुआ। एंड सबसे खास बात ये है, अगर मैं वॉले पार्किंग की बात करूं तो अब रेगुलर रेट्स की आधी प्राइस में आप पार्क कर पाएंगे। इनफैक्ट कुछ रिटेल स्टोर्स, रेस्टोरेंट्स एंड कैफेज तो ऐसे हैं जहां पे अगर आप मिनिमम स्पेंड करते हैं तो कॉम्प्लीमेंट्री वॉले पार्किंग आपको मिल ही जाएगी। बढ़िया जी, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? सारे के सारे न्यू एक्सपीरियंसेस ओल्ड दोहा पोर्ट में मिलेंगे। जाइए इस गर्मी के दिनों में, वो ठंडी का मजा जो है उठाई लीजिए। कलेजे की ठंड, उसी की बात करें। एंजॉय बंदी का नाम।

0: शेयर खुशाल का साथ एंड दिस हैपेंस टू बी वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट ट्रैक्स फ्रॉम द फिल्म कुर्बान। ये तो मैंने आपको सुना दिया, लेकिन किसी की कुर्बानी कहीं ना कहीं उसे जरूर पहुंचाती है।
1: मिर्ची अंशु
0: Hey, welcome back. You're listening to Meethi Mirchi and this is RJ Anshu with you. Virat Kohli. आज की डेट पे जब भी हम ये नाम लेते हैं ना, तो हमें सेंचुरीज, रिकॉर्ड्स, ट्रॉफीज एंड पैक्ड स्टेडियम्स याद आते हैं। लेकिन यार, कहानी जो है ना इस बंदे की, यहाँ से शुरू नहीं होती। कहानी शुरू होती है दिल्ली के एक लड़के से। एक ऐसा लड़का जो क्रिकेट को सिर्फ खेलना नहीं जानता था, क्रिकेट को जीना जानता था। पिक्चर दिस, सुबह सुबह एकेडमी का ग्राउंड, बाकी बच्चे अपने एज के प्लेयर्स के साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन विराट, उन्हें मजा तब आता था जब सामने उनसे बड़े और बेहतर प्लेयर्स होते, क्योंकि उनका मानना बस यही था कि अगर मुझे आगे बढ़ना है तो मुझे उनके साथ खेलना होगा जो मुझसे आगे। बाकी बच्चे अगर 9 बजे आते तो विराट जो है 8 बजे पहुंचते, ताकि 1 घंटा इत्मीनान से सुकून में जरा ज्यादा प्रैक्टिस कर सके। बचपन में उनके पापा स्कूटर पर उन्हें क्रिकेट एकेडमी ले जाया करते थे। कोई लग्जरी नहीं, कोई शॉर्टकट्स नहीं, सिर्फ एक बात, एक सपना और बस एक ही पूरी की पूरी मेहनत और उम्मीद। और फिर आती है एक सबसे खास बात, जब विराट टीवी पर सचिन तेंदुलकर या दूसरे बड़े प्लेयर्स को देखा करते थे ना, तो वो सिर्फ मैच को एंजॉय नहीं करते थे, वो उसे ऑब्जर्व करते थे। शॉट कैसे खेला, फुटवर्क कैसा रहा, प्रेशर में किस तरह का रिएक्शन दिया, एंड फिर अगले दिन ग्राउंड पर जाकर उन्हीं बातों को ट्राई करने की पूरी कोशिश करते थे। मतलब वो सिर्फ क्रिकेट देख नहीं रहे होते, वो वहां से सारी अपनी जर्नी की शुरुआत कर रहे होते हैं, इंप्लीमेंट कर रहे होते। 9 साल की एज में एकेडमी ज्वाइन की, स्कूल प्रैक्टिस और मैचेस के बीच अपनी पूरी दुनिया क्रिकेट को बना दिया। उनके कोचेस और टीचर्स को बहुत जल्द समझ में आ गया था कि ये लड़का अलग है, टैलेंट तो है लेकिन उससे भी ज़्यादा इसके अंदर कुछ करने की भूख है। और जिंदगी ने देखते देखते सबसे बड़ा इम्तिहान इस बच्चे का ले ही लिया। 2006 में रणजी ट्रॉफी मैच के दौरान उनके पापा दुनिया में ना रहे। किसी भी बेटे के लिए शायद ये पल पूरी तरह से तोड़ देने वाला होता है, लेकिन अगले दिन विराट वापस ग्राउंड पे गए, बैटिंग की, रन्स बनाए एंड फिर अपने पापा को अलविदा कहने गए। उस दिन सिर्फ एक इनिंग्स नहीं खेली गई, उस दिन एक चैंपियन का जन्म हुआ। और शायद इसीलिए विराट कोहली की कहानी रिकॉर्ड्स की स्टोरी नहीं है, इट इज अ स्टोरी ऑफ डिसिप्लिन, इट इज अ स्टोरी ऑफ लर्निंग, इट इज अ स्टोरी ऑफ शोइंग अप एवरी सिंगल डे इवन व्हेन लाइफ गिव्स यू अ रीजन नॉट टू। बिकॉज विराट, शायद तुमने हमें यही सिखाया है कि टैलेंट आपको शुरुआत तो दे सकता है, लेकिन ग्रेटनेस सिर्फ डेडिकेशन से आती है। तो एक दिन वही लड़का जो स्कूटर पर एकेडमी जाया करता था, जब अपने सपने को दिल में सजाए हुए उन्हें पूरा करता है ना, तो वो पूरे देश की उम्मीद बन जाता है। क्या आपने इस कहानी से कुछ सीखा, या क्या ये कहानी आपको आपके सपने के करीब लेकर गई या अच्छी लगी, तो एक थैंक यू मैसेज जरूर भेजना 5000 1896। लेट्स गेट कनेक्टेड देयर इंस्टाग्राम मिर्ची1 कतरिया मिर्ची अंशु। मीनवाइल एंजॉय बंदी का नाम अंशु।

0: Milci.
1: Iskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. La vidva la burga. Milci, burga.
2: Alo? Alo?
3: Ama bayit.
2: Bayit
3: kum
2: bolla
3: hai? Ama mujhe ab pata chala tumne.
2: Alo, bayit kum bolla hai? बोल रहा है भाई।
3: अब मुझे आप बताया उसने कि तू भी यार तू एक नंबर का आइटम है। मेरी बात
2: नहीं आ रही भाई।
3: मुझे आप बताया असल मैं वहां गया हुआ था। अबे तुझे मुझसे कह रहा
2: अबे अरे भाई ये तो बता दे कौन बोल रहा है क्या बात है।
3: तूने नताशा को प्रपोज कर दिया भाई सबके सामने।
2: अबे भाई कौन लताशा?
3: नताशा यार, नताशा को प्रपोज नहीं किया?
2: अबे भाई कौन लताशा? मैं तो लताशा को जानता भी नहीं।
3: तो तू पहले मुनी फाड़ सकता था?
2: भाई तूने बोलने का मौका ही कहाँ दिया भाई, तू तो हंसता ही रहा।
3: अबे तो तुझसे पहले नहीं बोला जा सकता था? मैं तो हंस रहा था, तू तो चुप था। बता देता मुझे, मैंने नताशा को नहीं छेड़ा, मैंने नताशा को प्रपोज नहीं किया। मैं हंसे जा रहा हूँ, मैं हंसे जा रहा हूँ की तरह, और तू मजाक उड़ा रहा मेरी।
2: मैं कैसे बोल देता जब तू हंसे जा रहा? सुनने का मौका नहीं दिया, मैं हेलो हेलो करे जा रहा हूँ।
3: तू शुरू में कह देता कि मैं नहीं बोल रहा, मैंने नताशा को नहीं छेड़ा, रॉन्ग नंबर लग गया, ये बोलने में तेरा मुंह फट रहा था क्या? पांच साल में हंसी आती है वो भी बर्बाद कर दी। तू पहले नहीं बता सकता था मुझे कि मैं नहीं बोल रहा?
2: फोन तूने करा, तूने करा।
3: मैंने क्या फोन? मैंने क्या? तो तेरे हाथ में तो था, तेरे मुंह में जुबान नहीं थी। तू ये तू दिमाग खराब कर रहा है ऊपर से।
2: मैं तो पूछा वो तो तू बोल कैसे रहा भाई?
3: भाई मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ। मैंने ऐसी किसी का नंबर मिला दिया, आपका लग गया, मैं आपका मुर्गा बना रहा था, थोड़ी सी मजाक करी और वो अच्छी खासी।
2: तो भाई ये बात पहले बता देते यार, इतना तुमने अटवा दिया, टेंशन अलग दे दिया।
1: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: खैर सचको, आज की गर्मी देखने के बाद ना कुछ तो मुझे जरूर याद आया।
1: मिर्ची अंशु, मिर्ची अंशु, मिर्ची अंशु, मिर्ची अंशु।
0: Hey, welcome back. You are listening to Meethi Mirchi and this is Aaj Anshu with you. Well, जिंदगी में मिठास के साथ स्पाइस का तड़का लगाते हुए एक बार फिर से आ चुकी हूँ। यार, अगर अपने बचपन के दिनों को याद करने की कोशिश करूँ तो समर वेकेशन का मतलब सिर्फ टेम्परेचर नहीं होता था, याद है, ढेर सारे इमोशंस भी होते थे। उस जमाने में ना ही कोई फूड डिलीवरी ऐप था, ना ही कोई फैंसी डेजर्ट्स या, लेकिन हमें ना बेशुमार खुशी मिल जाती थी उस आइस के गोले में, याद आया, वो भी एक्स्ट्रा काला खट्टा सिरप के साथ। एक वो मटके वाली कुल्फी जो खत्म होने से पहले ही हाथ पर ना कहीं टपकने लगती थी और वो एक रुपए वाली ऑरेंज की आइसक्रीम, यार उस जमाने में ना वो किसी फाइव स्टार डेजर्ट से कम नहीं थी। एंड आप जो है इस बात पे जरूर अग्री करेंगे, अगर हाँ तो दो ताली। एंड वो शाम के वक्त कॉलोनी के फ्रेंड्स के साथ वो क्रिकेट, साइकिल राइड्स, घर वालों की आवाज, अंदर आ जाओ बहुत गर्मी है, लेकिन क्या बताएं, हमारे कलेजे को ठंडक तो बस उन एक्टिविटीज के जरिए मिलती थी। चलिए जी, आज कहीं ना कहीं नॉस्टैल्जिया में एक बार फिर से डाइव इन करने का दिल किया, लेकिन कतर को देखने की कोशिश करें तो यहाँ की गर्मी बस एक ही बात दिखाती है और बताती है कि भैया तुम घर में अंडे की भुर्जी बनाओ या ना बनाओ, लेकिन बाहर निकल के देखो मैं तुम्हारी भुर्जी जो है वो जरूर बनाऊंगा। आज का मैक्सिमम टेम्परेचर समटाइम अराउंड 46 to 47, मिनिमम इज गोइंग टू बी अराउंड 35। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें, खुद को फुली हाइड्रेटेड रखें, लेकिन जब भी बात हो कलेजन दिमाग की ठंडक की तो एक ही काम करना है, टक्के बने रहना है, सुनते रहना है कतर का नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन। It's hot. साथ एक बात बताना, अगर तुम्हारे बचपन की याद की मैं बात करूं तो गर्मी के दिनों में सबसे पहले तुम्हें कौन सी बात याद आती है? 5000 1896। Enjoy, बंदी का नाम अंशु।
2: Weather check brought to you by RSL Group of Company. अब पाओ कतर में डिलीवरी राइडर्स और ड्राइवर की जॉब। For bright future call now 3100 0813।

0: मिर्ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तुझे पता है राजस्थान के एक गांव में रेलवे स्टेशन पर कोई एम्प्लॉय है ही नहीं, वहां के गांव के लोग ही टिकट बांटते हैं।
3: फिर तो यहाँ वो चाय चाय ये आवाज नहीं बल्कि ये आती होगी टिकट टिकट। और यार सीओडी तो यहाँ भी होता होगा ना, कैश ऑन डेस्टिनेशन।
4: मिर्ची इट्स हॉट।
5: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है।
6: और हम जहाँ चल जाते हैं बॉलीवुड के गानों की लाइन वहीं से शुरू हो जाती है।
7: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
8: 89.6 FM मिर्ची वन।

0: कभी गुल्लक से पैसे निकालने की कोशिश की है?
1: मिर्ची अंशु
0: Hey, welcome back. You're listening to Meethi Mirchi and this is RJ Anshu with you. अगर बचपन के दिनों को याद करने की कोशिश करूँ तो जिंदगी का सबसे एक्साइटिंग पार्ट हुआ करता था हमारा वो गुल्लक, जिसमें हम एक एक रुपए किस तरह से बचा के रखा करते थे. एंड खासकर गर्मी के दिनों में ना इस गुल्लक की अहमियत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती थी. ये घर पे बुआ आती थी, ढेर सारे पैसे देकर जाती थी, इसीलिए तो अच्छी लगती थी चाहे मम्मी उनके बारे में कुछ भी बोलें. साथ ही जब हम मामा घर जाएं तो भैया वहाँ पे पैसे की ना बहार हमारी जिंदगी में आती थी, तो हम जो है गुल्लक के राजा बन जाते थे इन गर्मी के दिनों में. एंड बस कहीं ना कहीं इस गुल्लक को संभाल के रखने का मौका भी यही होता था, क्योंकि इर्द गिर्द बहुत सारे लोग थे जो उस मिट्टी के गुल्लक से भी कहीं ना कहीं पैसे निकालना बहुत अच्छी तरह से जानते थे. यार सच कहूँ, उन फैंसी प्लास्टिक या स्टील के गुल्लक की बराबरी आप मिट्टी के गुल्लक से कहाँ ही करेंगे. मिट्टी के गुल्लक में ना अपना अलग एक इमोशन हुआ करता था. एंड अगर आपने कभी अपनाया है तो जानते हैं मैं क्या कह रही हूँ. आज कहीं वो खोसा गया, अब तो गुल्लक सिर्फ सीरीज के नाम से मिलता है. Having said that, अगर आपको लगता है कि आपके बैंक अकाउंट वाले गुल्लक में आज अच्छे खासे पैसे हैं, तो क्यों ना फटाफट से ट्रांसफर करने की तैयारी शुरू कर ही दें. बस अगर आप ट्रांसफर करना चाहेंगे तो 1 रियाल के अगेंस्ट टाइपे मनी में आपको मिलेंगे इंडियन रुपीज 25.92, पाकिस्तानी रुपीज 76.69, बांग्लादेशी टका 33.78, लंकन रुपीज 91.63 और इसके साथ ही नेपाली रुपीज 41.37. तो बस घर भेजे पैसे, ढेर सारी खुशियां. लेकिन अभी फिलहाल जिंदगी में खुशियों को बरकरार रखने के लिए सुनते रहे कतर का नंबर 1 हिंदी रेडियो स्टेशन मिर्ची. इट्स हॉट, एंजॉय. बद्दी का नाम अंशु.

0: Bollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: श्रेया घोषाल, आपका गाया हुआ एक ऐसा गाना नहीं है जिसे सुनकर हमें मजा नहीं आता। एक्चुअल में आपको लाइफ में क्या क्या करने में मजा आता है?
3: मुझे जो चीजें करने में बहुत मजा आता है वो है म्यूजिक और अपने फैमिली, अपने बेटे के साथ टाइम स्पेंड करना और ढेर सारे वेकेशंस प्लान करना एंड टू ईट सम गुड फूड, स्पेंड सम टाइम इन द किचन कुकिंग सम गुड फूड। आई बिलीव इन सच काइंड ऑफ एक्सपीरियंसेस एज गिफ्ट्स मोर देन मटेरियलिस्टिक गिफ्ट।
2: श्रेया घोषाल, काश मैं आपकी तरह सोचती, बट नहीं, मुझे तो सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीजों में ही मजा आता है। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल,
1: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: हेल्पलाइन?
1: जी बिल्कुल, मिर्ची हेल्पलाइन, बता बेटा सवाल क्या है?
0: सर मेरे घर का एसी खराब हो गया है, कब से लैंडलॉर्ड के पीछे पड़ा हूँ, वो ठीक ही नहीं करवा रहा, क्या करूँ?
1: क्यों थक रहा है? अरे तो दूसरा लैंडलॉर्ड ढूंढ लेना।
2: ऐसे ही लाइफ के टेढ़े सवालों का लॉजिकलेस जवाब चाहिए, तो भेजो आपके क्वेश्चंस मिर्ची हेल्पलाइन पर व्हाट्सएप ऑन 8422983983।

0: एक बात बताओ, बचपन में क्या आपका भी ख्वाब था कि आप बड़े साइज वाली चॉकलेट्स खाओ?
1: सारा जमाना है सारा का दीवाना।
2: मिड डे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा, एंड नाउ यू ट्यून इन विद मी ऑन मिर्ची। आपको याद है एड्स में देयर यूज्ड टू बी चॉकलेट्स बिगर देन द यूजुअल, और मैं हमेशा चाहती थी कि यार इतना बड़ा चॉकलेट का जो स्लैब है ना, ये खाने को मिल जाए। पर जो एड्स के बड़े वाले चॉकलेट बार्स हुआ करते थे ना, वैसे दुकान पर कभी नहीं दिखते थे। लेकिन थैंक्स टू ग्लोबलाइजेशन, वी डू गेट टू सी बिग बिग चॉकलेट बार्स ऑन सिलेक्टिव स्टोर्स, जो आज भी जब देखती हूँ ना तो दिल बड़ा एक्साइटेड हो जाता है यार। वो अलग बात है कि यार बचपन में इस चीज को लेकर मैं इतनी ज्यादा एक्साइटेड थी और बहुत चाहती थी कि मैं इतनी बड़ी चॉकलेट स्लैब्स खाऊं, लेकिन अब बड़े होने के बाद मैं कभी नहीं खरीदती इतने बड़े चॉकलेट स्लैब्स। एंड द रीजन बिहाइंड दिस बचपन का ख्वाब स्टिल अधूरा होना इज कि अब जब ये बड़े साइज के चॉकलेट्स मिलने लगे हैं ना, तो कैलोरीज और शुगर इनटेक का ज्ञान भी तो भरपूर आ गया है मार्केट में। और बस ये बड़े वाले चॉकलेट बार्स की जो भूख है, ये आज भी अधूरी है। और आपसे बात करते करते मुझे रियलाइज हो रहा है यार कि इसे ऐसा अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि शाहरुख खान ने कहा है कि किसको पता कल हो ना हो। मैं क्यों वेट कर रही हूँ कि जब मैं एक सर्टन साइज पे पहुंच जाऊंगी तब मैं वो चॉकलेट बार खाऊंगी? आई थिंक आई शुड जस्ट डू इट। आप क्या बोलते हो, वेट नहीं करना चाहिए ना? बस तो फिर आज ही कुछ ऐसी एक्सक्लूसिव स्टोर पर जाकर ना इसको खरीदने की कोशिश करते हो। बाकी आप मुझे बताना जरूर, हाँ, डीएम करके ऑन माय इंस्टाग्राम हैंडल विच इज मिर्ची सारा, कि क्या आपको भी ऐसे शौक चढ़ा करते थे बचपन में कि यार ये बड़ा वाला चॉकलेट बार मैं भी खाऊं? बताना। अभी के लिए मिड डे मोहब्बत की गाड़ी को गियर में डाल रही हूँ, आपसे कहती हूँ यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi.
1: Escabana, pues cabana, sacabana. ¡Cabana! ¡Burga, burga! ¡La fiesta la burga!
0: ¡Mirchi, burga!
2: हेलो,
3: कुड आई स्पीक टू तानिया प्लीज?
2: स्पीकिंग।
3: ओके तानिया, मैं पीयूष बोल रहा हूँ मुंबई से। मुझे किसी ने आपका नंबर दिया था। तानिया मैं पहले ये जानना चाहता हूँ, पहले मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता दूँ। हम एक शो शुरू करने वाले हैं, नखरों के खिलाड़ी।
2: अच्छा।
3: ऐसा होता है कुछ लोगों में कि नखरे होते हैं। मुझे आपका किसी ने नंबर दिया और उन्होंने बताया कि ये कुछ बहादुरी के काम कर चुकी हैं, कुछ डेयरिंग काम आपने किए हैं, मुझे थोड़ा सा बताएंगे?
2: जैसे कि मेरे मोहल्ले में ही एक लड़का है, बहुत बदतमीजी करता था लड़कियों के साथ। तो उसको कोई सबक ही नहीं सिखा रहा था। तो तानिया ही थी पूरे लोकेलिटी में जिसने उसको एक चाटा लगाया। और अब वो उस मोहल्ले में नजर ही नहीं आता है बंदा।
3: अरे ग्रेट। तो अब मतलब कुल मिला के आपको डर तो नहीं लगता ऐसे कामों से?
2: नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं लगता।
3: ओके, आई होप कि आप सिलेक्ट हो जाए। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आपके लिए बहुत अच्छी बात है, ये एक मौका है कि आप हमारे इस शो नखरों के खिलाड़ी में आ सकती हैं।
2: आ सकती हूँ मैं उसमें?
3: बिल्कुल आ सकती हैं। दो एपिसोड जो हैं वो शूट हो चुके हैं, अगला दिल्ली का है, तो दिल्ली की कुछ लड़कियाँ आएंगी, तो आप मुंबई आ सकती हैं नेक्स्ट वीक।
2: बॉम्बे आने के लिए पहले घर में बात करनी पड़ेगी मुझे।
3: जैसे आप और शोज देखती हैं खतरों वाले, उसमें ये होता है कि सांप वांप खाते हैं या मुंह से निकालते हैं या जंप करते हैं या हमारा थोड़ा सा डिफरेंट है।
2: आपका क्या है?
3: उसमें ये होगा कि आप जैसे खड़ी हुई हैं, कैमरा आपके सामने है, एक्शन बोलने के बाद एक बहुत बड़ा चाकू आपकी गर्दन पे रखा जाएगा।
2: ठीक है।
3: और एक मशीन आपकी गर्दन के पीछे से आपकी गर्दन को पुश करेगी। तो हम मशीन में जितनी पावर है उसको बढ़ा के आपकी गर्दन के आर पार चाकू कर देंगे, और जो ब्लीडिंग ब्लीडिंग होगी वो बाल्टी इधर उधर लगा के हम खून सारा जमा कर लेंगे। मतलब अगर आपकी गर्दन कट गई है और ब्लड ग्रुप एक है तो आप नेक्स्ट राउंड में जाने लायक आप जाएंगी।
2: नेक्स्ट राउंड के लिए बचूंगी तब जाऊंगी ना, जब सारा ब्लड ही निकल जाएगा तो मैं करूंगी क्या सेकंड राउंड में?
3: सिर तो आपका है, वही तो मैं काटने की बात कर रहा हूँ, और आप ही कह रही है मैं बहादुरी के काम कर लेती हूँ, फिर आप ये नखरे दिखा रही है।
2: नहीं, मना क्या कर रही है, तो पागलों वाला गेम लग रहा है।
3: हेलो,
2: समझ नहीं आ रही, जब मैंने बोल दिया है मैं नहीं करना चाहती हूँ ये शो।
3: तानिया, मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ, और आपका जो दोस्त है अमित, उसने मुझे नंबर दिया था, उसने कहा था इसका मुर्गा बना, तो मैंने बना दिया यार, अब इसमें मेरी क्या गलती है?
0: मिर्ची मुर्गा नवीद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: Yeah, 90s के दौर में एक बड़ी क्यूट सी फिल्म आई थी. फिल्म का नाम था अंजलि. और इस फिल्म का ये गाना, अंजलि अंजलि अंजलि हमारी आंखों का तारा अंजलि. याद है आपको ये फिल्म?
0: मिर्ची VCR.
1: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा. And long before तारे जमीन पर या सितारे जमीन पर जैसी फिल्में आई, this film was made by Mani Ratnam, who worked on a movie talking about special needs kids. जिस टॉपिक को 90s के दौर में किसी ने नहीं छुआ था. And Anjali was among the first Indian mainstream films जो कि एक ऐसे बच्चे के ऊपर बनी थी who had mental disabilities. और जिस फिल्म ने autism जैसे developmental delay के बारे में awareness फैलाने की कोशिश करी थी, which was a very very rare thing in those days. हाँ, इस फिल्म की जो लीड थी, यानी कि वो जो छोटी सी बच्ची जिसके ऊपर ये फिल्म का टाइटल रखा गया था, her real name was baby Shamili. और इस बच्ची की उम्र पता है क्या थी जब उसने ये अंजलि का रोल प्ले किया था? She was just 2.5 years old. Can you just imagine? इतनी छोटी सी बच्ची ने अपने कंधों पर पूरी फिल्म चलाई है. और यही वजह थी कि बेबी शामली इवेंचुअली गॉट द नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट फॉर हर रोल, जिसकी वजह से शी बिकेम वन ऑफ द यंगेस्ट रिसिपिएंट्स एवर. और आप भी सोच रहे होंगे कि यार इस फिल्म की कास्टिंग किस बेसिस पे की गई होगी. वेल, वेरी इंटरेस्टिंगली मणिरत्नम सर वॉन्टेड टू कास्ट रियल स्पेशल चाइल्ड, लेकिन फिर रोल इतना कॉम्प्लेक्स था कि उस स्पेशल चाइल्ड से वो एक्टिंग करवाना, वो इमोशंस निकलवाना, वो बड़ा मुश्किल हो जाता. तो इस वजह से उन्होंने काफी सारे टॉडलर्स के ऑडिशंस लिए बिफोर दे सिलेक्टेड बेबी Shamili. एंड इस फिल्म को शूट करने के लिए कहा जाता है कि मनी सर ने काफी सारे हिडन कैमरास का इस्तेमाल किया सो दैट वो जो चाइल्ड एक्टर्स हैं उनके नेचुरल मोमेंट्स को कैप्चर कर पाए. क्योंकि यार बचपन तो बड़ा मासूम होता है ना. आप उनको एक्टिंग के दाव पेच सिखाओगे ना तो वो नेचुरल मासूमियत जो है वो निकल कर नहीं आएगी, जो कि वो तब कैप्चर कर ली जाए जब वो निकल कर आए. और कितने सारे तो ऐसे सीन्स थे जिनको की शूट करने के लिए सिर्फ सिंगल टेक्स लिए गए थे ताकि बच्चों की स्पॉन्टेनिटी जो है वो मेंटेन रहे. यानी कि पहला टेक जैसा भी गया है लेकिन क्योंकि उसके अंदर वो मासूमियत और स्पॉन्टेनिटी थी विच वॉज रिक्वायर्ड ऑन स्क्रीन, तो उस टेक को वैसा का वैसे ही रहने दिया और रीशूट नहीं किया. आई थिंक शायद इसी वजह से ये मूवी हमें इतनी ज्यादा पसंद आई थी, क्योंकि इस फिल्म के अंदर वाकई में इतना ऑर्गेनिक इमोशन शामिल है कि जब हमने ये फिल्म देखी तो हम खुद भी रो दिए. लेकिन सिर्फ हम ही नहीं रोए थे, सेट पर कई सारे लोग रोए थे जिनके बारे में बताऊंगी आपको थोड़ी देर में. अभी के लिए यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: मिर्ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तुझे पता है राजस्थान के एक गांव में रेलवे स्टेशन पर कोई एम्प्लॉय है ही नहीं, वहां के गांव के लोग ही टिकट बांटते हैं।
3: फिर तो यहाँ वो चाय चाय ये आवाज नहीं बल्कि ये आती होगी टिकट टिकट। और यार COD तो यहाँ भी होता होगा ना, कैश ऑन डेस्टिनेशन।
4: मिर्ची इट्स हॉट।
5: इस वेकेशन प्यार से हमारा इंतजार करने वाले अपनों को एक गोल्डन सरप्राइज क्यों ना दे। मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स के गोल्डन समर ऑफर के साथ डायमंड एंड प्रेशियस जेम ज्वेलरी खरीदने पर पाइए फ्री कैश वाउचर्स। अपने पुरानी गोल्ड ज्वेलरी को एक्सचेंज कीजिए विदाउट एनी लॉस। और अब विद द इंपोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन GCC। विजिट मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स टुडे।
6: अर्ज किया है
7: इरशाद

0: iPay payments ka wah tarika. With iPay, send money starting from just QAR 5, and yes, with the best FX rates. Simple, seedha, no tension. Check the iPay app today for our 5, 10, 15, 20 offer. Valid till July 31st. iPay, smaller fees, bigger smiles. TNC apply.
1: मेरे बेटे आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे।
2: अरे करण अर्जुन, आमिर, शाहरुख, ऋतिक, अक्षय, इमरान, सबके गाने आएंगे दीदी।
3: आएंगे दीदी।
0: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
4: 89.6 FM मिर्ची वन। It's hot.

0: Midday Mohabbat with Zara. Only on Mirchi. It's hot.
1: मैंने जब ये फिल्म देखी थी ना अंजलि, मैं बहुत छोटी थी यार, और मुझे आज भी याद है कि इस फिल्म को देखकर मैं इतना रोई हूँ और इतना इमोशनल हुई हूँ कि मुझे उस ऑन स्क्रीन कैरेक्टर से मोहब्बत हो गई थी, और मैं इतनी इनक्विजिटिव थी टू नो अबाउट दैट किड जो कि अंजलि बनी हुई थी पूरी फिल्म में. लेकिन सैडली तब हमारे पास सोशल मीडिया नहीं था टू नो मोर थिंग्स अबाउट व्हाट्स गोइंग अराउंड. बट ये इकलौती मैं ही नहीं थी जो इतनी इमोशनल हो गई थी इस फिल्म को देखने के बाद. जब ये फिल्म शूट हो रही थी, एट दैट टाइम टू काफी सारे लोग सेट्स पर इमोशनल हो गए थे.
0: मिर्ची चैट रूम.
1: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा. एंड रेवती जो कि शामली यानी कि ऑन स्क्रीन अंजलि की मदर का रोल प्ले कर रही थी, उनके और शामली के बीच में काफी सारे ऐसे सीन्स थे जो कि इमोशनल सीन्स थे. और जब वो सीन्स शूट हो रहे थे ना, तो जितने भी क्रू मेंबर्स थे ना, वो भी साथ साथ रो रहे थे. स्पेशली वो सीन जो कि हॉस्पिटल में शूट किया गया था, एंड दैट वॉज अंजलिज डेथ सीन. That was really, really heartbreaking. आज भी जब मैं वो सीन देखती हूँ ना भाई, मुझे तो रोना आ जाता है बहुत भयंकर तरीके से. एंड इसके पीछे की वजह ये है कि मणिरत्नम सर बहुत अच्छी तरीके से और पूरी तरीके से इन्वॉल्व थे बच्चों की परफॉर्मेंस को लेकर, और बच्चों को वो पर्सनली रिहर्स करवाया करते थे सारे के सारे सीन्स मल्टीपल टाइम्स, सो दैट बेस्ट ऑफ द बेस्ट निकल कर आए कैमरा पे. क्योंकि उनकी कोशिश यही थी कि जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना, उतना ही पहले टेक के अंदर बेस्ट शॉट निकल कर आ जाया करता था. और वो ज्यादा टेक्स ले भी नहीं रहे थे इस को शूट करने के लिए बच्चों के साथ. यही नहीं, मणिरत्नम सर वो सो इंस्पायर्ड बाय रियल लाइफ स्टोरीज ऑफ पेरेंट्स जो कि डील कर रहे थे विद स्पेशल चिल्ड्रन, कि उन्होंने इस फिल्म को महीनों की चाइल्ड साइकोलॉजी की रिसर्च वर्क के बाद ही शूट किया और लिखा. जिसका असर ये हुआ कि ये फिल्म इवेंचुअली वॉज बींग यूज एज अ रेफरेंस मटीरियल इन साइकोलॉजी एंड स्पेशल एजुकेशन स्टडीज अक्रॉस इंडियन यूनिवर्सिटीज. स्पीक्स अ लॉट अबाउट हाउ मनी सर डील्स विद द सोशल इश्यूज, और वो किस तरीके से इन सोशल इश्यूज को मेन स्ट्रीम सिनेमा में लेकर आते हैं और हाईलाइट करते हैं. ये उन्होंने सिर्फ अंजलि के साथ नहीं किया है, उनकी फिल्म बॉम्बे, दिल से, गुरु, ये सारी वो सारी फिल्म्स थी जिन्होंने सोशल इश्यूज को उठा के मेन स्ट्रीम सिनेमा में ला के बड़े पर्दे पर दिखा के उसकी अहमियत को और बढ़ा दिया, और उन सोशल इश्यूज को बड़ी खूबसूरती से कैप्चर किया. ये है हमेशा का जादू जो मणिरत्नम सर अपने लेंस के साथ बिखेर ही देते हैं. यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: Hollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: Aamir Khan, PK was an iconic film. कई सारे iconic scenes थे. Which one was the most difficult? Radio पकड़ के खड़े रहना या फिर?
3: उसने मुझे तकलीफ नहीं, तकलीफ मुझे पान में हुई. क्योंकि पूरे फिल्म के अंदर मैं पान खाता हूँ. मेरा किरदार जो पान का बड़ा शौकीन है. तो दिन में करीब 100 पान हो जाते थे मेरे. और 100 पान से तो बड़ी तकलीफ होती है. जबान चल जाती है. उसमें हम सुपारी नहीं डालते थे. थोड़ा इजी हो जाता था विदाउट सुपारी. चूना और कत्ता होता था.
2: आमिर खान अपने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाते रहते हैं. दिन के 100 पान कौन खाता है यार? आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट.
0: बॉलीवुड बोल्डाल. बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डाल.
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट.

0: मिर्ची हेल्पलाइन।
1: अरे हाँ रे मामू, मिर्ची हेल्पलाइन बता, सवाल क्या है?
0: मुझे स्टेडियम में मैच देखने तो जाना है, पर भीड़ नहीं पसंद, क्या करूँ?
1: अरे तो सिंपल है ना गोचू, तू दूसरे स्टेडियम में जाके फोन में मैच देख लेना, वहाँ भीड़ होगी ही नहीं।
2: उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा।
3: ऐसे ही लाइफ के टेढ़े सवालों का लॉजिकलेस जवाब चाहिए, तो भेजो आपके क्वेश्चंस मिर्ची हेल्पलाइन पर व्हाट्सएप ऑन 8422983983। इट्स हॉट।

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: Channel V और MTV में एक टाइम पर बड़ी कूल प्रॉपर्टीज बना करती थी यार. सिंपू सर याद है आपको?
0: मिर्ची पे टीवी दर्शन.
1: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा. And Channel V और MTV एक टाइम पर देखना कूलनेस कोशेंट बड़ा दिया करता था यार. लेकिन उस कूलनेस कोशेंट में भी ना एक देसीपन था जो अंदर ही अंदर दहाड़ता था कि ये सिंपू सर वाला एड ब्रेक कब आएगा रे बाबा. हम वो जनरेशन है जो क्लास में अपने टीचर्स को कॉपी करने की हिम्मत तो नहीं जुटा पाए, लेकिन चैनल वी के सिंपू सर को बड़ा कॉपी किया बॉस. इतने कूल कैरेक्टर को बनाने के लिए क्या लगता है भाई, जो आज के टाइम पर टेलीविजन पर ऐसा कोई कैरेक्टर मिसिंग है? एक बार फॉर द सेक ऑफ पुरानी यादें सिंपू सर को तो सुनना बनता है, तो सुने.
2: सर,
3: यस
2: सर, एक शाम समझा दोगे सर?
3: अभी नहीं भाई, आज तो पंकज.
2: सर थोड़ी टफ प्रॉब्लम है सर.
3: तो भाई आज तो पंकज नो. बॉयज, भाई जोक क्या है भाई? व्हाट्स द जोक?
2: सर आज द पंकज
3: नीरज.
1: हाय, दिल खुश हो गया. अब एक काम करो, हाथ ऊपर करके खड़े हो जाओ भाई, खड़े हो जाओ हाथ ऊपर करके. स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: Mirci.
1: Iskabana, uskabana, sakabana. Burga, burga. La vieva la burga. Mirci, burga.
2: Hello. Hello.
3: Hello, Mr. Anil.
2: हाँ जी.
3: Mr. Anil, तीनों आ गए हैं.
2: तीनों आ गए?
3: सर, मैं ये चाइल्ड अडॉप्शन सेंटर से बोल रहा हूँ. आपने रिक्वेस्ट भेजी थी ना बच्चा गोद लेने की, अडॉप्ट करने की. तो सर, तीन है हमारे पास, आप आके देख लें, इसमें से चूज कर लें, फिर आपकी सारी वो फॉर्मेलिटी पूरी करके कर देते हैं.
2: कौन बोल रहे हैं भाई साहब?
3: मैं चाइल्ड अडॉप्शन सेंटर से राकेश बोल रहा हूँ सर.
2: जी, फिर?
3: एक सेकंड, इन बच्चों ने तो दिमाग, एक सेकंड रुको बच्चा, एक सेकंड, इसने पॉटी कर दी है शायद. एक सेकंड रुकिए.
2: हेलो.
3: हाँ सर, एक सेकंड होल्ड करिए, इसने पॉटी कर दी शायद. हाँ सर, ये मैं चाइल्ड अडॉप्शन सेंटर से बोल रहा हूँ. आपने रिक्वेस्ट दी थी ना बच्चा अडॉप्ट करने की, तो आप आके देख लीजिए इनमें से कौन सा बच्चा पसंद है.
2: नहीं भैया, आपको गलत फहमी हो रही है कोई, आप गलत मिला है.
3: गलत फहमी की बात नहीं है, गलत फैमिली आपकी है. बच्चा है नहीं तो गोद ले लो, फैमिली सही हो जाएगी.
2: अरे मैं क्यों लूंगा यार बच्चा गोद, मेरे पास पहले से मेरा अपना बच्चा है, मैं क्यों गोद लूंगा भाई.
3: तो अनिल जी, आपको ये पहले सोचना चाहिए था यार, जब आपने ये एप्लीकेशन भरी है यहाँ पे आके.
2: कौन बोल रहे भाई?
3: आप कमाल कर रहे हैं, भड़क रहे हैं. तीन बच्चे मैं लेके आया हूँ यहाँ पे, रो रहे हैं.
2: भड़क रहा हूँ भाई, क्या तरीका है?
3: क्या तरीका
2: कर रहे हैं आपने? यार मैंने कोई एप्लीकेशन नहीं दी, आप क्या बोल रहे हो?
3: अनिल बंसल आप ही हैं.
2: अनिल बंसल नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैंने किसी से कोई एप्लीकेशन नहीं दी हुई है.
3: सर कमाल कर रहे हैं आप, बार बार मुझ पे थोप रहे हैं. अब ये तीन बच्चे कौन लेगा यार?
2: आप पहले कंफर्म तो करो, कम से कम
3: कंफर्म करके ही बोल रहे हैं यार आप. एक बच्चा, तीन नहीं तो एक बच्चा तो गोद ले लो यार.
2: बात करो, एक तरीका बात करने का
3: यार, तरीका आप.
4: ओ बच्चा चुप हो जाओ, वो गुस्सा आ गया उनको.
2: हेलो
3: यार अनिल जी, कमाल कर दिया आपने.
2: मैं काम कर रहा हूँ बेटा, वो आपके आपकी बकवास सुन रहा हूँ बैठ कर.
3: सर मैं आपको बता रहा हूँ, जो आपने सारी बातें कही थी, एक बच्चा इसमें एक साल का, एक बच्चा सात महीने साढ़े सात महीने का, एक बच्चा एक साल तीन महीने का है. आपको जो पसंद आता है
2: आप कितने भी महीने का हो तुम ले लो फिर अपने पास, तुम अडॉप्ट कर लो, फिर मुझे नहीं चाहिए.
3: अरे मुझे तो खुद किसी ने गोद ले रखा है यार, मैं कैसे ले लूँ? आप मुझे क्यों सिखा रहे हैं यार? आप अपनी बात करो यार.
2: तुमने सर अगली बार फोन कर दिया ना, तेरे को ही गोद दिलवाऊंगा ये बच्चा, समझ गया?
4: नहीं सर, मुझे तो वैसे ही रेडियो मिर्ची ने गोद ले रखा है. अनिल जी, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, और आपका प्यारा से जो बच्चा है रोहन, ये उसी का बवाल है सारा, आपका मुर्गा बना दिया.
2: यार कमाल कर दिया भाई, कुकड़ों को
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
6: अ रिंग फॉर द न्यूली मैरिड, क्यूट लिटिल बैंगल फॉर द न्यूबॉर्न.
7: अरे यार हॉलीडे सीजन इज हियर, और फिर वही गिफ्टिंग का टेंशन. फिर मालबार गोल्ड एंड डायमंड्स, गोल्ड एंड समर के साथ आइए, फ्री कैश वाउचर्स ऑन डायमंड एंड प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेजेस, प्लस एक्सचेंज योर गोल्ड ज्वेलरी एंड अपग्रेड टू द लेटेस्ट डिजाइंस विदाउट एनी लॉस. और सुनो, देयर इज मोर. विद द इंपोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया, यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन द GCC. विजिट मालबार गोल्ड एंड डायमंड्स टुडे.

0: अलका याग्निक और सोनू निगम की आवाज में दिस गाना फ्रॉम द फिल्म बॉर्डर। और ये गाना जब भी मैं सुनती हूँ ना, पता नहीं अनु मलिक की कॉम्पोजिशन का क्या जादू है बॉस। इस गाने को सुनते के साथ ही ऐसा दिल करता है कि हाय मुझे प्यार क्यों नहीं हो रहा यार, क्योंकि प्यार में पड़े हुए इंसान को इस गाने को सुनने में कितना मजा आता होगा सोचो। इतना प्यारा लिखा है जावेद साहब ने, इतना रोमांटिक गाना, और ऊपर से ये जो मेलोडियस ट्यून है ना इस गाने की, कुछ कुछ होता है यार, और ये राहुल तो बिल्कुल भी नहीं समझ पाएगा।
1: सारा जमाना सारा का दीवाना।
2: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
0: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पितारा। और अब चलो अपने दिल की धड़कनों को समझने के बजाय कुछ और समझने की कोशिश करते हैं, और वो है कुछ धुने। So basically, it's time for मान ना मान करो गानों की पहचान, जहाँ पर दो गानों की धुने मैं आपके लिए चला दूंगी और आपको गेस करना होगा कि ये दो गाने एक्चुअली है कौन से। तो चलो फिर आज का जो मिक्स है वो है कुछ ऐसा।

और आज के दोनों मिक्सर्स में एक खास बात है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपको हिंट के तौर पे ये खास बात बता दी जाए कि ये दोनों ही गाने ना बॉलीवुड के दिलों के बादशाह के हैं। अब गेस करके बताओ ये कौन सा गाना है। डीएम करो ऑन माय इंस्टाग्राम हैंडल विच इज मिर्ची सारा एंड स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची। इट्स ऑल

0: मिर्ची स्टोरीज स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तुझे पता है राजस्थान के एक गांव में रेलवे स्टेशन पर कोई एम्प्लॉय है ही नहीं, वहां के गांव के लोग ही टिकट बांटते हैं।
3: फिर तो यहाँ वो चाय चाय ये आवाज नहीं बल्कि ये आती होगी टिकट टिकट। और यार सीओडी तो यहाँ भी होता होगा ना, कैश ऑन डेस्टिनेशन।
4: मिर्ची इट्स हॉट।
5: जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं।
6: और एड ब्रेक भी मिर्ची पर बॉलीवुड के गाने लगातार बार बार
7: बार बार।
6: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
8: 89.6
6: FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: बचपन से हम इस गाने को गुनगुनाते आए हैं और आज इसकी धुन की सच्चाई सामने आ गई है।
2: मिर्ची टग्स ऑफ फिल्मिस्तान।
1: वेल, त्रिदेव का ये गाना

अब आप भी सोच रहे होंगे कि क्या यार सारा दोनों धुने एक के बाद एक बजा दी, लेकिन नहीं, ये एक्चुअली दो अलग अलग जगहों से उठाई हुई धुने हैं। एक तो जो मैंने आपको सुनाई वो त्रिदेव की थी, एंड ये जो म्यूजिक जहां से इंस्पायर्ड है, रादर कॉपीड है, इज मायमी साउंड मशीन का द रिदम इज गोना गेट यू। यार वैसे तिरछी टोपी वाले ने तो शौक से एज अ फैशन स्टेटमेंट ये टोपी पहनी थी, लेकिन म्यूजिक डायरेक्टर विजू शाह ने तो पूरी ऑडियंस को ही टोपी पहना दी। वाह, स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Bollywood, Bollywood, Boulder. Only on Mirchi. It's hot.
1: Nimrat Kaur, I loved you in Lunchbox. अगर आपका लंच बॉक्स आपके घर से आ रहा होता तो उसमें क्या क्या होता?
2: ओह, अगर घर से डब्बा आ जाता हर रोज तो क्या बात थी। सच में अगर होता तो मैं अपनी माँ के बने हुए भरे हुए करेले और आलू के पराठे और साग और गाजर का हलवा और खीर और डब्बा 6-7 कंपार्टमेंट्स हो सकते हैं डब्बे में।
1: निमरत कौर, आप सिर्फ आवाज करो, हम 250 कंपार्टमेंट्स डाल देंगे आपके लंच बॉक्स में। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: आज के टाइम पर देयर इज अ ड्रॉइंग रूम, डाइनिंग रूम, बेडरूम, लाउंज, लेकिन पुराने घरों में इतने फैंसी टर्म्स यूज नहीं हुआ करते थे बॉस। सीधे सीधे नाम थे हर कमरे के। ये
2: है नब्बे की गप्पे।
1: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। एंड बैक इन द ओल्ड डेज ना, जैसी करनी वैसी भरनी, ये कमरों के साथ भी हुआ करता था कि जो काम वो कमरा किया करता था ना, वैसा ही नाम उस कमरे को दिया जाता था। जैसे कि जहाँ खाना खाते थे वो खाने वाला कमरा था, जहाँ टीवी देखते थे वो टीवी वाला कमरा था, जहाँ मम्मा डैडी रहा करते थे वो मम्मा डैडी का कमरा था, और नानी के यहाँ तो भाई फ्रिज वाला कमरा, बिस्तर वाला कमरा और गेहूं वाला कमरा भी हुआ करता था यार। यानी कि जैसा कमरा हुआ करता था, जो उसमें काम हुआ करता था, वैसा ही उसका नाम हुआ करता था। ये लिविंग रूम, लाउंज, डाइनिंग रूम, ये इतने फैंसी फैंसी नाम नहीं हुआ करते थे कमरों के। लेकिन फिर भी ना, कभी पता ही नहीं लगा कि हमने कैसे फ्रॉम खाने वाला कमरा टू डाइनिंग रूम का जो टर्म है ना, वो अपनी जिंदगी में अपना लिया। कैसे ये ट्रांजिशन हुआ, और जिसमें हमें पता भी नहीं लगा यार कि हमें मुश्किल हुई थी कि नहीं हुई थी जब ये ट्रांजिशन हो रहा था हमारी लाइफ में। क्योंकि बचपन से तो हमारी आदत थी यार, अगर कोई चीज ढूंढनी होती थी जो कि टीवी वाले कमरे में रखी होती थी, तो एक आवाज आती थी कि अरे मेरी चप्पलें कहाँ है, तो अगला कहता था अरे टीवी वाले कमरे के बाहर ही तो उतारी थी तूने। एंड इट वॉज इजी टू फिगर आउट स्टफ। अब अगर कोई तब बोलता ना कि लाउंज के बाहर तो उतारी थी तूने, तो सब गोल हो जाते कि ये कौन सा कमरा आ गया यार हमारी जिंदगी के अंदर। वाकई में यार, कमरे में कमरा, कमरे में हम, इतने रंगीन थे ये नाम की कमरों के नाम में भी ये भरते थे दम। यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: Mirchi.
1: Escabana, puscabana, sacabana.
2: Rambana.
1: Burga, burga. La vieja la burga.
2: Mirchi, burga.
3: हेलो
4: बेटा, घर आ जा, मामा परेशान है, खाना खा ले, ऐसे छोटी छोटी बातों पे नाराज होके नहीं जाते घर से, आ जा।
3: हेलो, कौन बोल रहे हैं?
4: बेटा आ जा, देख आ जा, एक आवाज भी नहीं आ रही। हेलो
3: हेलो
4: बेटा।
3: अरे अंकल, आप ये तो बताइए, बोल कौन रहे हो?
4: देख, अपने बड़े बूढ़ों से ऐसे नाराज ही होते बेटा, एक तो बुढ़ापे में तू ही सारा, दूसरे ये कान से सुनाई नहीं देते, और तू चला गया। हेलो बेटे, क्या हो गया हमारा?
3: अंकल मैं आपका बेटा नहीं हूँ।
4: तेरी आवाज भी नहीं आ रही है, घर आ जा बेटे।
3: अरे अंकल ये तो बताइए, आप बोल कहाँ से रहे हो?
4: बेटे ऐसे नाराज होते हैं तो जानते,
3: मैं आपका लड़का नहीं हूँ, आपने गलत नंबर मिलाया है।
4: बेटा नहीं, ऐसे ये नाराजगी होती है तो ऐसे खा छोड़ कर जाते
3: हैं। माता जी से बात करा दीजिए।
4: बेटे आजा आजा बेटे।
3: अंकल माता कहाँ है?
4: छाता बेटे, छाता भी देंगे।
3: छाता नहीं अंकल, माता आप अपने कान के बात।
4: बेटा कोई गलती हो या देख तो बेटा माफ कर दे, ऐसे नहीं जाते।
3: अंकल मैं वो नहीं हूँ आपका लड़का, आप मुझे मत फोन करिए।
4: अरे बात मेरे बात,
5: इतनी जल्दी नाराज हो गए भाई, मेरे तो कान चलने लगे। दोबारा मिला।
3: हेलो
4: वैसे, हेलो
3: अंकल आप परेशान हो रहे हैं, आप क्या नंबर मिला रहे हो?
4: वैसे घर कब आ रहा है? घर कब? मैं खाना करवा दूं?
3: अरे अंकल मेरे बात कर, बेटा नहीं हूं मैं।
4: अगर आप तू आ जाएगा तो आज
3: आपने नंबर क्या मिलाया मेरे बेटे? कान में
4: सुनाई दे बेटा, तेज बोल भाई जी, जो चाहिए दे देंगे। आ जा बेटे।
3: अंकल मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप प्लीज फोन ना करिए।
4: हेलो, मैं फोन तो करना पड़ता बेटे।
3: क्यों?
5: क्योंकि किसी को मुर्गा बनाना पड़ता है। विक्रम, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, तुम्हारा मुर्गा बन रहा है, तुम क्यों चिल्ला रहे हो भाई?
3: मेरा गला पूरा आपने दुखा दिया चीख चीख के।
5: अब क्यों तेज बोल रहे हो भाई, अब धीरे बोलो और आराम से मेरे साथ कह दो।
3: बोलना जरूरी है?
5: हाँ बिल्कुल जरूरी है।
4: आवाज नहीं आई, तेज बोल।
6: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: Dear Zero Period.
2: यादों को चिट्ठी।
1: तुम्हें शायद याद भी ना हो, लेकिन हम तुम्हें कभी नहीं भूले, क्योंकि तुम हमारी जिंदगी में जीरो नहीं, हीरो थे। जब भी स्कूल की घंटी सुबह सुबह बजती थी ना, तो हमारा दिल अगले 8 पीरियड्स की थकान से पहले ना तुम्हारी आस में ही बैठा रहता था। तुम बाकी पीरियड्स जैसे नहीं थे, ना कोई किताब, ना कोई लेसन्स, ना कोई बोर्ड पे रटा रटाया लेक्चर। तुम तो जैसे स्कूल के बोरिंग दिन में आई एक सांस की तरह थे। कभी तुम म्यूजिक की मस्ती बन जाते थे, कभी तुम लाइब्रेरी की किताबों में सैर करवाते थे, तो कभी मैदान में खुलकर खेलने का मौका देते थे, तो कभी क्लास टीचर से गप्पे लड़ाने का मौका भी मिल जाया करता था तुम्हारे जरिए। कुछ बच्चों के लिए तो तुम होमवर्क पूरा करने का एक बड़ा ही सीक्रेट सा गिफ्ट थे, तो कुछ के लिए तुम वो वक्त थे जिसमें की दोस्ती और गहरी हो जाती थी। याद है वो दिन जीरो पीरियड, जब रिपब्लिक डे की परेड की तैयारी के लिए तुम्हारे टाइम पर ही हम स्कूल ग्राउंड में जमा होते थे, या फिर वो दिन जब किसी टीचर की अचानक तबीयत खराब हो जाती थी और वो एक्स्ट्रा क्लास लेने से मना कर दिया करते थे और हमारी क्लास कैंसिल हो जाया करती थी, तो तुम्हारे बिना एक और खेल का मौका मिल जाया करता था हमें। तुम्हारी कोई तयशुदा पहचान नहीं थी यार, पर शायद इसीलिए ही तुम सबसे प्यारे थे। जब भी कभी तुम्हारा जिक्र होता है और कोई बोलता है जीरो पीरियड, तो एक मीठी सी मुस्कान खुद ब खुद चेहरे पर आ जाती है। तुमने हमें सिखाया कि हर टाइम पढ़ाई जरूरी नहीं होती, कभी कभी बस जीना और दोस्तों के साथ खुलकर हंसना भी जरूरी होता है। अब जब जिंदगी असल जिंदगी के पीरियड्स में बढ़ चुकी है ना, तो तुम्हारी याद और भी गहरा जाती है तुम्हारे उन्हीं हंसी ठिठोली वाले पलों के लिए। तुम्हारी पुरानी दोस्त जो अब भी जीरो पीरियड को बहुत मिस करती है, और शायद तुम्हारी वजह से ही जीरो आज भी हमारे लिए हीरो ही है। तुम्हें याद करती तुम्हारी सारा, जो यहाँ के अलावा इंस्टाग्राम पर भी मिल जाएगी बाय द नेम मिर्ची सारा। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, कॉज इट्स हॉट।

0: में ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तुझे पता है राजस्थान के एक गांव में रेलवे स्टेशन पर कोई एम्प्लॉय है ही नहीं, वहाँ के गांव के लोग ही टिकट बांटते हैं।
3: फिर तो यहाँ वो चाय चाय ये आवाज नहीं बल्कि ये आती होगी टिकट टिकट। और यार सीओटी
4: उस पत्थर को जा उसे बता दे
0: मिर्ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।

0: भाई साहब सॉरी एंड थैंक यू, हमें दोस्ती नहीं एंटरटेनमेंट चाहिए।
1: तुम मिर्ची सुनो ना, जहाँ एंटरटेनमेंट खूब मिलेगा।
2: खूब मिलेगा, मिलेगा।
3: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
4: 89.6 FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: शंकर महादेवन की आवाज एंड शंकर एहसान लॉय का म्यूजिक दिल चाहता है का ये गाना इज कैसेट के साइड बी का तीसरा गाना।
2: मिर्ची 90s कैसेट
1: द टाइटल ट्रैक और कौन सा गाना यार माय गॉड। मतलब इस गाने की खास बात पता है क्या है कि ये गाना जो है ये बीते कल का ही गाना है। मतलब जो गाना इतनी शिद्दत से कह रहा है कि दिल चाहता है कि कभी ना बीते चमकीले दिन। सैडली आज भी जब ये गाना हम प्रेजेंट में गुनगुना रहे होते हैं ना तो दिल में एक अजीब सी कसक होती है कि यार ऐसा तो अब हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि हमारा बचपन हमारे कॉलेज डेज सब पास्ट में चले गए और जब तब ये गाना सुना करते थे ना तो लगता था कि हाँ गाना ही तो है। बट इसके मायने तब समझ में आए जब धीरे धीरे करके ना बचपन हमारे हाथों से छूटता गया, स्कूल छूटता गया, फिर कॉलेज छूटता गया, फिर नौकरी शुरू हो गई और जब से नौकरी शुरू हुई है तब से लाइफ एक जैसी सी लगती है। बट वाकई में यार वो जो दिन थे वो ऐसे ही थे जहां पर जगमगाते थे, जिल मिलाते थे अपने रास्ते और हमारे दिल में भाई इतना जज्बा था ना, ऐसा लगता था कि भाई पूरी दुनिया हमारी मुट्ठी में है, बोलो तुम क्या करना है हम करके दिखाएंगे। और तभी हम गा दिया करते थे कि ये खुशी रहे रोशनी रहे अपने वास्ते। हाय कितने नादान थे नहीं हम। बट इस गाने की सबसे प्यारी लाइन पता है क्या है, वो ये है कि कैसा अजब ये सफर है, सोचो तो हर एक ही बेखबर है, उसको जाना किधर है, जो वक्त आए जाने क्या दिखाए, इसीलिए जो आज है ना उसको जी लो। क्योंकि बचपन में भी हम बड़े ही होना चाहते थे और बड़े होने के बाद भी हमें यही लगता है कि अभी और बड़े हो जाए, अभी और कुछ कर ले फिर खुश हो जाए। नहीं यार, जो है वो अभी है, कल का क्या होगा कल पे छोड़ दो। और अभी जाते जाते यही गाना सुनते हुए जाओ, मैं आपके लिए यही गाना लगाती हुई जाती हूँ और आपसे कहती हूँ हमें रही प्यार की, लेकिन फिर मिलेंगे चलते चलते। आप अपना अच्छा खासा ख्याल रखिएगा और बाकी यहाँ के अलावा मुझे ढूंढ लीजिएगा ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल विच इज मिर्ची सारा। Stay tuned to Mirchi. It's hot.

0: Bollywood, Bollywood, Bolda. Only on Mirchi. It's hot.
1: अरमान मलिक, आप गाना अच्छा गाते हैं, आप गाना अच्छा बनाते भी हैं, उसके अलावा क्या क्या अच्छा बनाते हैं?
2: मैं ब्रेकफास्ट बहुत अच्छा बनाता हूँ, स्क्रैम्बल्ड एग्स, स्टर फ्राई मशरूम और स्पिनच, मेरा ब्रेकफास्ट कभी खाना।
1: ये कहना बहुत आसान है अरमान मलिक कि कभी मेरा ब्रेकफास्ट खाना, अरे तो फिर हमें भी बुलाना। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डा, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा, ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

तूफान बन गया, डरने लगे लोग, ऐसा तूफान बन गया। और क्या कहूं मैं, सारा जहां था उसके कदमों में।

0: साहब जी, ये मिर्ची हेल्पलाइन है
1: जी? बिल्कुल, बताइए सवाल क्या है?
0: ओ साहब जी, नूडल्स का एक पैकेट बनाओ तो कम पड़ता है और दो बनाओ तो बहुत ज्यादा होता है, तो क्या करूँ?
1: सिंपल है, तू कस्टमर को ऑर्डर पूछ के बनाना, वो बोले उतना ही बनाना।
2: ऐसे ही लाइफ के टेढ़े सवालों का लॉजिकलेस जवाब चाहिए, तो भेजो आपके क्वेश्चंस मिर्ची हेल्पलाइन पर व्हाट्सएप ऑन 8422983983। इट्स हॉट।

0: बंजारे की आवाज में बैरन गाना, लेकिन आपके लिए मैं बंजारा नहीं हूँ, रोज शाम आ जाता हूँ अपने इसी ठिकाने पे 89.6 मिर्ची पर। नाम है यस और मस्त मौला गौरव। आज इतना ही कहना चाहेगा कि हमारे कतर का मुकाबला होस्ट कनाडा से होने वाला है देर रात 1 बजे, और हम कहना चाहते बस इतना ही कहना है कि वर्ल्ड कप 2026 का दूसरा मुकाबला, और आज पॉइंट्स टेबल पर ना 3 पॉइंट्स और चाहिए, ये समझ लीजिए शाम के 4:04।
1: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीम मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर।
0: तो मस्त बोला गौरव यही कहेगा, आज देर रात 1 बजे आप 3-2-1 कतर ओलंपिक स्पोर्ट्स म्यूजियम का हिस्सा बन सकते हैं, जहां पर होने जा रहा है एक तरह से ये मैच का लाइव टेलीकास्ट, एंड आप इस मैच को जाकर देख सकते हैं। एक शानदार मौका जहां पर हम कतर को सपोर्ट करें और आज का अपना ये मुकाबला जीतें, यही ऊपर वाले से दुआ है, और कतर पॉइंट्स टेबल पर बढ़ता जाए आगे ताकि वो टॉप 32 में जगह बनाए। इसी उम्मीद के साथ फिंगर क्रॉस्ड, एंड आई एम श्योर कतर आज ये मुकाबला जीतेगा। 89.6 मिर्ची पर मस्त बोला गौरव आपके साथ शुरुआत करते हैं शाम शानदार की। मिर्ची इट्स हॉट।
1: शाम शानदार ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

0: Energy. Escabana, escabana, sacabana. Rabana. Murga, murga. Na vida la murga.
1: Energy, murga. Alô? Alô?
2: Ah, mas vai tu.
1: Vai,
2: como vou lá? Ah, mas mulher, para de
1: olhar. Alô, como vou lá?
2: कौन
1: बोल रहा है
2: भाई? अब मुझे आप बताया उसने कि तू भी यार तू एक नंबर का आइटम मेरी भाई मुझे आप बताया असल मैं वहां गया हुआ था अबे मुझसे कह रहा
1: अबे अरे भाई ये तो बता दे कौन बोल रहा है क्या बात है
2: तूने नताशा को प्रपोज कर दिया भाई सबके सामने
1: अबे भाई कौन लताशा
2: नताशा यार नताशा को प्रपोज नहीं किया
1: अबे भाई कौन लताशा मैं तो लताशा को जानता भी नहीं
2: तो तू पहले मुनी फाड़ सकता था
1: भाई तूने बोलने का मौका ही कहाँ दिया भाई तू तो हंसता ही रहा
2: अबे तो तुझसे पहले नहीं बोला जा सकता था मैं तो हंस रहा था तू तो चुप था बता देता मुझे मैंने नताशा को नहीं छेड़ा मैंने नताशा को प्रपोज नहीं किया मैं हंसे जा रहा हूँ मैं हंसे जा रहा हूँ की तरह और तू मजाक उड़ा रहा मेरी
1: मैं कैसे बोल देता जब तू हंसे जा रहा
2: है
1: सुनने का मौका नहीं दिया मैं हेलो हेलो करे जा रहा हूँ
2: तू शुरू में कह रहा था कि मैं नहीं बोल रहा मैंने नताशा को नहीं छेड़ा रॉन्ग नंबर लग गया ये बोलने में तेरा मुंह फट रहा था क्या पांच साल में हंसी आती है वो भी बर्बाद कर दी तू पहले नहीं बता सकता था मुझे कि मैं नहीं बोल रहा
1: फोन तूने करा
2: मैंने क्या फोन मैंने क्या तो तेरे हाथ में तो था तेरे मुंह में जुबान नहीं थी तू ये दिमाग खराब कर रहा है ऊपर से
1: मैं तो पूछा वो तू बोल कैसे रहा भाई
2: भाई मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ मैंने ऐसी किसी का नंबर मिला दिया आपका लग गया मैं आपका मुर्गा बना रहा था थोड़ी सी मजाक करी और वो अच्छी खासी
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट एक सीरियल किलर एक डिस्ग्रेस्ड कॉप और एक ऐसी डार्क मिस्ट्री जो आपको हिला देगी
3: लव इज माय बिगेस्ट फियर बिकॉज़ फॉर मी लव इज डेथ
0: विटनेस करिश्मा कपूर इन हर मोस्ट रूथलेस अवतार येट
4: गलती भी हमारा जिम्मेदारी भी हमारी
0: Catch Officer Brown. Officer Brown. Tearing through the city of joy's darkest secrets. Brown. Streaming on Hindi Z5 from 12th June.

0: ये खुशबू यहाँ तक आ रही है, ये खुशबू यहाँ तक आ रही है, और ये आमों की खुशबू है जो सूख वाकिफ से उठकर कतर के कोने कोने तक जा रही है। यस, आम के बड़े बड़े ठेले, बोले तो बड़े बड़े बॉक्सेस हमारे कतर में लैंड कर चुके हैं, और आज शाम 4 बजे से ही शुरू हो गया है ईस्टर्न स्क्वायर सूख वाकिफ में। एंट्री बिल्कुल फ्री है, इंडियन मैंगो एग्जीबिशन। यस, अलग अलग विभिन्न प्रकार की सारी वैरायटियों के आम जो आपको इंडिया से मिलते हैं, तोतापरी से लेकर अल्फांसो, लंगड़ा, सिंदूरी, सब आम मिलेगा। बस जाइए तो एक बार और यहाँ घूम कर आइए। एंड आई एम श्योर मैंगो फेस्टिवल, हम्बा एग्जीबिशन जिसको हम कतर में बोलते हैं, ये जब भी आता है ना, लोगों के अंदर एक अलग सा क्रेज रहता है, क्योंकि हम लोग ना फलों के राजा आम को बहुत प्यार करते हैं, और हम सब ने अपनी लाइफ में, अपने बचपन में ना, इन आमों का असली स्वाद चखा है, अमरस के रूप में, या यूं कह लें मैंगो शेक के रूप में। हमने इनसे अलग अलग मिठाइयां, अचार, गुरम्मा सब बनाया। अब बारी आई है इनको सात समंदर पार, अलग अलग जगहों पर रहते हैं तो भी इनको सेलिब्रेट करने का, तो अल्फांसो, केसर, लंगड़ा, दशहरी, चौसा, सब कुछ मिलेगा। बस आपको जाना होगा ईस्टर्न स्क्वायर सूख वाकिफ में, एंड दिस इज स्टार्टिंग टुडे टिल 27th of June हमारे कतर में। आपको रोज शाम 4 बजे से 10 बजे तक सिर्फ मीठे आमों की बात करते और खरीदते दिखाई देंगे लोग। तो भाई हम्बा एग्जीबिशन जाना है, आम खरीद के लाना है, चाहे आप मैंगो शेक बना रहे हो, अमरस बना रहे हो, आम पूड़ी खा रहे हो, मस्मोला गौरव को बुलाना है, क्योंकि हमें बहुत प्यार है आम से, खुद नहीं खरीद पाए तो क्या आप वाले आम में हमारा हिस्सा तो है, हमने बताया है, हमारा तो बनता है मिर्ची।
1: शाम शानदार, ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

0: Hey, hey, Pitil and Shreya ka combination sunaya kisne?
1: Mast mola gaurav.
0: Lekin aaj ye baar baar sunaunga.
2: Al-Anabi!
0: Al-Anabi! Al-Anabi! Yalla!
2: Let's go! World Cup 2026!
0: Yes, hum bata de, hamare Qatar ka aaj ek baar phir se mukabla hai aur ye mukabla der raat 1 baje shuru hoga. Co-host कनाडा से ये बहुत बड़ा मुकाबला कतर के लिए इसलिए भी है क्योंकि बीसी प्लेस वैंकूवर स्टेडियम में जब आज ये मैच शुरू होगा तो ऑलमोस्ट इस ग्रुप की सारी टीमों का पॉइंट्स एक एक एक एक है. यस, स्विट्जरलैंड जहां बोस्निया पर लेगी एंड वहीं पर 3 आवर्स पहले हम खेल रहे होंगे. कुल मिलाकर इस ग्रुप में टॉप करने का मौका हमारे कतर के पास है. अगर हम फीफा रैंकिंग की बात करें तो कनाडा राइट नाउ इज ऑन नंबर 32 इन फीफा रैंकिंग्स. वही हमारा कतर टॉप 50 में 49th पोजीशन पर है. लेकिन रैंकिंग इज जस्ट द नंबर सर. मैदान पर जो आखिरी समय में एकदम मस्त एनर्जी दिखाएगा वही इस फुटबॉल के सबसे बड़े स्टेज पर जीत कर आगे बढ़ जाएगा. नॉकआउट स्टेज के लिए कतर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आज का ये मैच जीतना एंड मुझे पूरी उम्मीद है कि कतर इस इतिहास को आज रचने जा रहा है. बस हमें और आपको अपनी अन्नाबी को चेयर करना है. सो टीम अल अन्नाबी, लेट्स हैव गोल्स. यस, और गोल की ऐसी झड़िया लगा दो कि मजा आ जाए. ऑल द बेस्ट टू कतर टीम. रात 1 बजे ये मुकाबला शुरू होगा. आप कतर के अलग अलग हिस्सों में जाकर देख सकते हैं. आज रात कतर सोने नहीं वाला है. आज रात जीत का जश्न मनेगा. 89.6 मिर्ची वन, इट्स हॉट.
3: Sham Shandar, brought to you by Kim's Health Medical Center.

0: यहाँ भी होता होगा ना, कैश ऑन डेस्टिनेशन।
1: मिर्ची इट्स हॉट।
2: जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी, जा बेटा जा।
3: सिमरन अपनी जिंदगी जी रही है अंकिल, क्योंकि वो सुनती है बॉलीवुड के हिट गाने। हिट गाने
1: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
4: 89.6 FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

0: मिर्ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तुझे पता है राजस्थान के एक गांव में रेलवे स्टेशन पर कोई एम्प्लॉय है ही नहीं, वहां के गांव के लोग ही टिकट बांटते हैं।
3: फिर तो यहाँ वो चाय चाय ये आवाज नहीं बल्कि ये आती होगी टिकट टिकट। और यार सीओडी

0: का लड़का अंकित तिवारी और गाना सुनाया जो पड़ा था इस पिक्चर के बाद सबर भारी भाई।
1: मस्त मौला गौरव।
0: कह सकते हैं एक शानदार गाना जो भाई ने सुनाया था। लेकिन फिलहाल आप मिर्ची पर मेरे साथ यानी कि मस्त मौला गौरव के साथ सुन रहे हैं मेरा वो शो जिसका नाम है यस शाम शानदार।
2: शाम शानदार ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।
0: लेकिन मौसम उससे भी ज्यादा शानदार बना हुआ है। जबरदस्त हवाओं के थपेड़ों के बीच आज कल के मुकाबले हवाएं कम हैं, लेकिन टेम्परेचर फिर भी जबरदस्त ऊपर की तरफ है।
3: नाम तो जानते हो मेरा, तापमान सलमान।
2: वेदर अपडेट।
0: मैंने कहा था मुझे अंदेशा है दोस्तों, पिछले दिनों के मुकाबले अब धीरे धीरे ह्यूमिडिटी का बढ़ना शुरू हो चुका है। आज 41% तक पहुंच गया ह्यूमिडिटी का ये पारा। दिन का मैक्सिमम टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस, दिन का मिनिमम 29। लेकिन इन सब के बीच ह्यूमिडिटी का बढ़ता परसेंटेज हवाओं को भी पीछे छोड़ दे रहा है। 16 किलोमीटर प्रति घंटों की चलते से रफ्तार जो हवाएं हैं वो भी इस ह्यूमिडिटी को नहीं पछाड़ पा रही है और धीरे धीरे अब बॉडी से पसीना निकलिंग निकलिंग निकलिंग होता जाएगा। लेकिन घबराना नहीं है, पानी पीते रहिए, बॉडी को हाइड्रेट रखिए और कानों के एंटरटेन का साधन सिर्फ आपके कानों में लगा हुआ है, बस मिर्ची का वॉल्यूम बढ़ाए लो और सुनते रहो मिर्ची इट्स हॉट।
2: वेदर चेक ब्रॉट टू यू बाय RSL ग्रुप ऑफ कंपनी। अब पाओ कतर में डिलीवरी राइडर्स और ड्राइवर की जॉब। फॉर ब्राइट फ्यूचर कॉल नाउ 3100-0813।

0: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन
1: जी बिल्कुल मिर्ची हेल्पलाइन बता बेटा सवाल क्या है।
0: हम लोग ऑफ रोडिंग पे हिमाचल आए हैं और कार का टायर फ्लैट हो गया है, क्या करें?
1: अबे लल्लू ये तो अच्छी बात है ना, टायर फ्लैट हो गया है, फ्लैट तो रेंट पे चढ़ा ना, टूरिस्ट प्लेस पे रेंट भी तो कितना अच्छा मिलेगा।
2: ऐसे ही लाइफ के टेढ़े सवालों का लॉजिकलेस जवाब चाहिए तो भेजो आपके क्वेश्चंस मिर्ची हेल्पलाइन पर व्हाट्सएप ऑन 8422983983। इट्स

0: इतने सालों बाद बॉम्बे रॉकर्स ने इस गाने से धमाल कर दिया। फिलहाल मिर्ची घड़ी में हम कमाल कर दे, शाम के 5:04 होने को आ गए।
1: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीम मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर।
0: आ गई मिर्ची मम्मी, सीजन 5 की बारी आ गई। वो मॉम्स जो अब टॉप 50 से टॉप 16 तक पहुंची और आज अपना हुनर दिखाने को तैयार है। यस, मिर्ची मॉमी अवार्ड सीजन 5 का ग्रैंड फिनाले, जहां पर जर्मीना, अदिति, शिल्पा, प्रियंका, नेहा, स्वाति, प्रेमलता, जेसी, प्रीति, उर्मिमाला, दीपा, सरला, चारुल, दिव्या, शालू एंड युक्ति, ये सब की सब हैं और कोशिश यही करेंगी कि इन्हें वो क्राउन मिले जिससे मिर्ची मम्मी अवार्ड सीजन 5 का ग्रैंड फिनाले का वो ग्रैंड क्राउन हम मानते हैं। यस, ये किसके सर सजेगा, कौन बनेगा मॉम कॉन्जिनियलिटी, कौन होगा एवरग्रीन, कौन होगी बोल्ड एंड ब्यूटीफुल मॉम, ये सब कुछ आपको पता लगेगा मिर्ची वन कतर की स्टोरीज पर। बने रहना क्योंकि सीजन का ग्रैंड फिनाले आ गया है दोस्तों, एंड ये वो फिनाले है जिसका इंतजार साल भर कतर की मॉम्स करती हैं। वेल, इसी उम्मीद में कि एक शानदार मिर्ची मॉमी अवार्ड सीजन 5 का ग्रैंड फिनाले तैयार है। मस्त मौला गौरव इतने कहेगा कि जो भी जीते, लेकिन मॉम्स को सेलिब्रेट करने का जो एक ट्रेडिशन मिर्ची ने शुरू किया है, ये हर साल बड़ा होता जा रहा है और इसके लिए दिल से शुक्रिया अपने सारे स्पॉन्सर्स को। यस, आई पे मिर्ची मॉमी अवार्ड सीजन 5, जहां पर हमारे पिज्जा पार्टनर है पापा जोन्स, हमारे रिफ्रेशमेंट पार्टनर है बलादना, हमारे शुगर फ्री पार्टनर है ट्रॉपिकाना स्लिम, रेस्टोरेंट पार्टनर चस्का रेस्टोरेंट, आईवे पार्टनर अल्फा हेडोप्टिक्स, इसके अलावा हम बात करें तो गिफ्टिंग पार्टनर अलमुफ्ता ग्रुप, वही हाइजीन पार्टनर हाइजीन, हमारे वेन्यू पार्टनर थे अबू सिद्रा मॉल, फ्रेग्रेंस पार्टनर अल्फा हिदी परफ्यूम, ज्वेलरी पार्टनर स्काई ज्वेलर्स एंड विजुअल मीडिया पार्टनर रिहाब मीडिया, ये सब साथ आए हैं ताकि मॉम्स को सेलिब्रेट किया जाए और अब वो दिन आ चुका है। ऑल द बेस्ट टू एवरीवन, क्योंकि मुझे पता है चीते चाहे जो भी, सब इस बात से खुश है कि यहां तक का सफर भी किसी विनर से कम तो नहीं है। 89.6 मिर्ची वन पर ऑल द मॉमीज, ऑल द बेस्ट मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi. Buscabana, buscabana, sacabana. Rabana. Murga, murga. La vieja la murga.
1: Mirchi, murga. हेलो,
2: कुड आई स्पीक टू तानिया प्लीज?
1: स्पीकिंग।
2: ओके तानिया, मैं पीयूष बोल रहा हूँ मुंबई से। मुझे किसी ने आपका नंबर दिया था। तानिया, मैं पहले ये जानना चाहता हूँ, पहले मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता दूँ। हम एक शो शुरू करने वाले हैं, नखरों के खिलाड़ी।
1: अच्छा।
2: ऐसा होता है कुछ लोगों में कि नखरे होते हैं। मुझे आपका किसी ने नंबर दिया और उन्होंने बताया कि ये कुछ बहादुरी के काम कर चुकी हैं, कुछ डेयरिंग काम आपने किए हैं, मुझे थोड़ा सा बताएंगे?
1: जैसे कि मेरे मोहल्ले में ही एक लड़का है, बहुत बदतमीजी करता था लड़कियों के साथ। तो उसको कोई सबक ही नहीं सिखा रहा था, तो तान्या ही थी पूरे लोकेलिटी में जिसने उसको एक चाटा लगाया।
2: ओह गॉड।
1: और अब वो उस मोहल्ले में नजर ही नहीं आता है बंदा।
2: अरे ग्रेट। तो अब मतलब कुल मिला के आपको डर तो नहीं लगता ऐसे कामों से?
1: नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं लगता।
2: ओके, आई होप कि आप सिलेक्ट हो जाए। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आपके लिए बहुत अच्छी बात है, ये एक मौका है कि आप हमारे इस शो नखरों के खिलाड़ी में आ सकती हैं।
1: आ सकती हूँ मैं उसमें?
2: बिल्कुल आ सकती हैं। दो एपिसोड जो हैं वो शूट हो चुके हैं, अगला दिल्ली का है, तो दिल्ली की कुछ लड़कियाँ आएंगी, तो आप मुंबई आ सकती हैं नेक्स्ट वीक।
1: बॉम्बे आने के लिए पहले घर में बात करनी पड़ेगी मुझे।
2: जैसे आप और शोज देखती हैं खतरों वाले, उसमें ये होता है कि सांप वांप खाते हैं या मुंह से निकालते हैं या जंप करते हैं या, हमारा थोड़ा सा डिफरेंट है।
1: आपका क्या है?
2: उसमें ये होगा कि आप जैसे खड़ी हुई हैं, कैमरा आपके सामने है, एक्शन बोलने के बाद एक बहुत बड़ा चाकू आपकी गर्दन पे रखा जाएगा।
1: ठीक है।
2: और एक मशीन आपकी गर्दन के पीछे से आपकी गर्दन को पुश करेगी। तो हम मशीन में जितनी पावर है उसको बढ़ा के आपकी गर्दन के आर पार चाकू कर देंगे, और जो ब्लीडिंग ब्लीडिंग होगी वो बाल्टी इधर उधर लगा के हम खून सारा जमा कर लेंगे। मतलब अगर आपकी गर्दन कट गई है और ब्लड ग्रुप एक है, तो आप नेक्स्ट राउंड में जाने लायक आप जाएंगी।
1: नेक्स्ट राउंड के लिए बचूंगी तब जाऊंगी ना, जब सारा ब्लड ही निकल जाएगा, तो मैं करूंगी क्या सेकंड राउंड में?
2: सिर्फ तो आपका है, वही तो मैं काटने की बात कर रहा हूँ, और आप ही कह रही है मैं बहादुरी के काम कर लेती हूँ, फिर आप ये नखरे दिखा रही है।
1: नहीं, मना क्या कर रही है, तो पागलों वाला गेम लग रहा है।
2: हेलो,
1: समझ नहीं आ रही, जब मैंने बोल दिया है मैं नहीं करना चाहती हूँ ये शो।
2: तानिया, मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ, और आपका जो दोस्त है अमित, उसने मुझे नंबर दिया था, उसने कहा था इसका मुर्गा बना, तो मैंने बना दिया यार, इसमें मेरी क्या गलती है?
3: मिर्ची मुर्गा नवीद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट। A ring for the newly married, cute little bangle for the newborn. अरे यार, holiday season is here, और फिर वही gifting का tension. फिर मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स, गोल्ड एंड समर के साथ पाइए फ्री कैश वाउचर्स ऑन डायमंड एंड प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेजेस. प्लस एक्सचेंज योर गोल्ड ज्वेलरी एंड अपग्रेड टू द लेटेस्ट डिजाइंस विदाउट एनी लॉस. और सुनो, there's more. With the import duty revision in India, you can now save up to 15% on gold prices here in the GCC. Visit Malabar Gold and Diamonds today.
4: एक सीरियल किलर, एक डिस्ग्रेस्ड कॉप और एक ऐसी डार्क मिस्ट्री जो आपको हिला देगी।
5: Love is my biggest fear because for me love is death.
4: Witness Karishma Kapoor in her most ruthless avatar yet.
6: गलती भी हमारा और जिम्मेदारी भी हमारी थी।
4: Catch Officer Brown.
7: Officer Brown
4: tearing through the city of joy's darkest secrets. Brown, streaming on Hindi Z5 from 12th June.

0: नहीं, बातों में उलझाने के माहिर तो हम भी हैं, सच बता रहे हैं।
1: मस्त मौला गौरव।
0: प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें करके दोस्तों से उधार लेने का तरीका ना मुझे आता है, लेकिन कई बार अब पकड़ा जाते हैं, उन लोग समझ जाते हैं कि फिर आया उधार लेने। महीने की 15 तारीख के बाद बोला है कड़की बहुत रहती है, लेकिन अगर आपके पास है पैसे तो घर भेजो, रेट्स अच्छे। क्योंकि रेट्स अभी भी ठीक ठाक मिल जाएंगे आपको, एक कतरी रियाल के बदले इंडियन रुपीस कम हुआ है, लेकिन उतना भी नहीं, 25.88 INR, यस 25.88 भारतीय मुद्रा में। वही 1 कतरी रियाल के बदले अगर आप चाहेंगे श्रीलंकन रुपीस 91.68, पाकिस्तान रुपीस की बात करें जनाब वाहिद कतरी रियाल के बदले 76.70 पाकिस्तान रुपीज। वही तपाई को नेपाली रुपीज का रेट छोड़ा जो 1 कतरी रियाल के बदले 41.45 का बहुत अच्छा रेट है। हाँ जी 41.45 को रेट छो बहनी अगर घर भेजना था राइट टाइम जॉब पैसे के लिए। हाँ जी, अगर इसके बाद हम बात करें बंधु बांग्लादेशी तक दादा एक्टर कतरी रियाल के बदले 33.78 तो 33.78 ये है बांग्लादेशी टका का रेट। मस्त मौला गौरव के साथ आई पी पर भेजते रहो पैसे, क्योंकि यहां मिलते हैं आपको बेस्ट एक्सचेंज रेट्स एंड साथ ही साथ और बहुत सारी सहूलियतें। एक बार ऐप डाउनलोड करके देख लो, समझ में आ जाएगा। प्ले स्टोर iOS सब जगह मिल जाएगा। मिर्ची पर एंटरटेनमेंट मिलता रहेगा। इट्स हॉट।

0: में शी स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तुझे पता है राजस्थान के एक गांव में रेलवे स्टेशन पर कोई एम्प्लॉय है ही नहीं, वहां के गांव के लोग ही टिकट बांटते हैं।
3: फिर तो यहाँ वो चाय चाय ये आवाज नहीं बल्कि ये आती होगी टिकट टिकट। और यार सीओडी तो यहाँ भी होता होगा ना, कैश ऑन डेस्टिनेशन।
4: मिर्ची इट्स हॉट।
5: एकदम सही सुना तुमने, किम्स हेल्थ पर मिल रहा है फ्री डेंटल कंसल्टेशन। कोई पेमेंट नहीं, कोई कमिटमेंट नहीं, बस पहले अपने डेंटल इश्यूज पहचानो, ट्रीटमेंट डिसाइड बाद में करो।
6: लिमिटेड ऑफर वैलिड फॉर जनरल एंड स्पेशलाइज्ड बोथ। बुक करो अपना फ्री डेंटल चेकअप सिर्फ किम्स हेल्थ पर।

0: बॉलीवुड का स्पाइसी तड़का पूरे कतर को लगाया।
1: हाय दिस इज अक्षय कुमार।
2: नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन।
3: हाय एवरीबॉडी, मैं हूं शाहरुख खान।
4: हाय दिस इज सलमान खान। खान।
0: मुर्गा तो बनाया पर खिलाया नहीं, हंसाया।
5: इसने मुझसे ये पूछा है कि कैसे होते हैं बच्चे।
6: अरे तो शैतान होते हैं बच्चे।
7: टीचर को गुस्सा।
0: डाउन डाउन की धुन पर ट्रेंड का सीक्वेंस बताया। ट्रैफिक का शोर कहां कहां थमा है सबको बताया। स्टूडियो में बैठ के आपको डेस्टिनेशन तक टाइम पे पहुंचाया।
8: यहां की रईस देखनी है तो हम आपको लुसेल कटारा घुमाएंगे। यहां का स्वाद चखाना होगा तो आपको मजबूस संबोसा और शर्मा खिलाएंगे।
0: एजुकेशन हो या एंटरटेनमेंट, इतनी सारी एक्टिविटीज हुई कि कतर रहा एक्साइटेड। ऐसे ही मिर्ची ने रखा कतर को यूनाइटेड।
9: हर घड़ी हर सेकंड अब मिर्ची वन के साथ अपने बिजनेस को करें एक्सेलरेट, क्योंकि पूरे कतर में मिर्ची वन है सबका।

10 out of 10 क्यों नहीं चाहिए चल ओके देन भरे क्लब में रह जाएगी बिल्लो फिर कल ही तू कौन संभालेगा तुझको जब हो जाएगी टल

0: क्या आप हुए जो मोबाइल चार्जर से कम और पावर बैंक से ज्यादा चार्ज करते हैं? तो कतर सिविल एविएशन अथॉरिटी की ये अपडेट आपके काम आएगी।
1: #974974 द मोस्ट ट्रेंडिंग लोकल न्यूज ऑफ द डे।
0: यस, यहाँ मस्तमोला गौरव आपको बताना चाहेगा कि कतर सिविल एविएशन अथॉरिटी ने अनाउंस किया है एक नया अपडेटेड रेगुलेशन जो कि पावर बैंक को कैरी करने को लेकर है ड्यूरिंग योर एयर ट्रेवल। यस, क्योंकि इसमें लिथियम बैटरी होती है और हमने देखा है पास में कई सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस है जहां पर पावर बैंक एक्सप्लोड किया है। इसको ध्यान में रखते हुए एक अपडेटेड रेगुलेशन आया है जहां पर पैसेंजर्स को मैक्सिमम ऑफ टू पावर बैंक्स अलाउ किया जा रहा है, यानी कि आप अगर किसी भी सफर में जा रहे हैं तो आप प्लेन के अंदर सिर्फ दो पावर बैंक लेके जा सकते हैं और किसी की भी कैपेसिटी जो है वो 100 वॉट पर आवर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 100 वॉट आवर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ये क्लियर कर दिया है कतर की सिविल एविएशन अथॉरिटी ने और इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने भी इस बात पर मोहर लगाई है और ये लेटेस्ट गाइडलाइन खुद इशू की थी इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ने और इसको ध्यान में रखते हुए अब कतर सिविल एविएशन अथॉरिटी ने भी इसे लागू कर दिया है। 100 वॉट आवर्स वाले ही पावर बैंक, उससे ज्यादा के नहीं। एंड रिमेंबर नॉट मोर देन 2 पावर बैंक्स इन फ्लाइट और ये चेक्ड लगेज में बिल्कुल प्रोहिबिटेड है, ये आपको केबिन बैगेज में ही लेकर जाना है। और इसके अलावा इन फ्लाइट चार्जिंग ऑफ पावर बैंक इज ऑल्सो नॉट परमिटेड, यानी कि आप अगर प्लेन के अंदर हैं तो पावर बैंक की चार्जिंग बिल्कुल नहीं होगी। इस बात को समझ लीजिए एंड इससे आप और साथ साथ बाकी पैसेंजर्स की भी लाइफ और सेफ रहेगी। एंड मुझे लगता है बहुत इजी होता है, लोग कहते हैं चलो चार्जिंग नहीं की तो क्या हुआ, फटाक से पावर बैंक लगा लेंगे, पर इसके चलते कई लोगों की लाइफ आप जो है रिस्क पर रखते हैं। इसलिए बहुत ही अच्छा अपडेट जो आपके कानों तक पहुंच गया और मुझे उम्मीद है आप इस बात का ध्यान रखेंगे और कोशिश यही करेंगे कि घर पे चार्जिंग से ही हम अपनी मोबाइल को चार्ज करके एयरपोर्ट पहुंचे, प्लेन के अंदर चार्ज करने ना पड़े। 89.6 मिर्ची।

0: Hollywood, Bollywood, bold eye.
1: Only on Mirchi, it's hot.
2: Aamir Khan, PK was an iconic film. कई सारे iconic scenes थे. Which one was the most difficult? रेडियो पकड़ के खड़े रहना या फिर?
3: उसने मुझे तकलीफ नहीं, तकलीफ मुझे पान में हुई. क्योंकि पूरे फिल्म के अंदर मैं पान खाता हूँ. मेरा किरदार जो पान का बड़ा शौकीन है, तो दिन में करीब 100 पान हो जाते थे मेरे. और 100 पान से तो बड़ी तकलीफ होती है, जबान चल जाती है. उसमें हम सुपारी नहीं डालते थे, थोड़ा इजी हो जाता था विदाउट सुपारी. चूना और कत्ता होता था.
2: आमिर खान अपने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाते रहते हैं. दिन के 100 पान कौन खाता है यार? आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट.
0: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल,
1: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट.
4: कतर में हैं और ड्राइविंग लाइसेंस भी है. क्या आपको तलाश है एक अच्छी कंपनी की?
5: तो इंतजार खत्म. RSL ग्रुप ऑफ कंपनीज लेकर आया है एक सुनहरा मौका स्टेबल इनकम के साथ.
4: अभी कॉल करें 3100-0813.

0: शाम शानदार ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।
1: बिल्कुल सही गाना है, बिल्कुल सही गाना है। जब बाजार आमों से भरा हो तो अकेले नहीं, दोस्तों के साथ जाते हैं। यस, हम आपको बता दें कि हम्बा एग्जीबिशन बोले तो इंडियन मैंगो एग्जीबिशन की शुरुआत हो गई है ईस्टर्न स्क्वायर सूक वाकिफ में। आज से ये मेला शुरू हो गया। अब 18 जून से लेकर 27 जून तक कतर में हर घर में आपको ये मैंगो का स्वाद चखने को मिल जाएगा, क्योंकि ज्यादातर लोग आम से प्यार करते हैं और सबका फेवरेट होता है फलों का राजा आम, इसीलिए तो कहा जाता है। और खास बात यह है कि हमारे और आपके घरों में हमने बचपन से इस चीज का स्वाद चखा है। मम्मी अलग अलग डिशेज में डालती आई, या यूं कह लें अचार पड़ने से लेकर मिठाई बनाने तक आम का अपना ही एक अलग मजा है। और वो स्वाद चखने का मौका अब हमारे कतर में आपके पास है, जहां पर आप वैरायटी ऑफ आम अल्फोंसो से लेकर केसर, लंगड़ा, दशहरी, तोतापरी या फिर यूं कह लें भाई अलग अलग राज्यों से अलग अलग तरह के आम सब कुछ आपको मिलेगा। इसके लिए तैयार होइए, थर्ड हम्बा फेस्टिवल बोले तो मैंगो मेनिया के लिए तैयार हो जाइए, जो आज से शुरू हो गया है ईस्टर्न स्क्वायर सूक वाकिफ में और 27 जून तक चलेगा। 18 से 27 जून के बीच आप यहां पर अलग अलग वैरायटी के आम एट अफोर्डेबल प्राइजेस, पॉकेट फ्रेंडली प्राइजेस खरीद पाएंगे और फिर कहेंगे यार अब आम का असली स्वाद चखेंगे। और मैं आपको एक बात बता दूं, जो भी आम खाता है ना वो फिर खास हो जाता है। तो खास बनने का टाइम आ गया, जाइए इस मैंगो एग्जीबिशन से मैंगो खरीदिए, अच्छी अच्छी डिशेस बनाइए, हम तक भी पहुंचाइए, ताकि हम पूरे कतर को बताएं कि हम फलां के आने हमने आम की वाली डिश खाई थी, अपने आप में अनूठी थी। चलिए इसी उम्मीद में कि इस वीकेंड आप जरूर प्लान बनाएंगे, मस्त मौलो गौरव ले रहा अलविदा, लेकिन शनिवार को जुड़ेगा आपके साथ इंस्टाग्राम हैंडल से, जहां पर सारी स्टोरीज के थ्रू मिर्ची मॉमी अवार्ड्स का सीजन 5 का फिनाले आप तक पहुंचेगा। कीप लिसनिंग मिर्ची एंड ट्यून करते रहना हमारे सोशल मीडिया हैंडल इंस्टाग्राम को मिर्ची पर। तब तक ले मस्त सलामा हबीबी, इट्स हॉट
0: शाम शानदार ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

0: मिर्ची हेल्पलाइन।
1: जी बिल्कुल, मिर्ची हेल्पलाइन, बता बेटा सवाल क्या है।
0: सर मेरे घर का एसी खराब हो गया है, कब से लैंडलॉर्ड के पीछे पड़ा हूँ, वो ठीक ही नहीं करवा रहा, क्या करूँ?
1: क्यों थक रहा है? अरे तो दूसरा लैंडलॉर्ड ढूंढ लेना।
2: साले का खोपड़ी तोड़ दे, खोपड़ी तोड़ साले का।
3: ऐसे ही लाइफ के टेढ़े सवालों का लॉजिकलेस जवाब चाहिए, तो भेजो आपके क्वेश्चंस मिर्ची हेल्पलाइन पर व्हाट्सएप ऑन 8422983983। इट्स हॉट।

0: 89.6 Mirchi 1. It's hot.
1: मिर्ची घड़ी में बज गए शाम के छह एंड यू एंजॉयिंग क्लब मिर्ची.
2: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीम मेडिकल सेंटर कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर.
3: लेडीज एंड जेंटलमैन फैस्टन योर सीट बेल्ट्स एंड वेट फॉर द नो स्मोकिंग साइन. वी आर गोना गो, वी आर गोना गो, वी आर गोना गो ऑन अ राइड.
4: क्लब मिर्ची.

नमस्कार और गुड लक उन सबको जो मंडे का टेंशन सैटरडे रात को ही लेके घूम रहे हैं। ये है क्लब मिर्ची, जहाँ प्लेलिस्ट हॉट है, वाइब्स हॉटर है और आपके एक्स के एक्सक्यूजेस सबसे ज्यादा आउटडेटेड है। डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑल ऑन थे गा विद यू। और अगले कुछ घंटों तक हम पार्टी करेंगे इतना जोर से कि पड़ोसी भी सोचे इनका वीकेंड पैकेज कौन सी कंपनी देती है। चलिए वॉल्यूम बढ़ाइए और शर्म घर पे छोड़ दीजिए। लेट्स गो।

वीकेंड और वाईफाई में एक सिमिलैरिटी है, दोनों जब स्ट्रॉन्ग होते हैं तो जिंदगी ऑटोमेटिकली बेटर लगती है. ऑल्सो विद क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योंतिका.

to Club Mirchi with DJ Richard and Mirchi Oyontika. This is the sound of the future. अगर आप dance floor पे नहीं हो तो कम से कम imagination में तो हो, right? और अगर अभी भी sofa पे बैठे हो तो congratulations, आप officially furniture के साथ emotionally attached हो चुके हो. Get up people!

0: का रिप्लाई देना जरूरी नहीं, कभी कभी सीन भी एक कंप्लीट पैराग्राफ होती है।
1: डीजे रिचर्ड मिर्ची और योतिका आपके साथ ऑन क्लब मिर्ची।

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Mirchi stories.
2: बस 24 घंटे ही रहेंगी
3: यार। तुझे पता है राजस्थान के एक गांव में रेलवे स्टेशन पर कोई एम्प्लॉय है ही नहीं, वहां के गांव के लोग ही टिकट बांटते हैं।
4: फिर तो यहाँ वो चाय चाय ये आवाज नहीं बल्कि ये आती होगी, टिकट टिकट। और यार सीओडी तो यहाँ भी होता होगा ना, कैश ऑन डेस्टिनेशन।
5: मिर्ची इट्स हॉट।
6: इस वेकेशन प्यार से हमारा इंतजार करने वाले अपनों को एक गोल्डन सरप्राइज क्यों ना दे। मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स के गोल्डन समर ऑफर के साथ डायमंड एंड प्रेशियस जेम ज्वेलरी खरीदने पर पाइए फ्री कैश वाउचर्स। अपने पुरानी गोल्ड ज्वेलरी को एक्सचेंज कीजिए विदाउट एनी लॉस। और अब विद द इंपोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया, यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन जीसीसी। विजिट मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स टुडे।
7: एक सीरियल किलर, एक डिस्ग्रेस्ड कॉप और एक ऐसी डार्क मिस्ट्री जो आपको हिला देगी।
8: Love is my biggest fear because for me love is death.
7: Witness Karishma Kapoor in her most ruthless avatar yet.
9: गलती भी हमारा और जिम्मेदारी भी हमारी थी।
7: Catch Officer Brown.
10: Officer Brown
7: tearing through the city of joy's darkest secrets. Brown streaming on Hindi Z5 from 12th June.
11: अर्ज किया है
12: इरशाद इरशाद

0: IPay payments ka wah tarika. With IPay, send money starting from just QAR 5, and yes, with the best FX rates. Simple, seedha, no tension. Check the IPay app today for our 5, 10, 15, 20 offer. Valid till July 31st. IPay, smaller fees, bigger smiles. TNC apply.
1: कुछ कुछ होता है अंजलि, तुम नहीं समझोगे।
2: जब चलेंगे गाने तो बहुत कुछ होगा,
3: बहुत कुछ होगा।
0: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
4: 89.6 FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

0: Mirchi.
1: Iskabana, uskabana, sakabana. Gabana. Burka, burka. Na vidva la burka. Mirchi, burka.
2: Hello.
3: बेटा आप घर आ जा, मामा परेशान है, खाना खा ले, ऐसे छोटी छोटी बातों पे नाराज होके नहीं जाते घर से, आ जा।
2: हेलो, कौन बोल रहे हैं?
3: बेटा आ जा, नहीं आ जा, आ जा, एक आवाज भी नहीं आ रही। हेलो
2: हेलो बेटा, अरे अंकल आप ये तो बताइए बोल कौन रहे हो?
3: देख आपने

वीकेंड का असली रूल सिंपल है, कैलोरीज काउंट मत करो, रिग्रेट्स मंडे को शेड्यूल करो, और जो लोग मैं सिर्फ एक गाना सुन के सो जाऊंगा बोलते हैं उन पे कभी भरोसा मत करो। डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑन क्लब मिर्ची।

का मूड इतना डांस करो कि स्मार्ट वॉच भी कंफ्यूज हो जाए कि वर्कआउट चल रहा है या सेलिब्रेशन। डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑरियो विद योर क्लब मिर्ची।

कुछ लोग रेड फ्लैग्स इग्नोर करते हैं, हम बस बेसलाइन फॉलो करते हैं। लाइफ थोड़ी सिंपल रखो यार, विद क्लब मिर्ची एंड डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ओयो टिका।

0: Ritchie, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: इस वेकेशन प्यार से हमारा इंतजार करने वाले अपनों को एक गोल्डन सरप्राइज क्यों ना दे मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स के गोल्डन समर ऑफर के साथ डायमंड एंड प्रेशियस जेम ज्वेलरी खरीदने पर पाइए फ्री कैश वाउचर्स अपने पुरानी गोल्ड ज्वेलरी को एक्सचेंज कीजिए विदाउट एनी लॉस और अब विद द इंपोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन जीसीसी विजिट मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स टुडे

मिर्ची पे स्वागत है दोबारा। लाइफ अगर आपको मिक्स्ड सिग्नल्स दे रही है तो कोई बात नहीं, हम मिक्स्ड ट्रैक्स दे रहे हैं और हमारे ट्रैक्स कम से कम कमिटमेंट तो निभाते हैं। दिस इज क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ओयोंतिका।

पार्टी पीपल, कुछ लोग थेरेपी अफोर्ड करते हैं, कुछ लोग शॉपिंग करते हैं, और हम बेस ड्रॉप का वेट करते हैं। हर किसी का हीलिंग प्रोसेस अलग होता है बॉस, इसीलिए क्लब मिर्ची जा रही है विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ओयो देखा।

तीसरी टिप, अपने दोस्त को कभी मत बोलना मैं बस 5 मिनट में आ रहा हूँ। ये दुनिया के सबसे फिक्शनल स्टेटमेंट्स में से एक है। डीजे रिचर्ड मिर्ची और योन्तिका आपके साथ ऑन क्लब मिर्ची।

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Mirchi. Iskabana, uskabana, sakabana. Rabbala. Burka, burka. Navid wala burka. Mirchi burka.
2: Hello. Hello.
3: हेलो मिस्टर अनिल।
2: हाँ जी
3: मिस्टर अनिल, तीनों आ गए हैं।
2: तीनों आ गए
3: सर, मैं ये चाइल्ड अडॉप्शन सेंटर से बोल रहा हूँ। आपने रिक्वेस्ट भेजी थी ना बच्चा गोद लेने की, अडॉप्ट करने की, तो सर तीन है हमारे पास, आप आके देख लें, इसमें से चूज कर लें, फिर आपकी सारी वो फॉर्मेलिटी पूरी करके कर देते हैं।
2: कौन बोल रहे हैं भाई साहब?
3: मैं चाइल्ड अडॉप्शन सेंटर से राकेश बोल रहा हूँ सर।
2: हाँ जी फिर?
3: एक सेकंड, इन बच्चों ने तो दिमाग, एक सेकंड रुको बच्चा, एक सेकंड, इसने पॉटी कर दी है शायद, एक सेकंड रुकिए।
2: हेलो।
3: हाँ सर एक सेकंड होल्ड करिए, इसने पॉटी कर दी शायद। हाँ सर, ये मैं चाइल्ड अडॉप्शन सेंटर से बोल रहा हूँ, आपने रिक्वेस्ट दी थी ना बच्चा अडॉप्ट करने की, तो आप आके देख लीजिए इनमें से कौन सा बच्चा पसंद है।
2: नहीं भैया, आपको गलत फहमी हो रही है, कोई आप गलत मिला है।
3: गलत फहमी की बात नहीं है, गलत फैमिली आपकी है, बच्चा है नहीं तो गोद ले लो, फैमिली सही हो जाएगी।
2: अरे मैं क्यों लूंगा यार बच्चा गोद, मेरे पास पहले से मेरा अपना बच्चा है, मैं क्यों गोद लूंगा भाई।
3: तो अनिल जी आपको ये पहले सोचना चाहिए था यार, जब आपने ये एप्लीकेशन भर गया यहाँ पे आके।
2: कौन बोल रहे हैं?
3: आप कमाल कर रहे हैं, भड़क रहे हैं, तीन बच्चे मैं लेके आया हूँ यहाँ पे, रो रहे हैं।
2: भड़क आप रहा हूँ भाई, क्या तरीका है?
3: क्या तरीका
2: कर रहे हैं आपने? यार मैंने कोई एप्लीकेशन नहीं दी, आप क्या बोल रहे हो?
3: अनिल बंसल आप ही हैं।
2: अनिल बंसल नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैंने किसी से कोई एप्लीकेशन नहीं दी हुई है।
3: सर कमाल कर रहे हैं आप, बार बार मुझ पे थोप रहे हैं। अब ये तीन बच्चे कौन लेगा यार?
2: आप पहले कंफर्म तो करो कम से कम।
3: कंफर्म करके ही बोल रहे हैं यार आप, एक बच्चा तीन नहीं तो एक बच्चा तो गोद ले लो यार।
2: बात करो, एक तरीका है बात करने का
3: यार, तरीका आप।
4: ओ बच्चा चुप हो जाओ, वो गुस्सा आ गया उनको।
3: यार अनिल जी कमाल कर दिया आपने।
2: मैं काम कर रहा हूँ बैठा हुआ, आपके आपकी बकवास सुन रहा हूँ बैठकर।
3: सर मैं आपको बता रहा हूँ, जो आपने सारी बातें कही थी, एक बच्चा इसमें एक साल का, एक बच्चा सात महीने साढ़े सात महीने का, एक बच्चा एक साल तीन महीने का है, आपको जो पसंद आता है।
2: कितने भी महीने का हो तुम ले लो फिर अपने पास, तुम अडॉप्ट कर लो, मुझे नहीं चाहिए।
3: अरे मुझे तो खुद किसी ने गोद ले रखा है यार, मैं कैसे ले लूँ? आप मुझे क्यों सिखा रहे हैं यार, आप अपनी बात करो यार।
2: तुमने सर अगली बार फोन कर दिया ना, तेरे को ही गोद दिलवाऊंगा वो बच्चा, समझ गया?
4: नहीं सर, मुझे तो वैसे ही रेडियो मिर्ची ने गोद ले रखा है। अनिल जी मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, और आपका प्यारा सा जो बच्चा है रोहन, ये उसी का बवाल है सारा, आपका मुर्गा बना दिया।
2: यार कमाल कर दिया भाई, कुकड़ों को
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

एनर्जी पे फिर से स्वागत। जो लोग बोलते हैं मुझे पार्टी पसंद नहीं है, उनको बस सही प्लेलिस्ट नहीं मिली अब तक, या फिर उनके दोस्त बहुत बोरिंग है, और दोनों पॉसिबिलिटीज इक्वली डेंजरस है। डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑन विद यू टुनाइट।

0: Ritchie, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Mirchi stories.
2: बस 24 घंटे ही रहेंगी
3: यार। तुझे पता है राजस्थान के एक गांव में रेलवे स्टेशन पर कोई एम्प्लॉय है ही नहीं, वहां के गांव के लोग ही टिकट बांटते हैं।
4: फिर तो यहाँ वो चाय चाय ये आवाज नहीं बल्कि ये आती होगी, टिकट टिकट। और यार सीओडी तो यहाँ भी होता होगा ना, कैश ऑन डेस्टिनेशन।
5: मिर्ची, इट्स हॉट।
6: अर्ज किया है
7: इरशाद, इरशाद

0: आईपी पेमेंट्स का वाह तरीका. विद आईपी सेंड मनी स्टार्टिंग फ्रॉम जस्ट QAR 5 एंड यस विद द बेस्ट FX रेट्स. सिंपल सीधा नो टेंशन. चेक द आईपी ऐप टुडे फॉर आवर 5 10 15 20 ऑफर वैलिड टिल July 31st. आईपी स्मॉलर फीस बिगर स्माइल्स. TNC अप्लाई.
1: A ring for the newly married, cute little bangle for the newborn.
2: अरे यार, holiday season is here और फिर वही gifting का tension. तो फिर मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स गोल्ड एंड समर के साथ आइए फ्री कैश वाउचर्स ऑन डायमंड एंड प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेजेस. प्लस एक्सचेंज योर गोल्ड ज्वेलरी एंड अपग्रेड टू द लेटेस्ट डिजाइंस विदाउट एनी लॉस. और सुनो, देयर्स मोर. With the import duty revision in India, you can now save up to 15% on gold prices here in the GCC. Visit Malabar Gold and Diamonds today.
3: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते. जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है.
4: और हम जहाँ चल जाते हैं बॉलीवुड के गानों की लाइन वहीं से शुरू हो जाती है.
0: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
5: 89.6 FM Mirchi 1.
6: It's hot.
7: Ladies and gentlemen.

वेलकम बैक। अगर आपका वीकेंड प्लान सिर्फ खाना सोना और ओटीटी था तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आज रात हम आपके लिविंग रूम को अनऑफिशियल नाइट क्लब डिक्लेयर करते हैं। डीजे मिर्ची ऑन क्लब मिर्ची।

बाय द वे, अगर आपका रील्स बोरिंग लग रहा है तो थोड़ा डांस करो और हमें टैग भी करो डीजे रिचर्ड ऑफिशियल, कंटेंट भी बनेगा और कार्डियो भी। डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑन विद योर क्लब मिर्ची।

चट की बीट्स और आपकी वीकेंड एनर्जी का कॉम्बो डेंजरस है। मजेदार मोमेंट्स के लिए फॉलो करो @DJRichardOfficial and Oyontika AYANTIKA और देखो असली पार्टी का सिलेबस।

Welcome back to Club Mirchi with DJ Richard and Mirchi Oyontika. This is the sound of the future. अगर आप dance floor पे नहीं हो तो कम से कम imagination में तो हो, right? और अगर अभी भी sofa पे बैठे हो तो congratulations, आप officially furniture के साथ emotionally attached हो चुके हो. Get up, people!

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Bollywood Boldal. Bollywood, Bollywood, Bollywood Boldal.
2: Only on Mirchi. It's hot.
3: अरमान मलिक, आप गाना अच्छा गाते हैं, आप गाना अच्छा बनाते भी हैं, उसके अलावा क्या क्या अच्छा बनाते हैं?
4: मैं ब्रेकफास्ट बहुत अच्छा बनाता हूँ, स्क्रैम्बल्ड एग्स, स्टर फ्राई मशरूम और स्पिनच, मेरा ब्रेकफास्ट कभी खाना।
3: ये कहना बहुत आसान है अरमान मलिक कि कभी मेरा ब्रेकफास्ट खाना, अरे तो फिर हमें भी बुलाना। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
1: बॉलीवुड बोल्डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डाल,
2: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
5: लेडीज एंड जेंटलमैन,
2: Club Mirchi.

वापस आ गए हैं क्लब मिर्ची में। वीकेंड का असली रूल सिंपल है, कैलोरीज काउंट मत करो, रिग्रेट्स मंडे को शेड्यूल करो, और जो लोग मैं सिर्फ एक गाना सुन के सो जाऊंगा बोलते हैं उन पे कभी भरोसा मत करो। डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑन क्लब मिर्ची।

ड्राइव स्मार्ट। अगर स्टीयरिंग व्हील हाथ में है तो फोन को वेकेशन पे भेज दो। एक नोटिफिकेशन किसी की डेस्टिनेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती। ओके, क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑयोंतिका।

हेडफोन्स लगा के सुन रहे हैं, वॉल्यूम इतना मत बढ़ाओ कि मम्मी की आवाज और ट्रेन की हॉर्न दोनों म्यूट हो जाए। म्यूजिक एंजॉय करो, हियरिंग भी बचा के रखो। क्लब मिर्ची विद डीजे मिर्ची एंड मिर्ची ऑयल देगा।

वीकेंड और वाईफाई में एक सिमिलैरिटी है, दोनों जब स्ट्रॉन्ग होते हैं तो जिंदगी ऑटोमेटिकली बेटर लगती है. ऑल्सो विथ क्लब मिर्ची विथ डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योंतिका.

मिर्ची पे स्वागत है दोबारा। लाइव अगर आपको मिक्स सिग्नल्स दे रही है तो कोई बात नहीं, हम मिक्स ट्रैक्स दे रहे हैं और हमारे ट्रैक्स कम से कम कमिटमेंट तो निभाते हैं। दिस इज क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ओयोंटिका।

मैसेज का रिप्लाई देना जरूरी नहीं, कभी कभी सीन भी एक कंप्लीट पैराग्राफ होती है। डीजे मिर्ची और योतिका आपके साथ ऑन क्लब मिर्ची।

शॉपिंग करते हैं और हम बेस ड्रॉप का वेट करते हैं। हर किसी का हीलिंग प्रोसेस अलग होता है बॉस, इसीलिए क्लब मिर्ची जा रही है विद डीजे मिर्ची और मिर्ची ओयो देखा।

0: मिर्ची पे फिर से स्वागत। जो लोग बोलते हैं मुझे पार्टी पसंद नहीं है, उनको बस सही प्लेलिस्ट नहीं मिली अब तक, या फिर उनके दोस्त बहुत बोरिंग है, और दोनों पॉसिबिलिटीज इक्वली डेंजरस है। डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑन योर थिंग विद यू टुनाइट।
1: As for money and get advice, as for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

कुछ लोग रेड फ्लैग्स इग्नोर करते हैं, हम बस बेसलाइन फॉलो करते हैं। लाइफ थोड़ी सिंपल रखो यार, विद क्लब मिर्ची एंड डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑयल का।

वेलकम बैक। अगर आपका वीकेंड प्लान सिर्फ खाना सोना और ओटीटी था तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आज रात हम आपके लिविंग रूम को अनऑफिशियल नाइट क्लब डिक्लेयर करते हैं। डीजे रिचर्ड मिर्ची ओयोंटिका विद यू।

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Mirchi.
2: हेलो
3: हेलो अब भाई तुम
2: भाई कौन बोल रहा है?
3: अब मुझे अब पता चला तुम
2: भाई कौन बोल रहा है? हेलो कौन बोल रहा है भाई?
3: अब मुझे अब बताया उसने कि तुम भी यार तुम एक नंबर का आइटम है। मेरी
2: भाई नहीं आ रही भाई।
3: मुझे आप बताया असल मैं वहां गया हुआ था। अब मुझसे कह रहा
2: बता तो दे भाई ये तो बता दे कौन बोल रहा है क्या बात है। मुझे
3: तूने नताशा को प्रपोज कर दिया भाई सबके सामने।
2: अबे भाई कौन नताशा?
3: नताशा यार नताशा को प्रपोज नहीं किया।
2: अबे भाई कौन नताशा? मैं तो नताशा को जानता भी नहीं।
3: तो तू पहले मुनी फाड़ सकता था।
2: भाई तूने बोलने का मौका ही कहाँ दिया भाई, तू तो हंसता ही रहा।
3: अबे तो तुझसे पहले नहीं बोला जा सकता था? मैं तो हंस रहा था, तू तो चुप था। बता देता मुझे मैंने नताशा को नहीं छेड़ा, मैंने नताशा को प्रपोज नहीं किया। मैं हंसे जा रहा हूँ की तरह। नहीं मैं हंसे जा रहा हूँ की तरह और तू मजाक उड़ा रहा मेरी।
2: मैं कैसे बोल देता जब तू हंसे जा रहा? अबे तो सुनने का मौका नहीं दिया, मैं हेलो हेलो करे जा रहा हूँ।
3: तू शुरू में कह देता कि मैं नहीं बोल रहा, मैंने नताशा को नहीं छेड़ा, रॉन्ग नंबर लग गया, ये बोलने में तेरा मुंह फट रहा था क्या? 5 साल में हंसी आती है वो भी बर्बाद कर दी। तू पहले नहीं बता सकता था मुझे कि मैं नहीं बोल रहा?
2: फोन तूने करा, तूने
3: मैंने क्या फोन मैंने क्या? तो तेरे हाथ में तो था, तेरे मुंह में जुबान नहीं थी। तू दिमाग खराब कर रहा है ऊपर से।
2: मैं तो पूछा वो तू बोल कैसे रहा भाई?
3: भाई मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मैंने ऐसी किसी का नंबर मिला दिया, आपका लग गया, मैं आपका मुर्गा बना रहा था, थोड़ी सी मजाक करी और वो अच्छी खासी।
2: तो भाई ये बात पहले बता देते यार, इतना तुमने हंसवा दिया, टेंशन अलग दे दिया।
1: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट
4: लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर गोना गो, वी आर गोना गो, वी आर गोना गो ऑन अ राइड।
0: क्लब मिर्ची

आ गए हैं क्लब मिर्ची में। वीकेंड का असली रूल सिंपल है, कैलोरीज काउंट मत करो, रिग्रेट्स मंडे को शेड्यूल करो, और जो लोग मैं सिर्फ एक गाना सुन के सो जाऊंगा बोलते हैं उन पे कभी भरोसा मत करो। डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑन विद यू टुनाइट ऑन क्लब मिर्ची।

रिचर्ड की बीट्स और आपकी वीकेंड एनर्जी का कॉम्बो डेंजरस है। मजेदार मोमेंट्स के लिए फॉलो करो @DJ Richard Official and @Ayontika Ayantika और

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: दोस्ती का एक उसूल है मैडम, नो सॉरी नो थैंक यू।
2: भाई साहब सॉरी एंड थैंक यू, हमें दोस्ती नहीं एंटरटेनमेंट चाहिए।
3: तुम मिर्ची सुनो ना, जहाँ एंटरटेनमेंट खूब मिलेगा।
4: खूब मिलेगा, मिलेगा।
5: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
6: 89.6 FM, Mirchi 1. It's hot.
7: Ladies and gentlemen, we are gonna go.

वापस आ गए हैं क्लब मिर्ची में। वीकेंड का असली रूल सिंपल है, कैलोरीज काउंट मत करो, रिग्रेट्स मंडे को शेड्यूल करो, और जो लोग मैं सिर्फ एक गाना सुन के सो जाऊंगा बोलते हैं उन पे कभी भरोसा मत करो। डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑन विद यू टुनाइट ऑन क्लब मिर्ची।

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Bollywood Boldal. Bollywood, Bollywood, Bollywood Boldal.
2: Only on Mirchi. It's hot.
3: गुलशन ग्रोवर, ऐसे कौन से एक्टर के साथ आपने काम किया है जिनकी गाली ना गाली नहीं लगती?
4: मेरा दोस्त है संजय दत्त, मेरा भाई है। एक टाइम था बगैर गाली के सेंटेंस ही नहीं होता था, तो सीनियर एक्टर्स ने कहा कि यार ये बगैर गाली के बोलता नहीं है, पर संजय दत्त की गाली इतनी क्यूट लगती थी, इनोसेंट सा, लंबे से बाल वाला।
3: This is an audio impersonation, but I have to say, Gulshan Grover, it is 100/100 impersonation of Sanjay Dutt. आप सुन रहे हैं मिर्ची, it's hot.
1: Bollywood Boldal.
2: Bollywood, Bollywood, Bollywood Boldal. Only on Mirchi, it's hot.
5: Ladies and gentlemen, we are gonna go, we are gonna go, we are gonna go
2: on a ride.
0: Club Mirchi with Boy Hontika and T.

मिर्ची पे स्वागत है दोबारा। लाइफ अगर आपको मिक्स्ड सिग्नल्स दे रही है तो कोई बात नहीं, हम मिक्स ट्रैक्स दे रहे हैं और हमारे ट्रैक्स कम से कम कमिटमेंट तो निभाते हैं। दिस इज क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ओयोटिका।

ड्राइव स्मार्ट। अगर स्टीयरिंग व्हील हाथ में है तो फोन को वेकेशन पे भेज दो। एक नोटिफिकेशन किसी की डेस्टिनेशन से ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होती। ओके, क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ओयोंतिका।

लोग थेरेपी अफोर्ड करते हैं, कुछ लोग शॉपिंग करते हैं, और हम बेस ड्रॉप का वेट करते हैं। हर किसी का हीलिंग प्रोसेस अलग होता है बॉस, इसीलिए क्लब मिर्ची जा रही है विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ओयो देखा।

बस दोस्तों, आज की क्लब मिर्ची पार्टी यही रैप करते हैं। डांस मूव्स सेव कर लो, एनर्जी रिचार्ज कर लो और मंडे को याद दिलाओ कि वीकेंड अभी ऑफिशियली खत्म नहीं हुआ है, मेमोरीज बाकी है। मैं हूँ ओयोंतिका, मिलेंगे फिर अगले सेशन में। डीजे रिचर्ड भी होंगे आपके साथ, तब तक मस्त रहो, सेफ रहो और लाइफ को प्लेलिस्ट की तरह शफल मोड पे जियो। टाटा।

नमस्कार और गुड लक उन सबको जो मंडे का टेंशन सैटरडे रात को ही लेके घूम रहे हैं। यह है क्लब मिर्ची, जहाँ प्लेलिस्ट हॉट है, वाइब्स हॉटर है और आपके एक्स के एक्सक्यूजेस सबसे ज्यादा आउटडेटेड है। डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑल ऑन थे गा विद यू। और अगले कुछ घंटों तक हम पार्टी करेंगे इतना जोर से कि पड़ोसी भी सोचे इनका वीकेंड पैकेज कौन सी कंपनी देती है। चलिए वॉल्यूम बढ़ाइए और शर्म घर पे छोड़ दीजिए। लेट्स गो।

वाईफाई में एक सिमिलैरिटी है, दोनों जब स्ट्रॉन्ग होते हैं तो जिंदगी ऑटोमेटिकली बेटर लगती है. ऑल्सो विद क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योंतिका.

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Mirchi.
2: हेलो
3: बेटा, आप घर आ जाओ। मामा परेशान है, खाना खा ले। ऐसे छोटी छोटी बातों पे नाराज होके नहीं जाते घर से। आजा।
2: हेलो, कौन बोल रहे हैं?
3: बेटा आजा, नहीं आजा आजा, एक आवाज भी नहीं आ रही। हेलो
2: हेलो
3: बेटा।
2: अरे अंकल, आप ये तो बताइए, बोल कौन रहे हो?
3: देख, अपने बड़े बूढ़ों से ऐसे नाराज ही होते बेटा। एक तो बुढ़ापे में तू ही सारा है, दूसरे ये कान से सुनाई नहीं देते, और तू चला जाएगा बेटे। क्या होगा हमारा?
2: अंकल मैं आपका बेटा नहीं हूँ।
3: तेरी आवाज भी नहीं आ रही है, घर आ जा बेटे।
2: अंकल ये तो बताइए, आप बोल कहाँ से रहे हो?
3: बेटे ऐसे नाराज होते हैं तो जानते।
2: अंकल मैं आपका लड़का नहीं हूँ, आपने गलत नंबर मिलाया है।
3: बेटा देख, ऐसे ये नाराजगी होती है तो ऐसे घर छोड़ कर जाते हैं।
2: जी माता जी से बात करा दीजिए।
3: बेटे आजा आजा बेटे।
2: अंकल माता कहाँ है?
3: छाता बेटे, छाता भी देंगे।
2: छाता नहीं अंकल, माता आप अपने कान के बात।
3: बेटा कोई गलती हो या देख तो बेटा माफ कर दे, ऐसे नहीं जाते।
2: अंकल मैं वो नहीं हूँ आपका लड़का, आप मुझे मत फोन करिए।
3: अरे बात मेरे बात,
4: इतनी जल्दी नाराज हो गए भाई, मेरे तो कान चलने लगे। दोबारा मिला।
2: हेलो
3: बेटा। हेलो
2: अंकल, आप परेशान हो रहे हैं, आप क्या नंबर मिला रहे हो?
3: हेलो बेटा, घर कब आ रहा है? घर कब? मैं खाना करवा दूं?
2: अरे अंकल, मेरे बात कर, मैं अगर आप मुझे आ जाएगा तो आज आपने नंबर क्या मिलाया?
3: मैं तो कान में सुनाई दे बेटा, तेज बोल भाई जी, जो चाहिए दे देंगे। आजा बेटे।
2: अंकल मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप प्लीज फोन ना करिए।
3: हेलो, मैं फोन तो करना पड़ता बेटे।
4: क्योंकि किसी को मुर्गा बनाना पड़ता है। विक्रम, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, तुम्हारा मुर्गा बन रहा है, तुम क्यों चिल्ला रहे हो भाई?
2: क्या भाई, मेरा गला पूरा आपने दुखा दिया चीख चीख के।
4: अब क्यों तेज बोल रहे हो भाई, अब धीरे बोलो और आराम से मेरे साथ कह दो।
2: बोलना जरूरी है?
4: हाँ बिल्कुल जरूरी है।
3: आवाज नहीं आई, तेज बोल।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
6: 89.6
5: Mirchi.
7: Ladies and gentlemen, we are gonna go, we are gonna go, we are gonna go
5: on a ride.
8: Club Mirchi.

to Club Mirchi with DJ Richard and Mirchi Oyontika. This is the sound of the future. अगर आप dance floor पे नहीं हो तो कम से कम imagination में तो हो, right? और अगर अभी भी sofa पे बैठे हो तो congratulations, आप officially furniture के साथ emotionally attached हो चुके हो. Get up, people!

0: मैसेज का रिप्लाई देना जरूरी नहीं, कभी कभी सीन भी एक कंप्लीट पैराग्राफ होती है।
1: डीजे रिचर्ड मिर्ची और योतिका आपके साथ ऑन क्लब मिर्ची।

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Mirchi stories.
2: बस 24 घंटे ही रहेंगी
3: यार। तुझे पता है राजस्थान के एक गांव में रेलवे स्टेशन पर कोई एम्प्लॉय है ही नहीं, वहां के गांव के लोग ही टिकट बांटते हैं।
4: फिर तो यहाँ वो चाय चाय ये आवाज नहीं बल्कि ये आती होगी, टिकट टिकट। और यार सीओडी तो यहाँ भी होता होगा ना, कैश ऑन डेस्टिनेशन।
5: मिर्ची इट्स हॉट।
6: जा सिमरन, जा जीरे अपनी जिंदगी, जा बेटा जा।
7: सिमरन अपनी जिंदगी जी रही है अंकिल,
8: क्योंकि वो सुनती है बॉलीवुड के हिट गाने। हिट गाने
9: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
10: 89.6 FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।
11: लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर गोना गो, वी आर गोना गो, वी आर गोना गो
12: ऑन अ राइड।

छी में वीकेंड का असली रूल सिंपल है, कैलोरीज काउंट मत करो, रिग्रेट्स मंडे को शेड्यूल करो, और जो लोग मैं सिर्फ एक गाना सुन के सो जाऊंगा बोलते हैं उन पे कभी भरोसा मत करो। डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑन विद यू टुनाइट ऑन क्लब मिर्ची।

मूड इतना डांस करो कि स्मार्ट वॉच भी कंफ्यूज हो जाए कि वर्कआउट चल रहा है या सेलिब्रेशन। डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑयो टेक आउट विद योर क्लब मिर्ची।

कुछ लोग रेड फ्लैग्स इग्नोर करते हैं, हम बस बेसलाइन फॉलो करते हैं। लाइफ थोड़ी सिंपल रखो यार, विद क्लब मिर्ची एंड डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑयल टिका।

मिर्ची पे स्वागत है दोबारा। लाइव अगर आपको मिक्स्ड सिग्नल्स दे रही है तो कोई बात नहीं, हम मिक्स्ड ट्रैक्स दे रहे हैं और हमारे ट्रैक्स कम से कम कमिटमेंट तो निभाते हैं। दिस इज क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ओयोंतिका।

अगर किसी ने आपसे पूछा इतना खुश क्यों हो तो बोल देना सैलरी नहीं आई, बस वीकेंड आ गया है. विद क्लब मिर्ची एंड डीजे रिचर्ड मिर्ची और योंटिका, योर फ्रेंड्स विद द नाइट.

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Hello, Mirchi Helpline.
2: जी बिल्कुल, मिर्ची हेल्पलाइन, बता बेटा सवाल क्या है?
1: हम लोग ऑफ रोडिंग पे हिमाचल आए हैं और कार का टायर फ्लैट हो गया है, क्या करें?
2: अबे लल्लू, ये तो अच्छी बात है ना, टायर फ्लैट हो गया है, फ्लैट तो रेंट पे चढ़ा ना, टूरिस्ट प्लेस पे रेंट भी तो कितना अच्छा मिलेगा।
3: ऐसे ही लाइफ के टेढ़े सवालों का लॉजिकलेस जवाब चाहिए, तो भेजो आपके क्वेश्चंस मिर्ची हेल्पलाइन पर व्हाट्सएप ऑन 8422983983। इट्स हॉट,
4: लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर गोना गो, वी आर गोना गो, वी आर गोना गो ऑन अ राइड।
0: क्लब मिर्ची।

नहीं पीने के बाद सिर्फ डांस करो बातें नहीं. क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योनिका एंड पीपल हु स्टिल वांट टू गिव लेक्चर्स आफ्टर ड्रिंक्स. ये है असली इमोशनल अत्याचार.

कुछ लोग थेरेपी अफोर्ड करते हैं, कुछ लोग शॉपिंग करते हैं, और हम बेस ड्रॉप का वेट करते हैं। हर किसी का हीलिंग प्रोसेस अलग होता है बॉस, इसीलिए क्लब मिर्ची जा रही है विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ओयो देखा।

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Mirchi.
2: हेलो
3: हेलो मिस्टर अनिल।
2: हाँ जी
3: मिस्टर अनिल, तीनों आ गए हैं।
2: तीनों आ गए
3: सर, मैं ये चाइल्ड अडॉप्शन सेंटर से बोल रहा हूँ। आपने रिक्वेस्ट भेजी थी ना बच्चा गोद लेने की, अडॉप्ट करने की, तो सर तीन है हमारे पास, आप आके देख लें, इसमें से चूज कर लें, फिर आपकी सारी वो फॉर्मेलिटी पूरी करके कर देते हैं।
2: कौन बोल रहे हैं भाई साहब?
3: मैं चाइल्ड अडॉप्शन सेंटर से राकेश बोल रहा हूँ सर।
2: हाँ जी फिर?
3: एक सेकंड, इन बच्चों ने तो दिमाग, एक सेकंड रुको बच्चा, एक सेकंड, इसने पॉटी कर दी है शायद, एक सेकंड रुकिए।
2: हेलो,
3: हाँ सर एक सेकंड होल्ड करिए, इसने पॉटी कर दी शायद। हाँ सर, ये मैं चाइल्ड अडॉप्शन सेंटर से बोल रहा हूँ, आपने रिक्वेस्ट दी थी ना बच्चा अडॉप्ट करने की, तो आप आके देख लीजिए इनमें से कौन सा बच्चा पसंद है।
2: नहीं भैया, आपको गलत फहमी हो रही है, कोई आप गलत मिला है।
3: गलत फहमी की बात नहीं है, गलत फैमिली आपकी है, बच्चा है नहीं तो गोद ले लो, फैमिली सही हो जाएगी।
2: अरे मैं क्यों लूंगा यार बच्चा गोद, मेरे पास पहले से मेरा अपना बच्चा है, मैं क्यों गोद लूंगा भाई।
3: तो अनिल जी, आपको ये पहले सोचना चाहिए था यार, जब आपने ये एप्लीकेशन भरी है यहाँ पे आके।
2: कौन बोल रहे हैं भाई?
3: आप कमाल कर रहे हैं, भड़क रहे हैं, तीन बच्चे मैं लेके आया हूँ यहाँ पे, रो रहे हैं।
2: क्या तरीका है?
3: क्या तरीका
2: कर रहे हैं आपने? यार मैंने कोई एप्लीकेशन ही नहीं दी, आप क्या बोल रहे हो?
3: अनिल बंसल आप ही हैं?
2: अनिल बंसल मैं ही बोल रहा हूँ, लेकिन मैंने किसी को कोई एप्लीकेशन नहीं दी हुई है।
3: सर कमाल कर रहे हैं आप, बार बार मुझ पे थोप रहे हैं। अब ये तीन बच्चे कौन लेगा यार?
2: आप पहले कंफर्म तो करो, कम से कम
3: कंफर्म करके ही बोल रहे हैं यार आप। एक बच्चा तीन नहीं तो एक बच्चा तो गोद ले लो यार।
2: बात करो, एक तरीका बात करने का
3: यार, तरीका आप।
4: ओ बच्चा चुप हो जाओ, वो गुस्सा आ गया उनको। यार अनिल जी कमाल कर दिया आपने।
2: मैं काम कर रहा हूँ बैठा, वो आपके आपकी बकवास सुन रहा हूँ बैठा।
3: सर मैं आपको बता रहा हूँ, जो आपने सारी बातें कही थी, एक बच्चा इसमें एक साल का, एक बच्चा सात महीने, साढ़े सात महीने का, एक बच्चा एक साल तीन महीने का है, आपको जो पसंद आता है।
2: आप कितने भी महीने का हो तुम ले लो फिर अपने पास, तुम अडॉप्ट कर लो, मुझे नहीं चाहिए।
3: अरे मुझे तो खुद किसी ने गोद ले रखा है यार, मैं कैसे ले लूँ? आप मुझे क्यों सिखा रहे हैं यार, आप अपनी बात करो यार।
2: तुमने सर अगली बार फोन कर दिया ना, तेरे को ही गोद दिलवाऊंगा वो बच्चा, समझ गया?
4: नहीं सर, मुझे तो वैसे ही रेडियो मिर्ची ने गोद ले रखा है। अनिल जी मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, और आपका प्यारा सा जो बच्चा है रोहन, ये उसी का बवाल है सारा, आपका मुर्गा बना दिया।
2: यार कमाल कर दिया भाई, कुकड़ों को
1: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

मिर्ची पे फिर से स्वागत। जो लोग बोलते हैं मुझे पार्टी पसंद नहीं है, उनको बस सही प्लेलिस्ट नहीं मिली अब तक, या फिर उनके दोस्त बहुत बोरिंग हैं, और दोनों पॉसिबिलिटीज इक्वली डेंजरस है। डीजे रिचर्ड मिर्ची ऑन विथ यू टुनाइट।

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Mirchi stories.
2: बस 24 घंटे ही रहेंगी
3: यार। तुझे पता है राजस्थान के एक गांव में रेलवे स्टेशन पर कोई एम्प्लॉय है ही नहीं, वहां के गांव के लोग ही टिकट बांटते हैं।
4: फिर तो यहाँ वो चाय चाय ये आवाज नहीं बल्कि ये आती होगी, टिकट टिकट। और यार सीओडी तो यहाँ भी होता होगा ना, कैश ऑन डेस्टिनेशन।
5: मिर्ची, इट्स हॉट।
6: लेडीज एंड जेंटलमैन,

अगर आपका वीकेंड प्लान सिर्फ खाना सोना और ओटीटी था तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आज रात हम आपके लिविंग रूम को अनऑफिशियल नाइट क्लब डिक्लेयर करते हैं। डीजे रिचर्ड मिर्ची ऑन योंटिका विद यू ऑन क्लब मिर्ची।

डीजे रिचर्ड की बीट्स और आपकी वीकेंड एनर्जी का कॉम्बो डेंजरस है। मजेदार मोमेंट्स के लिए फॉलो करो @DJRichardOfficial and Oyontika AYANTIKA और देखो असली पार्टी का सिलेबस।

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Bollywood Boldal. Bollywood, Bollywood, Bollywood Boldal.
2: Only on Mirchi. It's hot.
3: Aamir Khan, PK was an iconic film. कई सारे iconic scenes थे. Which one was the most difficult? Radio पकड़ के खड़े रहना या फिर?
4: उसने मुझे तकलीफ नहीं, तकलीफ मुझे पान में हुई. क्योंकि पूरे film के अंदर मैं पान खाता हूँ. मेरा किरदार जो पान का बड़ा शौकीन है. तो दिन में करीब 100 पान हो जाते थे मेरे. और 100 पान से तो बड़ी तकलीफ होती है. ज़बान चल जाती है. उसमें हम सुपारी नहीं डालते थे, थोड़ा इजीयर हो जाता था विदाउट सुपारी. चूना और कत्ता होता था.
3: आमिर खान अपने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाते रहते हैं. दिन के 100 पान कौन खाता है यार. आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट.
1: बॉलीवुड बोल्डाल,
2: बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डाल, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट.

Welcome back to Club Mirchi with DJ Richard and Mirchi Oyontika. This is the sound of the future. अगर आप dance floor पे नहीं हो तो कम से कम imagination में तो हो, right? और अगर अभी भी sofa पे बैठे हो तो congratulations, आप officially furniture के साथ emotionally attached हो चुके हो. Get up, people!

जी में वीकेंड का असली रूल सिंपल है, कैलोरीज काउंट मत करो, रिग्रेट्स मंडे को शेड्यूल करो, और जो लोग मैं सिर्फ एक गाना सुन के सो जाऊंगा बोलते हैं उन पे कभी भरोसा मत करो। डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑन क्लब मिर्ची।

ड्राइव स्मार्ट। अगर स्टीयरिंग व्हील हाथ में है तो फोन को वेकेशन पे भेज दो। एक नोटिफिकेशन किसी की डेस्टिनेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती। ओके, क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑयोंतिका।

लगा के सुन रहे हैं, वॉल्यूम इतना मत बढ़ाओ कि मम्मी की आवाज और ट्रेन की हॉर्न दोनों म्यूट हो जाए। म्यूजिक एंजॉय करो, हियरिंग भी बचा के रखो। क्लब मिर्ची विद डीजे मैच्योर एंड मिर्ची ऑयल ओंटेका।

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Mirchi.
2: Iskabana, uskabana, sakabana. Rambana. Murga, murga. Nabiyat wala murga. Mirchi, murga.
3: हेलो,
4: कुड आई स्पीक टू तानिया प्लीज?
3: स्पीकिंग।
4: ओके तानिया, मैं पीयूष बोल रहा हूँ मुंबई से। मुझे किसी ने आपका नंबर दिया था। तानिया मैं पहले ये जानना चाहता हूँ, पहले मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता दूँ। हम एक शो शुरू करने वाले हैं, नखरों के खिलाड़ी।
3: अच्छा।
4: ऐसा होता है कुछ लोगों में कि नखरे होते हैं। मुझे आपका किसी ने नंबर दिया और उन्होंने बताया कि ये कुछ बहादुरी के काम कर चुकी हैं, कुछ डेयरिंग काम आपने किए हैं, मुझे थोड़ा सा बताएंगे?
3: जैसे कि मेरे मोहल्ले में ही एक लड़का है, बहुत बदतमीजी करता था लड़कियों के साथ। तो उसको कोई सबक ही नहीं सिखा रहा था, तो तानिया ही थी पूरे लोकेलिटी में जिसने उसको एक चाटा लगाया। और अब वो उस मोहल्ले में नजर ही नहीं आता है बंदा।
4: अरे ग्रेट, तो अब मतलब कुल मिला के आपको डर तो नहीं लगता ऐसे कामों से?
3: नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं लगता।
4: ओके, आई होप कि आप सिलेक्ट हो जाए। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आपके लिए बहुत अच्छी बात है, ये एक मौका है कि आप हमारे इस शो नखरों के खिलाड़ी में आ सकती हैं।
3: आ सकती हूँ मैं उसमें?
4: बिल्कुल आ सकती हैं। दो एपिसोड जो हैं वो शूट हो चुके हैं, अगला दिल्ली का है, तो दिल्ली की कुछ लड़कियां आएंगी, तो आप मुंबई आ सकती हैं नेक्स्ट वीक।
3: बॉम्बे आने के लिए पहले घर में बात करनी पड़ेगी मुझे।
4: जैसे आप और शोज देखती हैं खतरों वाले, उसमें ये होता है कि सांप वांप खाते हैं या मुंह से निकलते हैं या जंप करते हैं या हमारा थोड़ा सा डिफरेंट है।
3: आपका क्या है?
4: उसमें ये होगा कि आप जैसे खड़ी हुई हैं, कैमरा आपके सामने है, एक्शन बोलने के बाद एक बहुत बड़ा चाकू आपकी गर्दन पे रखा जाएगा।
3: ठीक है।
4: और एक मशीन आपकी गर्दन के पीछे से आपकी गर्दन को पुश करेगी। तो हम मशीन में जितनी पावर है उसको बढ़ा के आपकी गर्दन के आर पार चाकू कर देंगे, और जो ब्लीडिंग ब्लीडिंग होगी वो बाल्टी इधर उधर लगा के हम खून सारा जमा कर लेंगे। मतलब अगर आपकी गर्दन कट गई है और ब्लड ग्रुप एक है तो आप नेक्स्ट राउंड में जाने लायक आप जाएंगी।
3: नेक्स्ट राउंड के लिए बचूंगी तब जाऊंगी ना, जब सारा ब्लड ही निकल जाएगा तो मैं करूंगी क्या सेकंड राउंड में?
4: सिर्फ तो आपका है, वही तो मैं काटने की बात कर रहा हूँ, और आप ही कह रही है मैं बहादुरी के काम कर लेती हूँ, फिर आप ये नखरे दिखा रही है।
3: नहीं, मना क्या कर दे, तो पागलों वाला गेम लग रहा है।
4: हेलो,
3: समझ नहीं आ रही, जब मैंने बोल दिया है मैं नहीं करना चाहती हूँ ये शो।
4: तानिया, मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ, और आपका जो दोस्त है अमित, उसने मुझे नंबर दिया था, उसने कहा था इसका मुर्गा बना, तो मैंने बना दिया यार, अब इसमें मेरी क्या गलती है?
5: मिर्ची मुर्गा नवीद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
6: लेडीज एंड जेंटलमैन,
5: Club Mirchi.

मैसेज का रिप्लाई देना जरूरी नहीं, कभी कभी सीन भी एक कंप्लीट पैराग्राफ होती है। डीजे विचैतन मिर्ची और योतिका आपके साथ ऑन क्लब मिर्ची।

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Mirchi stories.
2: बस 24 घंटे ही रहेंगी
3: यार। तुझे पता है राजस्थान के एक गांव में रेलवे स्टेशन पर कोई एम्प्लॉय है ही नहीं, वहां के गांव के लोग ही टिकट बांटते हैं।
4: फिर तो यहाँ वो चाय चाय ये आवाज नहीं बल्कि ये आती होगी टिकट टिकट। और यार सीओडी तो यहाँ भी होता होगा ना, कैश ऑन डेस्टिनेशन।
5: मिर्ची इट्स हॉट।
6: लेडीज एंड जेंटलमैन,
0: Club Mirchi.

शॉपिंग करते और हम बेस ड्रॉप का वेट करते हैं। हर किसी का हीलिंग प्रोसेस अलग होता है बॉस, इसीलिए क्लब मिर्ची जा रही है विद डीजे मैच्योर्ड एंड मिर्ची ओयो देखा।

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: मेरे बेटे आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे।
2: अरे करण अर्जुन, आमिर, शाहरुख, ऋतिक, अक्षय, इमरान, सबके गाने आएंगे दीदी।
3: आएंगे दीदी, आएंगे दीदी।
4: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
5: 89.6
6: FM Mirchi 1. It's hot.
7: Ladies and gentlemen, we are gonna go. We are gonna go. We are gonna go
8: on a ride.
9: Club Mirchi with Oyon Deka and

0: क्लब मिर्ची पे फिर से स्वागत। जो लोग बोलते हैं मुझे पार्टी पसंद नहीं है, उनको बस सही प्लेलिस्ट नहीं मिली अब तक, या फिर उनके दोस्त बहुत बोरिंग हैं, और दोनों पॉसिबिलिटीज इक्वली डेंजरस है। डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑन योर टेगा विद यू टुनाइट।
1: As for money, then get advice. As for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment.

वेलकम बैक। अगर आपका वीकेंड प्लान सिर्फ खाना सोना और ओटीटी था तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आज रात हम आपके लिविंग रूम को अनऑफिशियल नाइट क्लब डिक्लेयर करते हैं। डीजे

आ गए हैं क्लब मिर्ची में। वीकेंड का असली रूल सिंपल है, कैलोरीज काउंट मत करो, रिग्रेट्स मंडे को शेड्यूल करो, और जो लोग मैं सिर्फ एक गाना सुन के सो जाऊंगा बोलते हैं उन पे कभी भरोसा मत करो। डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑन विद यू टुनाइट ऑन क्लब मिर्ची।

रिचर्ड की बीट्स और आपकी वीकेंड एनर्जी का कॉम्बो डेंजरस है। मजेदार मोमेंट्स के लिए फॉलो करो @DJ Richard Official and @Ayontika Ayantika और देखो असली

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Mirchi stories.
2: बस 24 घंटे ही रहेंगी
3: यार। तुझे पता है राजस्थान के एक गांव में रेलवे स्टेशन पर कोई एम्प्लॉय है ही नहीं, वहां के गांव के लोग ही टिकट बांटते हैं।
4: फिर तो यहाँ वो चाय चाय ये आवाज नहीं बल्कि ये आती होगी, टिकट टिकट। और यार सीओडी तो यहाँ भी होता होगा ना, कैश ऑन डेस्टिनेशन।
5: मिर्ची इट्स हॉट।
6: कुछ कुछ होता है अंजलि, तुम नहीं समझोगे।
7: जब चलेंगे गाने तो बहुत कुछ होगा,
8: बहुत कुछ होगा।
9: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
10: 89.6 FM मिर्ची वन। इट्स हॉट
11: लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर गोना गो, वी आर गोना गो, वी आर गोना गो ऑन अ राइड।

वापस आ गए हैं क्लब मिर्ची में। वीकेंड का असली रूल सिंपल है, कैलोरीज काउंट मत करो, रिग्रेट्स मंडे को शेड्यूल करो, और जो लोग मैं सिर्फ एक गाना सुन के सो जाऊंगा बोलते हैं उन पे कभी भरोसा मत करो। डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑन विद यू टुनाइट ऑन क्लब मिर्ची।

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Bollywood Boldal. Bollywood, Bollywood, Bollywood Boldal.
2: Only on Mirchi. It's hot.
3: श्रेया घोषाल, आपका गाया हुआ एक ऐसा गाना नहीं है जिसे सुनकर हमें मजा नहीं आता। एक्चुअल में आपको लाइफ में क्या क्या करने में मजा आता है?
4: मुझे जो चीजें करने में बहुत मजा आता है वो है म्यूजिक और अपने फैमिली, अपने बेटे के साथ टाइम स्पेंड करना और ढेर सारे वेकेशंस प्लान करना एंड टू ईट सम गुड फूड, स्पेंड सम टाइम इन द किचन कुकिंग सम गुड फूड। आई बिलीव इन सच काइंड ऑफ एक्सपीरियंसेस एज गिफ्ट्स मोर देन मटेरियलिस्टिक गिफ्ट।
3: श्रेया घोषाल, काश मैं आपकी तरह सोचती, बट नहीं, मुझे तो सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीजों में ही मजा आता है। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
1: बॉलीवुड बोल्डाल,
2: बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डाल, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

क्लब मिर्ची पे स्वागत है दोबारा। लाइफ अगर आपको मिक्स्ड सिग्नल्स दे रही है तो कोई बात नहीं, हम मिक्स्ड ट्रैक्स दे रहे हैं और हमारे ट्रैक्स कम से कम कमिटमेंट तो निभाते हैं। दिस इज क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ओयोतिका।

ड्राइव स्मार्ट। अगर स्टीयरिंग व्हील हाथ में है तो फोन को वेकेशन पे भेज दो। एक नोटिफिकेशन किसी की डेस्टिनेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती। ओके, क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑयोन्तिका।

कुछ लोग थेरेपी अफोर्ड करते हैं, कुछ लोग शॉपिंग करते हैं, और हम बेस ड्रॉप का वेट करते हैं। हर किसी का हीलिंग प्रोसेस अलग होता है बॉस, इसीलिए क्लब मिर्ची जा रही है विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ओयो टेका।

बस दोस्तों, आज की क्लब मिर्ची पार्टी यही रैप करते हैं। डांस मूव्स सेव कर लो, एनर्जी रिचार्ज कर लो और मंडे को याद दिलाओ कि वीकेंड अभी ऑफिशियली खत्म नहीं हुआ है, मेमोरीज बाकी है। मैं हूँ ओयोंतिका, मिलेंगे फिर अगले सेशन में। डीजे रिचर्ड भी होंगे आपके साथ, तब तक मस्त रहो, सेफ रहो और लाइफ को प्लेलिस्ट की तरह शफल मोड पे जियो। टाटा।

89.6 Mirchi 1. It's hot.